मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 11 जून सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। मीडियम वेव और एफएम पर हमारे प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

वंदना आत्मनिवेदन है प्रभु से, कुछ मांगते हैं तो कुछ शुभ होने की कामना करते हैं। मन में बस यही विचार होता है कि सत्य मार्ग पर चले सदा प्रभु, ऐसा दे दो हमको ज्ञान, ना भटके कहीं मन ये मेरा, लगा रहे बस आप में ध्यान।

मैंने मन को मंदिर बना लिया, उसमें आसन लगवाना तेरा काम है। मैंने चरणों में सिर को झुका ही दिया, अब इस सर को उठाना तेरा काम है।

इसी भजन के साथ आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आज की वंदना में स्वर थे लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, तालिब हुसैन और भाई गोपाल सिंह के।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रभु वंदन के बाद अब सुनते हैं आज का चिंतन।
1: मनुष्य के जीवन में अचानक ही ऐसे भीषण संकट आ जाते हैं कि जिनकी मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर पाता, और ऐसे समय में वे व्याकुल, व्यथित तथा हतबुद्धि हो जाता है। मूल्यवान धन का अपहरण, मिथ्या दोषारोपण, आकस्मिक दुर्घटना या किसी प्रियजन का निधन, ये सब संकट या विपत्ति का ही रूप है। लेकिन महात्मा तुलसीदास जी बताते हैं कि विपत्ति के सच्चे साथी मनुष्य के पास हमेशा ही सहायता के लिए तैयार खड़े रहते हैं, लेकिन वो हमेशा उनका अनादर और अपमान करता रहता है। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। धैर्य को सहारा देने वाली मनुष्य की अपनी अर्जित की हुई विद्या ही तो है, जो कि मित्र के रूप में सदैव उसकी सहायता के लिए तैयार खड़ी रहती है। विद्या ही विवेक को जन्म देती है, जिस विद्या से धैर्य, क्षमा, धर्म और विनय जैसे गुण व्यक्ति में आते हैं और वे विपत्ति को आसानी से पार कर लेता है। विवेक का अर्थ है कि मानसिक संतुलन को सुरक्षित रखकर विचार पूर्वक कदम उठाना। विवेक और भावुकता में प्राय विरोध ही

0: मनुष्य भावुकता के वशीभूत होकर रोने बैठ जाता है और विवेक खोकर वो अकर्मण्य हो जाता है, और अकर्मण्य मनुष्य संकटों से कभी निकल ही नहीं पाता। अविवेक हमेशा आपदाओं को आमंत्रित करता है और विवेक उनका समाधान करता है। भावुकता के आवेश में रोते रहना किसी समस्या का समाधान नहीं है। धीरास्त्रंति विपतम नहीं तेन चित्ता, अर्थात धैर्यवान विपत्ति को पार कर लेते हैं, दीन चित्त नहीं। अपने धैर्य के अलावा कोई वस्तु मनुष्य का संकट से उद्धार नहीं कर सकती। धैर्यवान पुरुष संकट आने पर और दृढ़ हो जाते हैं। सच तो यह है कि संकट आए तो और दृढ़ और साहसी बनना चाहिए। जीवन की सार्थकता उत्साह के साथ जीने में है, उससे भाग खड़े होने में नहीं है। जीवन एक चुनौती है। विवेकशील व्यक्ति चुनौतियों को स्वीकार करके उनका उत्तर देने के लिए कर्म क्षेत्र में कूद जाता है। वो दूसरों को भी जीने की राह दिखाता है और लोग उसे आदर्श मानकर महापुरुष की संज्ञा दे देते हैं। संकट में सुकृतों के प्रताप से अप्रत्याशित सहायता और गहन सांत्वना प्राप्त हो जाती है। शोक मनुष्य की शक्तियों को चाट जाता है। अशांति के क्षणों में ईश्वर के प्रति सत्य निष्ठा ही होनी चाहिए। ईश्वर भक्त घोर विपत्ति में दया करता है। प्रभु का कल्याणकारी हाथ देखता है मनुष्य तो साहस के साथ विपत्ति से निकल जाता है। ईश्वर में निष्ठा होने से खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आता है। जीवन में दुख का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दुख का सही उपभोग करने पर मन निर्विकार हो जाता है। कुंती ने भी भगवान कृष्ण से दुख का ही वरदान मांगा था। हे जगत गुरु, मुझे सदा दुख ही प्राप्त होते रहे। जीवन की भांति मृत्यु एक सहज घटना है। संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत ही मरण है। जीवन के बाद मृत्यु होना ही एक वास्तविक सत्य है। वास्तव में मनुष्य अपने को कर्ता भोक्ता मानने के कारण सुखी और दुखी होता है। देवी प्रवाह में मनुष्य निमित्त मात्र है। जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन, अर्थात हे अर्जुन, तू अपने को निमित्त मात्र मान। गतिशील मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं माना जाता, उसी प्रकार गतिशील से श्रम करने से वे पाप मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं। दुख के वेग को आध्यात्मिक दिशा में मोड़ देने पर वो सत्य का साक्षात्कार कराने में समर्थ हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा है कि वीरों के आंसू बाहर निकलकर सूखते नहीं, बल्कि वृक्षों के रस की भांति अंदर ही अंदर उसे पल्लवित करते रहते हैं। यदि हम दुख से मोह त्याग की शिक्षा ग्रहण करके सुख का मोह त्याग कर दें तो दुख से सदा के लिए अत्यधिक निवृत्त हो जाएंगे। रहीम दास जी ने तो विपत्ति के लिए यहां तक कहा है कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परे सब कोए।
1: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव और एफएम पर हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 6:35 हो चुके हैं। समय है स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में हल्दी के गुण के संबंध में जानकारी दे रहे हैं राम स्वरूप गंगवार।
2: हल्दी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। हल्दी का यूं तो प्रयोग हम मसाले के रूप में करते हैं, इसके गुणों को भी जानना बहुत जरूरी है। हल्दी सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। हल्दी का प्रयोग आमतौर पर खून के रिसाव को रोकने या चोट को ठीक करने के लिए किया जाता है। कई बार हाथ पैरों में होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए भी हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर हल्दी का सेवन दूध में मिलाकर ही किया जाता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक गुण होते हैं। वहीं दूध

0: मौजूद कैल्शियम हल्दी के साथ मिलकर शरीर को फायदा पहुंचाता है। हल्दी का सेवन शरीर को सुडौल बनाता है। प्रतिदिन एक गिलास दूध में सुबह के समय आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से शरीर सुडौल हो जाता है। गुनगुने दूध के साथ हल्दी के सेवन से शरीर में जमा अतिरिक्त फैट धीरे धीरे कम होने लगता है। इसमें उपस्थित कैल्शियम और अन्य तत्व वजन कम करने में भी मददगार होते हैं। हल्दी के सेवन से रक्त शोधित होता रहता है। इसे खाने से रक्त में मौजूद विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। पतला होने के बाद रक्त का धमनियों में प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे व्यक्तियों को हृदय संबंधी परेशानियां नहीं होती। हल्दी में किसी चोट के घाव को तेजी से भरने का भी गुण होता है। यदि आपकी चोट लगने पर तेजी से खून बह रहा है तो आप उस जगह तुरंत हल्दी डाल दें। इससे आपकी चोट का खून बहना कम हो जाएगा। हो सके तो डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पहले इस पट्टी को ना खोलें। सर्दी जुकाम या कफ की समस्या होने पर हल्दी मिले दूध का सेवन लाभकारी साबित होता है। इससे सर्दी जुकाम तो ठीक होता ही है, साथ ही गर्म दूध के सेवन से फेफड़ों में जमा हुआ कफ भी निकल जाता है। सर्दी के मौसम में इसका सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है और हल्दी के गुणों के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिससे हड्डी संबंधित तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस में भी कमी आती है। यदि आपको भी रात में नींद नहीं आने की समस्या है और आप रात भर विचारों में खोए रहते हैं तो हल्दी वाला दूध आपके लिए अच्छी नींद में सहायक हो सकता है। रात का भोजन करने के बाद सोने से आधे घंटे पहले हल्दी वाला दूध पिए, देखिए आपको रात में कैसी नींद आती है। खून में ब्लड शुगर बढ़ने पर हल्दी वाले दूध का सेवन फायदेमंद रहता है। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से शुगर लेवल कम होता है, लेकिन हल्दी का ज़्यादा सेवन ब्लड शुगर की निर्धारित मात्रा को भी कम कर सकता है। समझ गए होंगे कि हल्दी कितनी गुणकारी है। इसका सेवन आप जरूर करें। एक चम्मच हल्दी आप नियमित रूप से शाम को खाने के बाद दूध में प्रयोग करें, तब आप देखेंगे कि स्वस्थ रहेंगे।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण, 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। सुबह 7 बजे लोक रंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे मुंगर खां और साथियों के गाए कुछ राजस्थानी लोकगीत। इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे का समय रहेगा 7:31। उर्दू प्रोग्राम के तहत सवेरे 9:30 पर आज समाज फरमाइएगा प्रधानमंत्री के 1500वें कार्यक्रम पर मबनी ओबी में जनाब फैसल शाह खां से की गई बातचीत। इसके अलावा बढ़ती गर्मी और एहतियात पर मबनी गुफ्तगू भी इसी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे। 10 बजे का समय रहेगा अनुरोध पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपके अनुरोध पर का सुनहरा दौर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। आज इसमें आप सुन सकेंगे 90 के दशक के कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे।

धरोहर के अंतर्गत दिन में 11 बजे आप सुनेंगे धारावाहिक कहानी खंडहरों की। 11:30 पर मन भावन कार्यक्रम होगा जो कि श्रोताओं की शब्दावलियों पर आधारित

가. दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत आपके नाम। लोकगीतों का कार्यक्रम होगा धरती गाती है दिन में 1:15 पर। आज इसमें कलाकार होंगे रामनारायण मौर्य। ग्रामीण बहनों के लिए आंचल कार्यक्रम होगा दिन में 1:30 पर, जिसमें आज श्रीमती शिखा सक्सेना की वार्ता होगी महिला सशक्तिकरण।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी आज शाम 4 बजे, जिसमें संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:15। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर आज किसान भाई सुनेंगे कृषि पत्रिका खेत खलिहान।

शाम 7 बजे विविधा के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे वार्ता राम प्रसाद बिस्मिल और उनकी सरफरोशी की तमन्ना। वार्ताकार होंगे शन्नू खां। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:31 पर आज आप सुनेंगे संजीव पराशरी की गाई चंद गजलें। सबरस कार्यक्रम में रात 9:30 पर आज हम आपके लिए लेकर आएंगे धर्मपाल सिंह और रागिनी के गाए कुछ लोकगीत। 10:30 का समय रहेगा गीतांजलि कार्यक्रम का। ये थी हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 होने को हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज सुनिए इसकी भाग संख्या 325। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडकर और रविन्द्र साठे और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।
1: एपिसोड नंबर 325, 325.

आधी रात बीत चुकी है। शक्तिबाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। संजीवनी लेकर हनुमान अभी तक नहीं आए। लक्ष्मण को हृदय से लगाकर श्री राम विलाप कर रहे हैं। हे भाई, तुम तो कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे लिए तुमने माता पिता तक को छोड़ दिया। वन वन भटकते हुए शीत, घाम, वर्षा, आंधी सभी कष्ट सहे। अब तुम्हारे उस प्रेम को क्या हो गया? तुम उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि एक दिन मुझे मेरे प्रिय भाई का वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचन की मर्यादा को भी भुला देता। पुत्र, स्त्री, धन, घर परिवार, इस जगत में सब कुछ मिल जाते हैं। नहीं मिलता तो वो है सहोदर भाई। स्त्री के लिए ऐसे भाई को खोकर

मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा। मुझे परम हितकारी जानकर माता ने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को मेरे हाथों में सौंपा था, अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। श्री राम के कमल सरीखे नैनों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ तो अद्वितीय और वियोग रहित हैं, किंतु अपने प्रिय भाई के लिए विलाप करते हुए मनुष्यों की दशा दिखा रहे हैं, ये भी उनकी एक लीला है। तभी वहां संजीवनी लेकर हनुमान आ पहुंचते हैं। उधर अनेक उपाय करके अपने भाई कुंभकर्ण को जगाकर रावण उसे सारी कथा सुना रहा है।

अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। भाग संख्या थी 325 और स्वर थे सुरेश वाडकर तथा रविन्द्र साठे के। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: वा राजनीतिक दलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनम् प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः चतुर्विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य अथ च 25 अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ राजस्थानी लोकगीत। कलाकार हैं भूंगर खां और साथी।

लोकरंग कार्यक्रम में आज आपने भूंगर खां और साथियों के गाए राजस्थानी लोकगीत सुने। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

फिल्मी गीत सुनना हुआ अब और भी आसान, ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप के भी संग। हर रोज शामिल हो जाइए अपने नाम और एड्रेस के साथ दिन में 12:10 पर। हम करेंगे गीत आपके नाम।

0: देश के हो आप किसी भी शहर, गांव या इलाके से, झट उठाइए अपना मोबाइल और टाइप कीजिए अपना नाम और शहर, भेज दीजिए हमारे मेल एड्रेस पर गीत आपके नाम airrampur@gmail.com और व्हाट्सएप वही आपका जाना पहचाना नंबर 9410087876। याद रखिए दिन में 12:10 पर गीत आपके नाम।
1: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
2: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
1: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
2: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
3: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
2: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
4: से नो टू प्लास्टिक।
5: जल के बिना तो जल जाओगे, पानी की एक बूंद बिना तुम कैसे प्यास बुझाओगे।
6: कीमत समझो पानी की अब, वरना फिर पछताओगे।
7: रिश्ते नाते पीछे होंगे जब जल की होगी मारा मारी, रुपयों से भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी।
6: जल है

0: कल है,
1: यही चिंतन पल पल है।
0: पानी को बचाकर रखिए, इसका सदुपयोग कीजिए।
2: सच्ची एक कहानी है, पानी जिंदगानी है। सच्ची एक कहानी है, पानी
3: मीडियम वेव और एफएम पर हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं।
4: भगवान से डरो।
3: 7:18 हुए, कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे।
4: सिद्धतों और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
5: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
4: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
5: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
4: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
5: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
4: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, कहा पूरी होंगी 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है यह अभूतपूर्व कीर्तिमान। भारत और भूटान के बीच और मजबूत होंगे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध। राज्य सरकार ने वाराणसी में 2 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए भूटान सरकार के साथ किया एमओयू। और बीती रात से शुरू हुई बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। राज्य में कुछ स्थानों पर आज और कल भी है बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। इस अवसर पर कल नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक

0: स्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों के आयोजन शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस अवसर पर लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट।
3: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कल वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए भूटान की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और भूटानी अधिकारियों के बीच हस्ताक्षरित MOU के अनुसार परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने भूटान को यह भूमि मात्र 1 रुपये के नाम मात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
5: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच विवेचनाओं, गिरफ्तारी अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रदेश के गोरखपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, संभल और पीलीभीत सहित कई जिलों में बीती रात से तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल भी कुछ स्थानों पर बारिश तथा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी भी जारी की है। गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में बीती रात लखनऊ हाईवे पर नारायणपुर के पास एक तेज रफ्तार एसयूवी की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हैं। वहां की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि यह दुर्घटना कल रात 11:15 उस समय हुई जब एक बेकाबू एसयूवी ने पीछे से दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, कहा पूरी होंगी 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है यह अभूतपूर्व कीर्तिमान। भारत और भूटान के बीच और मजबूत होंगे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध। राज्य सरकार ने वाराणसी में 2 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए भूटान सरकार के साथ किया एमओयू। और बीती रात से शुरू हुई बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। राज्य में कुछ स्थानों पर आज और कल भी है बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद 8:00 प्रसारित होगा। नमस्कार।
6: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
7: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
8: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हो चुके हैं। श्रोताओं, आप सुनिए इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे।

दूर हुआ अंधेरा, दूर क्षितिज के पीछे से झांके एक नया सवेरा। उपवन के फूलों से महकी हर कोना हर क्यारी, नई उम्मीद का दामन थामे जाग गई दुनिया सारी। रवि आया, किरणें फैली, दूर हुए अंधेरे, धरती पर उस चित्रकार ने फिर से नए रंग बिखेरे। भोर भई एक मतवाला पाहुन आया घर मेरे, अपनों का संदेशा लेकर वो आया सुबह सवेरे। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग रामपुर। मौसम ने करवट बदली है, भीषण गर्मी की मार झेल रहे थे हम सभी, और कल शाम से बारिश की रिमझिम बूंदों ने हम सभी को गर्मी से राहत दिलाई। मौसम का चक्र तो बदलता रहता है और उसी तरह से हम सभी का जीवन चक्र भी घूमता है और वक्त के साथ नए नए पड़ावों को पार करता हुआ बढ़ता रहता है। कुछ वादों, कुछ इरादों को पूरा करने के लिए जो हमने खुद से किए होते हैं, तो आज कौन सा वादा आपने खुद से किया है, कौन सा इरादा लेकर आप घर से निकलेंगे, ये बात अपने मन में रखिएगा और सुनते रहिएगा हमारा ये प्रोग्राम सुबह सवेरे, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी अपर्णा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कहते हैं जीवन है तो सुख दुख भी होता है, कभी पॉजिटिव तो कभी मन को व्यथित करती हुई बातें या फिर घटनाएं भी घटती हैं। कभी उपलब्धियों की पताका हवा में लहराती है तो कभी कुछ खो देने की व्यथा मन को अंधेरा कर देती है। बात राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो तो ये सभी घटनाएं इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना लेती हैं। हर दिन कुछ न कुछ खास घटता है। आज यानी 11 जून की तारीख इतिहास में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें समेटे हुए हैं, अब ये जान लेते हैं। आज ही के दिन 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महान क्रांतिकारी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। इसी दिन 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की। 11 जून 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा तैयार करने के लिए समिति का गठन हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना भी आज ही के दिन हुई थी। साल था 1866। इसे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। इसी दिन 1935 में एडविन आर्मस्ट्रांग ने पहली बार एफएम रेडियो का प्रसारण किया। मार्गरेट थैचर लगातार तीसरी बार ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी 11 जून 1987 को। इसी दिन 2008 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारतीय वायुसेना में शामिल की गई। 11 जून 2010 को पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप में फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था। इसी दिन 1955 में पहले मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी। और आज के दिन 1964 में जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के मुताबिक उनकी अस्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में बिखेरा गया था। आज के दिन 2007 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स के पास एक बड़ी सफलता हासिल की थी। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी का जन्म भी आज के दिन हुआ था, वर्ष 1989 में। प्रसिद्ध भारतीय तैराक मिहिर सेन नहीं रहे 11 जून 1997 को। और इसी दिन 2021 में कन्नड़ कवि और सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धलिंगय्या ने दुनिया को अलविदा कहा। ये थी आज के दिन के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। और अब लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद डालेंगे नजर अपने आसपास के क्षेत्र पर।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
5: और श्रोताओं, अब जान लेते हैं अपने शहर रामपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहले तो खुशखबरी रामपुर शहर के वासियों के लिए, क्योंकि रामपुर जिले में CM डैशबोर्ड पर कानून व्यवस्था शिकायतों के निस्तारण में मई माह 2026 की रैंकिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। CM डैशबोर्ड रैंकिंग में रामपुर जिले ने 88.8% अंक प्राप्त कर मई माह 2026 में प्रथम स्थान पर अपनी जगह बनाई है। और इससे पूर्व जुलाई 2024 से अब तक रामपुर जिला CM डैशबोर्ड रैंकिंग में 22 बार प्रथम स्थान पर कायम रहा और

जून 2025 में द्वितीय स्थान पर रहा। रामपुर जिले में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की मई 2026 की रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश स्तर पर विकास एवं राजस्व कार्यों में भी शीर्ष 10 स्थानों में जगह पक्की की है। जारी रैंकिंग के अनुसार रामपुर को विकास कार्यों से संबंधित श्रेणी में 10 में से 9.30 अंक मिले हैं और रामपुर ने पांचवा स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी रामपुर के मुताबिक मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्राप्त ये उत्कृष्ट रैंकिंग शासन की मंशानुसार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण और विभागीय कार्यों के सतत मॉनिटरिंग का परिणाम है। एक और खुशखबरी रामपुर वासियों के लिए, कभी अवैध कब्जों, गाद जमाव, खेती किसानी और अन्य कारणों से अस्तित्व खो चुकी जिले की 5 नदियां अब पुनर्जीवन की मिसाल बनकर पूरे प्रदेश के सामने आने वाली हैं। वर्षों पहले जिन नदियों का नाम तक लोगों की स्मृतियों से मिटने लगा था, आज वो फिर से अपने प्राकृतिक स्वरूप में बह रही हैं और इन नदियों के पुनर्जीवन होने की कहानी अब एक विशेष डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देश और प्रदेश के सामने प्रस्तुत की जाएगी। इसकी प्रदेश स्तर से तैयारी हो रही है और ये काम नमामि गंगे विभाग के मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा के तहत किया जा रहा है। हमारे जिले की नदियां हैं नाहल, नीली, आरिल, नैया और रेवती, और इन सभी पर विस्तृत डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है और उसमें दिखाया जाएगा कि किस प्रकार वर्षों से सूखी पड़ी और अतिक्रमण की शिकार इन नदियों की स्थिति अब क्या है और पूर्व में कैसी होकर रह गई थी। जिला प्रशासन की सक्रियता, ग्राम पंचायतों और स्थानीय लोगों के सहयोग से फिर से उन्हें जीवंत बनाया गया है। रामपुर में बेसिक शिक्षा विभाग ने मौजूदा शिक्षा सत्र के लिए परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएसए ने सभी बीईओ को शासनादेश के अनुरूप आवेदन पत्रों का सत्यापन कर समयबद्ध रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। बीएसए की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार दिव्यांग शिक्षक अथवा उनके पति पत्नी या अविवाहित पुत्र पुत्री के दिव्यांग होने, कैंसर या डायलिसिस जैसी गंभीर बीमारी से प्रभावित होने की स्थिति में स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। बुधवार को कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बिलासपुर में सहभागिता की। राज्य मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भारत के संकल्प को मजबूत करने का संदेश दिया। ये तो थी हमारे आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, करते हैं कुछ एंटरटेनमेंट, सुनते हैं शीकीत।

और श्रोताओं, अब कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले अपने फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी है। सबसे बड़े और भव्य फुटबॉल महाकुंभ का शुभारंभ आज हो रहा है। 48 देश, 1248 खिलाड़ी और लक्ष्य एक, फीफा विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी, वो ट्रॉफी जो आज तक सिर्फ 8 देश ही जीत पाए हैं। अमेरिका की उष्णकटिबंधीय जलवायु में जहां औसत तापमान 32 डिग्री रहेगा, वहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी खेल से तापमान को और बढ़ाने के लिए श्रोताओं जी जान लगा देंगे और अगले 39 दिन तक दुनिया फुटबॉल के मैदान तक सिमट कर रह जाएगी। तो सभी खेल प्रेमी इसका आनंद उठाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप का जो ये समा बधा है उसको पूरी तरह से जिएंगे। और अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले पायदान पर। ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। वो भक्ति दे के बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वो शक्ति दे के दुख में कायर न ये हृदय हो। यूं तो ये कविता की चंद पंक्तियां सुनाई देती हैं, लेकिन अगर ये पंक्तियां उस वीर सिपाही की कलम से निकली हो जिसने मातृभूमि की राह में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हो, तो यकीनन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज यानी 11 जून का दिन विशेष महत्व रखता है। आज ही के दिन 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। वे उन अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का बिगुल फूंका और युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत की। बिस्मिल ने कम उम्र में ही देश की आजादी को अपना लक्ष्य बना लिया था। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व भी करते थे। उनका संबंध

फांसी पर चढ़ाने के लिए इन्हें ले जाया जा रहा था तो भी वो जेल के गलियारों में कुछ यूं गुनगुनाते जा रहे थे, अपनी कविता कहते जा रहे थे कि चर्चा अपने कत्ल का अब दुश्मनों के दिल में है, देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में है, कौम पर कुर्बान होना सीख लो ए हिंदियों, जिंदगी का राज मुजमिर खंजरे कातिल में है, साहिली मकसूद पर ले चल खुदा रा ना खुदा, आज हिंदुस्तान की कश्ती बड़ी मुश्किल में है, दूर हो अब हिंद से तारीकी ये बुग्ज़ो हसद, अब यही हसरत यही अरमा हमारे दिल में है।

और अब आज के इस प्रोग्राम से अपने रेडियो साथी अपर्णा को दीजिए इजाजत। जल्दी इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलने आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी रामपुर है। 8 बजने वाले हैं अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
4: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
3: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
6: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
5: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
7: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है। कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
5: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन

0: दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
5: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है, संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है, पत्र लिखता है इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी, माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है, फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना, और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
7: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure, convergence, partnerships and data-driven systems alongside a structured mechanism to track short, medium and long-term outcomes ensuring accountability and measurable impact. A key thrust will be on aligning state visions with the national vision on inclusive human development, reinforcing a unified and collaborative approach towards equitable and sustainable growth. The Governing Council of Niti Aayog will also focus on the recommendations of 5th National Conference of Chief Secretaries held during 26th to 28th December last year. With Anupam Misra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
8: Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said for the first time the people of the country have seen that when a government is run with the right intention,

0: The capacity in India for Meta, the Financial Express mentions. Reliance Meta deepened ties with AI data center deal. Pact highlights new infra model for AI build-out. The Times of India in its editorial piece titled Control Shift, AI is not destroying the job market but changing it. There will be jobs aplenty if you update your skills. In white-collar circle, this is the best of times. And finally, human contribution to global warming, highest ever in 2025, says an annual study called Indicators of Global Climate Change. The findings are a further reminder to the rapidly rising global temperatures, writes the Indian Express. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही सम्त में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशरक, मगरबी बंगाल, जेली हिमालयी खित्ते, उड़ीसा, केरला और माहे में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। अमरीकी फौज ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। विकसित भारत के लिए टीम इंडिया के वजीर आजम के नजरिए के ऐन मुताबिक इस साल के मौजू विकसित भारत 2047 के लिए जामे इंसानी तरक्की में उम्र, खित्ते, सिंफ या समाजी और माशी पस मंजर के कतई नजर हर भारतीय की बहबूद और तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई है। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में इस नजरिए को हकीकत की शक्ल देने और पूरे मुल्क में हर शहरी के लिए इसे ठोस और नुमाया नतीजे में बदलने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान चार बुनियादी पहलुओं के ताल्लुक से इंसानी फरोग के जामे फ्रेमवर्क पर गौरखोज करेंगे, जिसमें बुनियादी इंसानी सरमाया, मुस्तकबिल के लिए तैयार हुनरमंदी, रोजगार, छोटा कारोबार, सेहत, तग़ज़िया और बहबूद, नीज सबके लिए मुसावात और वकार शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: आज की इस मीटिंग में पूरे मुल्क में कारोबार को फरोग देने, हुनरमंदी की वसत और रोजगार के पायदार मौके पैदा करने के इकदामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा अमल दरआमद से मुतालिक खाका इज्तिमाई तौर पर तैयार करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसमें हुक्मरानी, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे, साझेदारी, डेटा पर मबनी निजाम, नेज मुख्तसर, दरमियाने और तवील मुद्दती नतीजों पर नजर रखने का एक मुनज्जम तरीका कार शामिल होगा। इस तरह जवाबदेही और नुमाया असर

0: को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसके साथ साथ जामे इंसानी फरोग के ताल्लुक से कौमी नजरिए के साथ रियासतों के नजरियात को हम आहंग करने पर भी खास जोर दिया जाएगा, ताकि मसावियाना और ठोस तरक्की की समत मुत्तहदा और इज्तमाई हिकमत अमली को तकवियत मिल सके। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल चीफ सेक्रेटरियों की पांचवी कौमी कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पर भी तवज्जो मरकूज करेगी, जो पिछले साल दिसंबर के अवाखिर में हुई थी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की उमंगें यकीनन पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के भरोसे को तकबीयत बख्शी है। जनाब मोदी कल शाम नई दिल्ली में वाकई भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि 2014 में उभरती हुई उम्मीद की किरण आज एक नए एतमाद की किरण में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों ने पहली बार इसका मुशाहिदा किया है कि जब हुकूमत सही नीयत के साथ चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज रफ्तार से होती है। वजीर आजम ने कहा कि एनडीए हुकूमत के 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और ये सही समत में गामजन हैं।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे वक्त में कि जब दुनिया भर के बड़े ममालिक इक्तिसादी मसाइल से दोचार हैं, भारत ने साल 2025-26 में 7.7% की शरह तरक्की हासिल की। उन्होंने कहा कि मुल्क 5 कमजोर मईशतों के जुमरे से निकल चुका है और अब दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक बन चुका है।
2: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना है।
1: ऐसे भारत का सफर है जिसने बड़े अहदाफ मुकर्रर करके और आलमी अदम इस्तेहकाम के हालात में भी इन अहदाफ को हासिल करने की अनथक कोशिश करके पहली बार अपनी मुकम्मल सलाहियतों को बरूए कार लाना शुरू किया। कल कौमी जमहूरी इत्तेहाद ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें मुल्क के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर जनाब मोदी की तारीफ की गई है। बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली में एनडीए के कॉन्क्लेव में 35 सियासी पार्टियों के 75 मंदूबीन ने शिरकत की। नामानिगारों से बात करते हुए जनाब नवीन ने कहा कि एनडीए के रहनुमाओं ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत के तई तशक्कुर का इजहार किया और तारीखी संग मील पर उन्हें मुबारकबाद दी और इसे मुल्क के 140 करोड़ लोगों के लिए फख्र का लम्हा करार दिया। जनाब नितिन नवीन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत विकसित भारत के नजरिए की समत आगे बढ़ रहा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के वजीर आजम के रहनुमाई वाले मंत्र से मुल्क भर में लोग बाहम मुंसलिक हुए हैं। भारत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के वसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के उन्वान से एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
3: गुज़श्ता 12 साल के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ़ुज़ को मुस्तहकम करने के लिए कई अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीबों को मकानात मुहैया करने पर मोदी हुकूमत ने खास तवज्जो दी है। खुराक की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को

0: अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उड़ीसा के कालाहांडी की इंद्रावाणी नायक ने बताया कि गरीब लोग इस स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं।
1: गरीब कल्याण अन्न योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली पांच है जो हमको पांच पांच किलो दे रहे हैं। पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं। अभी जो पांच पांच किलो हमारा परिवार खूब खुश पूरा बहुत आराम से रह रहे हैं।
0: हिफ्जान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी अवामी स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इक्तिसादी तौर पर कमजोर कुंबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज फराहम कर रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों से जेनरिक दवाएं कम कीमतों पर मुहैया की कराई जा रही हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला के फैयाज अहमद ने बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गरीबों को मुश्किल तरीन हालात के दौरान इलाज हासिल करने में सहूलत फराहम की जा रही है।
2: मैं एनडीए सरकार और मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारी जो स्कीमें चलाई, जिसमें मुल्क के अंदर हिस्ट्री में पहली बार एक गरीब को सीधा बरह रास्त फायदा पहुंचा डिजिटलाइजेशन के जरिए। आयुष्मान भारत की बात करना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार से पहले मुल्क में यह होता था, अचानक किसी की बीमारी का पता चलता था या बीमारी के टाइम जो ऑपरेशन सर्जरीज करनी होती थी उन्हें या तो जमीन बेचनी पड़ती थी या घर की कोई कीमती शय बेच कर वो चीजों का पैसे का बंदोबस्त करके ऑपरेशन और बाकी चीजें कराने पड़ते थे। लेकिन जब से आयुष्मान भारत का स्कीम को मोदी जी ने लॉन्च करा है, तब से ये चीज पूरे मुल्क में नहीं है।
0: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा खवातीन को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन फराहम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
3: इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी अपनी मेंबर कंपनियों के जरिए मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है, जिससे रियासत की इक्तिसादी सलाहियत और तरक्की के इम्कानात में सनतों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी होती है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ब्रिजभूषण अग्रवाल की जेर क्यादत सनती इदारे के एक वफद और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के दरमियान नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान इस तजवीज पर तबादले ख्याल किया गया। मजकूरा ऐवानी तजारत ने कहा है कि मगरबी बंगाल में पुरउम्मीदी और मुस्बत रफ्तार का नया माहौल देखने में आ रहा है, जिससे माशी तरक्की की रफ्तार तेज करने में मदद मिल सकती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की और ओलंपिक्स खेल के बड़े मकासद मुतयन करने पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में मुनाकिदा एनडीए कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने नौजवान एथलीट्स की हुसूलियाबियों और भारत में खेलों की तेज रफ्तार तरक्की को उजागर किया।
4: भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारतीय एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है।
3: अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई खत्म कराने के लिए मुजाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बहरैन, कुवैत और उर्दन में जहां अमरीकी फौजी मुतायन हैं, ईरान के हमलों के चंद घंटों बाद ये अमरीकी हमले हुए। ईरान की मीडिया ने मुल्क के जुनूब में बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब और किशन जजीरे में धमाके होने की इत्तिला दी है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये तंबीह की है कि ईरान को तातुल का शिकार मुजाकरात की कीमत चुकाना होगी, जबकि अक्वामे मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे ने कहा है कि ईरान धमकियों और दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाजों समेत हर तरह के जहाजों के लिए आबनाए हुरमुज के बंद होने का दावा किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरला, माहे, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने और ओले गिरने का इम्कान है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
0: शुक्रिया असदुल्ला। قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخبارات نے وزیراعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک منتخب وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دینے کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بھارت کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سمیت متعدد ممالک کے سرکردہ رہنماؤں نے وزیراعظم کو مبارکباد دی ہے. روزنامہ پرتاب نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے اس بیان کو صفحہ اول پر نمایاں کیا ہے کہ زمینی سطح پر قوانین اور پالیسیوں کا نفاذ ہی اچھی حکمرانی کی کلید ہے. انہوں نے سول سروس میں خواتین کی بڑھتی ہوئی نمائندگی کی بھی ستائش کی.
3: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کریں گے. وزیراعظم نے کہا ہے کہ انڈیا سرکار کے گزشتہ 12 سال کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ افراد کو غربت سے باہر لائے جانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار کی پالیسیاں درست ہیں اور وہ صحیح سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. انڈین چیمبر آف کامرس مغربی بنگال میں 1,00,000 کروڑ روپے مالیت کی سرمایہ کاری میں سہولت پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مشرق مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اڑیسہ کیرالا اور ماہی میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. مغربی ایشیا میں کشیدگی میں پھر سے اضافہ ہو گیا ہے. اور وزیراعظم نریندر مودی نے بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی کی ستائش کی ہے اور اولمپک کھیلوں کے لیے بڑے نشانے طے کرنے پر زور دیا ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.
5: ہم آکاشوانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں. صبح کے 8:45 ہوئے ہیں. प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स.

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में। संगीत प्रीतम का था। अब सुनते हैं प्रीतम द्वारा संगीतबद्ध एक और गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म डंकी से। आवाज है अरिजीत सिंह की।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

अरिजीत सिंह को अभी आपने सुना फिल्म गदर 2 में, वो लिखे थे सईद कादरी ने और संगीत था मिथुन का। कार्यक्रम का अगला गीत परंपरा टंडन और सचेत टंडन की आवाजों में।

0: रेड टू फेम का गीत अभी आपने सुना, परंपरा टंडन और सचेत टंडन की आवाजों में।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: मेट्रो इन दिनों, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में। वो लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

102.9 मॉर्निंग हिट्स। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:15 होने को हैं। अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से बस अब

0: की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और बलरामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार त्रिपाठी का।
1: चंदौली में विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह और साधना सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में फलदार आम के पौधे का रोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से अधिक वृक्षों को रोपित करने की अपील करते हुए कहा कि वृक्ष पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के बारे में राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने बताया कि जनपद में स्वच्छ व समृद्ध पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु इस वर्ष की थीम एक पेड़ माँ के नाम पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। उन्होंने लोगों से पौधरोपण की अपील करते हुए कहा कि अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण हेतु जागरूक करें और उन्हें पर्यावरण के महत्व के बारे में भी बताएं। राज्यसभा सांसद ने बताया कि
2: प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में ये अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। बहुत जरूरत है कि पर्यावरण को हम बचाएं। धरती जिसको माँ के रूप में देखते हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है।
1: मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई ने बताया कि जिले भर में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि इसमें अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। गत दिनों चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने नारायणपुर पंप कैनाल नहर में सफाई एवं मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण में लौदा गाँव के पास नहर में साइड स्लोप एवं ड्राइंग के अनुसार नहर की चौड़ाई, गहराई और किनारों का ढलान कार्य की गुणवत्ता परखी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि नहर के किनारे तटबंध की मिट्टी को ठीक ढंग से दबाएं, जिससे नहरों में पानी के दबाव से तटबंधों का कटाव न हो। इसके अलावा उन्होंने नहर में पक्की दीवार निर्माण कार्य एवं उसकी मोटाई और मजबूती की भी जांच की। उन्होंने सहायक अभियंता अनुराग सिंह को निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोताही न बरतने और कार्य को तय मानक में तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य पूर्ण होने पर टेक्निकल टीम से जांच सुनिश्चित होगी। यदि निर्माण में गुणवत्ता की कमी और अंतिम छोर तक पानी न पहुंचने जैसी समस्या आई तो संबंधित के खिलाफ विभागीय जांच और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मानकों के विपरीत घटिया सामग्री का उपयोग या तय समय में काम पूरा न करने पर ठेकेदारों का भुगतान रोकने, जुर्माना लगाने के साथ ही ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता चंद्र प्रभा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विगत दिनों चंदौली के साहबगंज विकास खंड के मसोई गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में कृषि वैज्ञानिकों ने चौपाल लगाई। चौपाल में स्वस्थ मिट्टी, सशक्त किसान, समर्थ भारत और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम के तहत बृहद वृक्षारोपण अभियान के बारे में लोगों को किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र एवं जिला उद्यान विभाग की ओर से आयोजित चौपाल में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरकों के प्रयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती और मृदा की उर्वरता बढ़ाने के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ वैज्ञानिक अभयदीप गौतम ने कृषकों को धान के बीज शोधन की विधि, प्रमाणिक बीज की उपलब्धता, धान की नर्सरी का प्रबंधन और धान में लगने वाले प्रमुख रोगों एवं उसके नियंत्रण उपायों के बारे में विस्तार से बताया। उद्यान वैज्ञानिक मनीष सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व, वृक्षारोपण की आवश्यकता, फलदार पौधों के रोपण की विधि, गड्ढों की तैयारी एवं खाद प्रबंधन के विषय में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिला उद्यान अधिकारी शैलेंद्र दुबे ने किसानों को उद्यान विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं, पौधरोपण कार्यक्रमों और सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीकों की जानकारी दी। कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि
3: खेत बचाओ अभियान, इसके अंतर्गत हम लोग जो किसानों को हम लोग अंधाधुंध जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी संतुलित उर्वरक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसी के परिपेक्ष में पिछले एक माह से एक जागरूकता कार्यक्रम चल रहा था संतुलित उर्वरकों का प्रयोग एवं प्रबंधन, उसी की कड़ी में अब यह खेत बचाओ अभियान का कैंपेन चल रहा है जो कि 1 से 31 जून तक चलेगा। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती तकनीकी दे रहे हैं, जो उनके पैकेज हैं प्राकृतिक खेती के बारे में उनका प्रयोग कैसे करें, और हम दलहनी फसलों का समावेश कर रहे हैं, हरी खाद बनाने के लिए सनई ढैसा के साथ साथ उर्द मूंग के बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं।
1: चंदौली के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद में खरीफ फसलों के लिए धान व ढैसा के बीज और विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने किसानों से अपील किया है कि वे किस अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी आवश्यकता अनुसार ही उर्वरकों की खरीद करें, यूरिया का अधिक मात्रा में प्रयोग न करें।
0: चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्रा का।
4: बलरामपुर में विकास कार्यों की हकीकत देखने के लिए जिलाधिकारी द्वारा लगातार गांव का भ्रमण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन द्वारा विकास खंड हरैया सतघरवा के नेपाल सीमा से सटे ग्राम बारहवा का भ्रमण कर ग्राम में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रही सुविधाओं एवं योजनाओं के लाभ के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने ग्राम में पेयजल, विद्युत, सड़क, राशन वितरण, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं से वंचित न रखा जाए। बलरामपुर में यूपी बोर्ड, सीबीएसई एवं आईएससी बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में जनपद स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक पलटू राम ने कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में नकलविहीन एवं पारदर्शी से परीक्षा प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का वास्तविक सम्मान प्राप्त हो रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बंधु की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों की समस्याओं, सुझावों एवं विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित पूर्व सैनिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनपद बलरामपुर में सरकारी गेहूं के केंद्रों पर इस वर्ष खरीद के लक्ष्य को पार कर लिया है। 15 जून तक खरीद की अवधि निर्धारित है, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीद कर ली है। बलरामपुर में 17,500 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष अब तक 18,300 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, यानी लक्ष्य के मुकाबले 105% खरीद दर्ज की गई है। इस अभियान से अब तक 3,532 किसानों को लाभ मिला है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी उमेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि सभी किसानों के खातों में भुगतान भेज दिया गया है। 152 किसानों का भुगतान अगले दो दिनों में कर दिया जाएगा। बताया कि अभी 15 जून तक गेहूं की खरीद जारी रहेगी। वहीं गेहूं के केंद्र मंडी समिति भगवतीगंज में गेहूं बेचने आए किसान विजय कुमार ने कहा कि सरकार की अच्छी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बलरामपुर के तहसील तुलसीपुर अंतर्गत ग्राम मध्यनगर बिलोहा में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जनपद को 293.95 करोड़ रुपए लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हर शंकरी का पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा जल है तो कल है का संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। बलरामपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1 जून से 30 जून तक 2026 तक स्वनिधि महोत्सव विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जनपद की सभी नगर निकायों में लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी न्यायिक परियोजना निदेशक जिला नगरीय विकास उपकरण डूटा द्वारा बताया गया है कि शासन के निर्देशों के क्रम में आयोजित इस विशेष अभियान में पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण कर उन्हें 15,000, 25,000 एवं 50,000 रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बलरामपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य सेक्टर की विभिन्न मत्स्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 से मत्स्य विभाग बलरामपुर द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक मत्स्य पालक एवं पात्र लाभार्थी विभागीय पोर्टल पर 28 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बलरामपुर में भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी अस्पतालों में हीट वेव से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लोगों को बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है एवं किसी प्रकार की दिक्कत होने पर तत्काल नजदीकी अस्पताल में संपर्क करने को कहा जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुनी चंदौली और बलरामपुर जिले की हलचल।
6: मीडियम वेव और एफएम पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम गौरव भारत देश के। आज का हमारा यह कार्यक्रम महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन पर आधारित है।
7: एक वीर बिस्मिल ऐसा फांसी को गिना नहीं जिसने, व्यायाम किया फिर यज्ञ किया, हंस जीवन होम किया उसने। ऐसे वीरों पर गर्व करें जो जीवन को गर्माते हैं, अपने जीवन की ज्योति जला जीवन ज्योतित कर जाते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। जब रामप्रसाद छोटे ही थे और विद्यालय पढ़ने को जाते थे, उस समय आर्य समाज के जलसों में आने वाले विद्वानों के विचारों से देश की स्वाधीनता प्राप्ति में क्रांतिकारी विचारों ने उनके मन में अपना स्थान जमा लिया। वो अहिंसावादी सिद्धांतों के समर्थक होते हुए भी राष्ट्र को बिना शस्त्र क्रांति के स्वतंत्र होना संभव नहीं मानते थे, अतः 1916 में स्वतंत्र समर में कूद पड़े। क्योंकि भाई परमानंद को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाकर अपनी क्रूरता और अपने अन्याय का परिचय दे ही दिया था, क्रांतिकारियों का संगठन बनना शुरू हुआ और रामप्रसाद बिस्मिल उसके नेता बनाए गए। अब क्रांति के लिए और अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता थी। 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़कर रामप्रसाद बिस्मिल क्रांति की गतिविधियों में लग गए। 1925 में पता लगा कि जर्मनी से रिवाल्वरों का एक चालान आ रहा है, जिसको प्राप्त करने के लिए नकद धन की जरूरत थी। इस बड़ी धनराशि के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना नुकसान पहुंचाए प्राप्त करना था। 9 अगस्त 1925 को यह निश्चय हुआ कि 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया जाए, इसलिए ट्रेन रोकी गई और बड़ी दिलेरी से खजाना प्राप्त कर लिया गया। यह घटना काकोरी स्टेशन से दूर जंगल में हुई। इसमें 10 क्रांतिकारी थे, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, शचीन्द्र नाथ मुकुंदी लाल, मनमत नाथ, बनवारी लाल, चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती और मुरारी लाल। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र नाथ लहड़ी को फांसी की सजा दी गई। शचीन्द्र नाथ बख्शी और मुकुंदी लाल को आजन्म कारावास दिया गया। मनमत नाथ को 14 साल की और बनवारी लाल को 5 वर्ष की सजा हुई। चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती कभी भी पकड़े नहीं गए। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का कहना था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरव भारत देश के।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

0: चीजों के बारे में बताया, लेकिन अगर हम जमीनी सच्चाई जानना चाहें कि क्या ये जो योजनाएं हैं, जो मंसूबाबंदियां हैं, ये सिर्फ कागजों की हद तक हैं या कहीं वाकई अमली तौर पर ये काम में आ रही हैं और कुछ लोगों को फायदा पहुंचा है?
1: ना ना, खाली कागजों की हद तक नहीं है, लोगों को काफी इससे फायदा हुआ और
0: जी
1: बहुत एक तरह के समझ लिए, बहुत बड़ा चेंज भी आया लोगों में, अवेयरनेस आई है, बेदारी
0: अच्छा
1: लोगों में आई है कि भाई ये कम से कम इतना उनको एक प्लेटफॉर्म तो कम से कम मिला है कि
0: जी जी जी
1: आपने इस चीज को बताने के नहीं है, अपने बाप को कहने के नहीं है, या अपना जो बना हुआ सामान था वो जो ये जो शॉपकीपर वगैरह होते थे ये बहुत ही ज्यादा सस्ते
0: कम
1: दामों में
0: दामों
1: दिया
0: में
1: था।
0: जी
1: अब इनको क्या है कि इनको एक निकल के बाहर, जैसे हुनर हाट में जाते हैं ये लोग, तो इनको कम से कम एक बाहर निकल के एक प्लेटफॉर्म, एक मौका तो मिला है उनको, ये तो
0: जी
1: पता चला कि मुमकिन ही क्या क्या होता है। ऐसे
0: अच्छा
1: जैसे आर्टिजन कार्ड बनता है,
0: जी जी जी
1: हैंडीक्राफ्ट
0: अच्छा
1: आर्टिजन कार्ड होता है, वो हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का होता है,
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: वो बनता है, उसमें आर्टिजन्स को बनवाया जाता है, वो भी यहाँ जिला उद्योग केंद्र के जरिए, और जैसे यहाँ का रीजनल ऑफिस बरेली में है तो वो वहां कार्ड बन के आ जाता है, शिल्पियों का एक पहचान पत्र ही होता है वो, तो उसमें ये होता है कि काफी इन लोगों को उससे भी पैसा पहुंच सकता है, स्कीमें होती हैं। अब जिनको नहीं करना है वो नहीं करने वालों के, नहीं तो कुछ भी आप उनका कुछ करिए, तो
0: जी
1: जिन्हें नहीं करना है, जिन्हें करना है, उनको जज्बा है, तो उनके लिए तो
0: तो
1: स्कीमें हैं, उनसे
0: फैसल
1: फायदा
0: साहब,
1: भी होता है।
0: इसकी सही जानकारी हमारे नौजवानों को कहाँ से मिल सकती है? क्योंकि ऐसा भी है कि बहुत सी योजनाएं हैं और जिन लोगों तक पहुंच गई वो ठीक है, लेकिन जिनके जराए ऐसे नहीं है कि उनको सही मालूमात नहीं है वहां तक पहुंचने की, तो उनके लिए क्या जरिए होने चाहिए, उन्हें किस तरह इन चीजों का फायदा पहुंच सकता है?
1: दरिये तो यह है कि आजकल मैं समझता हूँ कि 90% घर में बच्चे जो नौजवान है, मान लीजिए कि उनके बड़े जो हैं वो दस्तकारी कर रहे हैं या कहीं बीड़ी बनाने का काम हो रहा है या और हो रहा है, जो भी असलियत ज्यादा करती हैं काम, तो वो वैसे हैं, लेकिन वो मोबाइल से उसमें जो ऑनलाइन से भी गूगल से भी उसको सर्च कर सकते हैं, जो
0: अच्छा
1: नई स्कीमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की होती हैं,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: यहाँ जो इनकी वो होते हैं डिपार्टमेंट होते हैं लोकल, जैसे मैंने बताया आपको हैंडीक्राफ्ट वाला डिपार्टमेंट है
0: जी
1: या और है UPSDM और ये सब जितने भी हैं, तो वो उसमें गूगल में जाकर अपना सर्च कर सकते हैं, बच्चे आजकल मोस्टली पढ़े लिखे हो रहे हैं नए नए, वो उन्हें बता सकते हैं कि भाई जरा,
0: अच्छा
1: वो कहेंगे देख के हैं बताओ भाई कि हमारे
0: जी
1: लिए क्या
0: जी
1: क्या
0: जी
1: स्कीमें हैं, या जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो, सिलाई कढ़ाई से, पत्ती वर्क से, पैच वर्क से, या मान लीजिए कोई कारपेंटर का काम कर रहे हैं जेंट्स, तो या वायलिन बन रहा है, या इसमें हम क्या क्या और कर सकते हैं, सब कुछ ये समझ लिए
0: यानी
1: ज्यादातर
0: ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है
1: होती है, सब मौजूद होती है। और
0: जी
1: नहीं तो यहाँ पर जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक माइनॉरिटी ऑफिसर होते हैं, वहां डिपार्टमेंट होता है, जैसे यहाँ विकास भवन में है, तो
0: जी
1: वहां पे जाएं, उनसे बात करें, मिलें,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये
0: जी
1: जैसे हुनर हाट लगता है ये जरूर अटेंड करें, इनमें सब डिपार्टमेंट के लोग ज्यादातर, जैसे और भी अभी बीच में भी लगी थी यहाँ एक प्रदर्शनी में,
0: जी हाँ
1: उसका नाम बोल रहा हूँ, तो उनमें भी ज्यादातर डिपार्टमेंट आए थे और
0: जी
1: वो अच्छा था वो प्रोग्राम, उसमें सब लोग आए थे, अभी यहीं एग्जीबिशन के पास ही लगा था वो, मैं
0: अच्छा
1: नाम बोल रहा हूँ, तो वो उसमें आते हैं लोग, वो ऑफिसर वहां उनके डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो हेल्प करते हैं, ये हैंडीक्राफ्ट
0: जी
1: वाले हैं, इनसे इन लोगों से यहाँ पर मिलें, उद्योग केंद्र से रابطہ करें, माइनॉरिटी जो
0: बहुत
1: ऑफिसर हैं उनसे मिलें, वहां पर जाएं।
0: और बहुत सी ऐसी अहम मालूमात हमारे सामीन तक आपके जरिए से पहुंची, और हमें उम्मीद ही नहीं यकीन है कि हमारे सामीन और उनके जरिए से और दीगर अफराद भी इन स्कीमों से फायदा उठाएंगे जो कि वजीर आजम के 15 निकाती प्रोग्राम में शामिल हैं और हमारी ही फलाह व बहबूद के लिए हैं। तो फैसल साहब,
1: बिल्कुल
0: आपका
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अहम
1: बहुत
0: मालूमात देने
1: शुक्रिया
0: के लिए।
1: आपने, बहुत शुक्रिया आपने।
0: समीन, अभी हमारी इस बातचीत के जरिए आपको पता चला होगा कि सरकार की क्या मंसूबाबंदी है और वजीर आजम के 15 निकाती प्रोग्राम में क्या क्या हदफ हैं हमारे अकलियतों को ऊंचा उठाने के लिए, उन्हें सबके बराबर लाने के लिए। समीन, हर तरह के स्कीमों से फायदा उठाने के लिए, मंसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ने के लिए और अपनी अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए सबसे पहली जरूरत, बुनियादी जरूरत है इंसान का सेहतमंद होना, क्योंकि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग, मौजूद होता है और सेहतमंद दिमाग ही सेहतमंद जिस्म के साथ मिलकर तरक्की की राहों पर आगे

0: चलता है। मौजूदा मौसम, मौसमी गर्मा, नहायत सख्त मौसम जिसमें इंसान अपने आप को बचाते हुए अपने रोजमर्रा के कामों को अंजाम देता है और जरा सी लापरवाही इस मौसम में हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा मुजर हो सकती है। तो गर्मियों का ये मौसम जहां तकलीफ दे भी होता है, खतरनाक भी होता है, लू के थपेड़े, धूप की शिद्दत इंसान को बाहर निकलने से रोकती है और सेहत के लिए नहायत मुजर होती है, लेकिन जाहिर है कि जिंदगी की दौड़ भाग किसी भी मौसम में कम नहीं होती। इस मौसम में भी हमें पूरी एहतियात के साथ अपने फराइज को पूरा करना होता है। बस जरूरत इस बात की है कि एहतियात से काम लें और खुदा ना करे कि इस मौसम का असर हो तो उससे लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए कुछ ना कुछ हमें ऐसे टोटके, ऐसी दवाएं मालूम होना चाहिए कि जो हमारी मदाफियत कर सकें। तो इस सिलसिले में हमने बात की टेलीफोन के जरिए एक डॉक्टर, होम्योपैथ की डॉक्टर, डॉक्टर हिना साहिबा से। उनसे हमने इस सिलसिले में बात की कि बहसियत एक खातून और बहसियत एक डॉक्टर, वो क्या राय मशवरा देती हैं इस मौसम से बचने के लिए, इस मौसम से लड़ने के लिए। तो आपको सुनवाते हैं टेलीफोनिक बातचीत। जी डॉक्टर हिना साहिबा, आपका इस्तकबाल है हमारे आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिबा, आप डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह, और वैसे भी आपको जिंदगी के बहुत से तजुर्बात होंगे, आपके फैमिली में छोटे बच्चे, बड़े लोग सब रहे होंगे। तो आज जो मौसम हमारा तेजी से तब्दील हो रहा है, और हमें ये लगता है कि शायद हर साल ही गर्मी कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्या आप भी इस चीज को महसूस कर रही हैं कि पहले के मुकाबले हर साल गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपसे हम जानना चाहेंगे बहसियत खातून, बहसियत डॉक्टर हम बाद में बात करेंगे, बहसियत खातून आप हमें बताइए कि आपने शुरू से वो जमाना भी देखा होगा जब आज की तरह घरों में एसी, कूलर, इन्वर्टर इन सब चीजों की सहूलत नहीं होती थी और गर्मियां उस वक्त भी आती थी, लुएं चलती थी, तो उस वक्त किस तरह से लोग उसको फेस करते थे, किस तरह सामना करते थे, और जब में और आज में क्या फर्क है?
1: उस टाइम में तो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी की अब हैं।
0: जी
1: उसमें भी यही होता था कि गीले कपड़ों से अपने आप को ढक के रखते थे लोग, और बाकी यह है कि आम पन्ना यही पिलाया जाता था ज्यादातर।
0: जी
1: और नमक चीनी का पानी उस दौर में तो यही काफी होता था, आज तो सारी फैसिलिटीज है हमारे पास।
0: जी तो ये बताइए कि इस मौसम में हमें किन चीजों की एहतियात करनी चाहिए?
1: देखिए इस मौसम में सबसे पहली बात तो ये कि हमें बिना किसी जरूरत के धूप में नहीं निकलना चाहिए।
0: जी
1: जितना हो सके हमें धूप से बचना है, और अगर हमें जाना ही पड़ जाता है इमरजेंसी में किस तरीके से, तो अपने साथ पानी रखना है और ORS है, ये इस टाइप की चीजें हमें अपने साथ में रखना है।
0: जी।
1: और जहां तक हो सके हमें एक गीला कपड़ा भी अपने साथ में रखना है जो कि हम उससे अपने अपने आप को थोड़ा ढक सके। और बिना जरूरत तो धूप में निकलना ही नहीं है, ये तो इमरजेंसी में कहीं है तो आप कर सकते हैं।
0: जी जी देखिए हम बड़े लोग तो एहतियात कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को बचाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे खेलना भी चाहते हैं, बाहर निकलना भी चाहते हैं, और हमें वो बचपन की दोपहरें भी याद हैं कि जब बड़े लोग सो जाया करते थे दोपहर में और बच्चे चुपके चुपके निकलकर खेला करते थे। तो आज वो जमाना तो नहीं है, आज के बच्चे तो एसी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने मोबाइल से उन्हें ज्यादा शगफ रहता है। तो अगर वो फिर भी छोटे बच्चे हैं और बाहर निकलते हैं, धूप में निकल जाते हैं जो नासमझ बच्चे होते हैं, तो उनके लिए हम क्या एहतियाती तदाबीर करें कि जो गर्मी की शिद्दत उनके ऊपर ज्यादा असर ना

0: देखिए, बच्चों को ज्यादा तो पानी का इंटेक ज्यादा रखना है, बच्चों के अंदर भी, बड़ों के अंदर भी और बच्चों के अंदर भी।
1: जी
0: उनको पानी और उनको जैसे कि लिक्विड डाइट हमें देनी है ज्यादातर, जैसे खीरा है, तरबूज है, नारियल पानी है, ये हमें बच्चों को देते रहना है, जिससे
1: जी
0: कि काफी हद तक वो इस उससे बच जाएंगे।
1: जी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं या बाहर धूप में खेल कर आ रहे हैं, और वो आते ही उन्हें इतनी सख्त गर्मी महसूस होती है कि वो एकदम एसी में या पंखे की हवा में चले जाते हैं या ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं?
0: उससे नुकसान तो होते ही हैं कि एकदम ठंडा गर्म हो जाता है, इसलिए बच्चों को एहतियात ही रखनी चाहिए ज्यादातर इस चीज से।
1: अच्छा, गर्मी से बचने के लिए आजकल आम तौर पर लोग जो है वो एसी का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोगों के यहाँ तो 24 आवर एसी चलता ही है, तो
0: जी
1: ये बताइए कि वो एसी की जो ठंडक है वो हमारे जिस्म के लिए कितनी फायदेमंद है और या कितनी नुकसानदेह है इस गर्मी में?
0: देखिए, फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी। फायदेमंद ये है कि हम एसी में बैठ के अपने आप को बहुत सुकून महसूस करते हैं,
1: जी
0: लेकिन अब एकदम एसी से हम बाहर आएंगे टेम्परेचर बदल जाता है, वो जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है,
1: जी
0: क्योंकि वो फिर हमें कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता है।
1: लेकिन एसी की जो ठंडक होती है वो भी एक नमी लिए हुए होती है, तो जो लोग लगातार एसी में रहने के आदी होते हैं उनकी बॉडी पर वो ठंडक और वो नमी क्या असर छोड़ती है?
0: इससे ज्यादातर ये होता है कि पेन से दो चार होना पड़ता है उन लोगों को, ज्यादातर उनकी हड्डियों पर असर होता है इस चीज का,
1: जी जी
0: क्योंकि ज्वाइंट्स पेन की शिकायत हो जाती है उनको,
1: क्योंकि हड्डियों
0: इसलिए।
1: को कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह नहीं मिल पाता, और उसकी ठंडक जो नमी लिए हुए होती है वो हमारे मांसपेशियों को भी कहीं ना कहीं नुकसान देती है
0: बिल्कुल,
1: और
0: इससे
1: हड्डियों को
0: हमारी
1: भी।
0: मसल्स में भी दर्द होने लगता है, हमारी
1: जी
0: हड्डियां भी पेन करती हैं।
1: जी तो खुसूसन आप डॉक्टर हैं, जरा इस नजरिए से बताइए, जब हम एसी में रहते हैं तो हमारे जिस्म से पसीना नहीं निकलता, पसीना
0: देखिए,
1: निकलने के क्या फायदे हैं और किस हद तक जरूरी है पसीने का निकलना?
0: पसीना निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो हीट है वो
1: जी
0: हमारी पसीने के जरिए निकलती है।
1: जी
0: अब जब
1: जी
0: पसीना आता है तो फिर थोड़ी बॉडी भी थोड़ा सा हमारा रिलीफ महसूस करती है, और जब ये पसीना नहीं आएगा तो उसके फिर साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं।
1: जी बॉडी के अंदर जो एसिड्स होते हैं तरह तरह के वो भी
0: जी
1: पसीने के जरिए ही बाहर आते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और जब हम एसी में मुसलसल रहेंगे और हमारा जिस्म पसीना नहीं निकालेगा तो वो एसिड्स अंदर ही जमा होते रहेंगे और वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सिस्टम को मुतासिर करेंगे।
0: जी बहुत इफेक्ट पड़ता है इससे, और ये पसीना जरूरी है निकलना बॉडी से।
1: जी, और अच्छा, हमारे घरों में, सभी के घरों में बुजुर्ग भी होते हैं, बड़ी उम्र के लोग होते हैं, और जहां तक हमने देखा है कि ज्यादा बड़ी उम्र के लोग भी एसी में रहना ज्यादा नहीं पसंद करते हैं और वो अपनी उसी नेचुरल जिंदगी को गुजारना पसंद करते हैं, उनको किस तरह हम गर्मी के इफेक्ट से बचाएं, उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, क्योंकि बच्चों की तरह से बूढ़े भी नाजुक हो जाते हैं।
0: जी, उनके लिए यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा उनको भी लिक्विड डाइट पे ही रखना है।
1: जी
0: जी, लिक्विड डाइट तो मस्ट है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी।
1: जी इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां ज्यादातर देखने को मिलती हैं?
0: इस मौसम में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि थकान महसूस होती है, उल्टी जैसी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, किसी के सर में बहुत दर्द होता है, और किसी की
1: जी
0: बॉडी में एलर्जी हो जाती है, दाने आ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं
1: जी
0: बॉडी में, तो इसका ये इफेक्ट पड़ता है गर्मी का।
1: डॉक्टर साहब, डायरिया वगैरह भी इसी मौसम में ज्यादा होता है
0: जी
1: तो, और लू लग भी इसी मौसम में ही ज्यादा लगती है, तो
0: जी
1: डायरिया अगर किसी को हो जाता है तो आप उसके लिए क्या बताएंगी कि क्या उसको फौरी तौर पर लेना चाहिए?
0: और एक तौर पर यही है कि उनको, मतलब हमें ये देना है, नमक चीनी का पानी देना है उनको, क्योंकि ये हम अपने घर में बना सकते हैं, और
1: जी
0: सबसे सेफ चीज है, नींबू
1: हाँ,
0: की
1: जिस्म के अंदर
0: शिकंजी
1: ग्लूकोज
0: जी
1: को भी बराबर करती है ये।
0: बराबर करना है, क्योंकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में।
1: जी

0: उसको भिगो दिया आपने रात को पानी में, थोड़ा सा वो घुल जाता है। उसके बाद उसको सुबह में आप पानी में भी ले सकते हैं, शिकंजी में भी ले सकते हैं, छाछ में भी ले सकते हैं, मिलाकर इसका इसको लेना है।
1: मतलब जिस पानी में आपने भिगोया है उस पानी को इस्तेमाल करना है।
0: जी, उस पानी को और
1: अच्छा, गोंद को भी।
0: गोंद को भी इस्तेमाल करना है, वो बिल्कुल एकदम जेली टाइप की बन जाती है।
1: अच्छा।
0: फिर उसको आपने आपने किसी भी लिक्विड जो भी ले रहे हैं आप, शिकंजी है, कोई शरबत है या कोई छाछ है, उसे मिलाकर ले सकते हैं आराम से।
1: अच्छा
0: और एक चिया सीड्स आते हैं, वो भी
1: जी।
0: बहुत अच्छे होते हैं, उसका भी है। उसको आधा घंटा पहले भिगो देना है पानी में, फिर उसको आप चाहें तो सादे पानी में ले सकते हैं, चाहें तो आप किसी अपने लिक्विड में डालकर ले सकते हैं, जो भी आप ले रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, चिया सीड्स वही होते हैं जिसे अपनी हिकमत की जुबान में तुख्मे रेहा कहते हैं
0: जी, वही होते हैं,
1: जी
0: आप चिया सीड्स के नाम से भी जाने जाते हैं, तुख्मे रेहा भी।
1: जी
0: और
1: वो तो काफी ठंडे होते हैं और गर्मी में बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: बहुत फायदेमंद है, बहुत सही रहते हैं, गर्मी में इसका सेवन जरूरी है।
1: इसके अलावा आम का पन्ना तो लू से बचाने के लिए हमें बहुत
0: हाँ,
1: फायदेमंद है।
0: वो तो फायदेमंद है, वो तो पहले से ही चला आ रहा है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आप होम्योपैथ की डॉक्टर हैं, होम्योपैथ की कोई ऐसी दवा बताएं जो हम घर में रखें छोटे बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए, कि अगर उन्हें गर्मी का अटैक होता है तो वो उसे इस्तेमाल कर लें।
0: जी, जैसे कि यही है, थकान, उल्टी, चक्कर, सर दर्द, मोशन वगैरह जो भी आ रहे हैं, तो एक आती है काली बाइक्रोम, होम्योपैथी की मेडिसिन है
1: काली बाइक्रोम।
0: जी,
1: अच्छा
0: उसको आप अपने घर में रखें। उसके ये है कि बच्चों को दो दो ड्रॉप देने हैं और
1: अच्छा
0: बड़े उसके 6 ड्रॉप ले सकते हैं आराम से,
1: दिन में कितनी
0: पानी
1: बार ताजे
0: 3 बार ले सकते हैं आराम से दिन में, पानी में
1: पानी में?
0: डालकर। जी,
1: अच्छा
0: थोड़े से पानी में, 1 टेबल स्पून पानी में डालकर ले सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा तो ये हमारे गर्मी की इन तमाम तकलीफों को
0: जी
1: बचाएगा इनसे।
0: जी
1: और आप क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों को इस मौसम में कि क्या करें और क्या ना करें, खाना वगैरह किस तरह का लें?
0: देखिए, इस मौसम में जहां तक हो सके तो हल्की डाइट ही लेनी चाहिए, ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, दाल सब्जियां इन्हीं चीजों का ज्यादा इस्तेमाल रखें।
1: जी, इसके अलावा खाने के साथ हरी मिर्च, प्याज, लीमू, पुदीना, ये चीजें भी चूंकि डाइजेस्टिव होती हैं और गर्मी में बहुत फायदेमंद होती हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में?
0: हाँ, पुदीना बहुत अच्छी चीज है, पुदीना भी ले, हरी मिर्च भी ले सकते हैं। प्याज किसी को सूट करते हैं, किसी को नहीं करते हैं,
1: अच्छा
0: आप पुदीना और ये तो ले सकते हैं। पुदीना तो बहुत
1: जी।
0: अच्छी चीज है, ये आप जो भी अपना बना रहे शिकंजी वगैरह उसमें भी डाल सकते हैं,
1: जी
0: ये पेट में ठंडक देता है एक तरीके से।
1: जी तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना साहिबा, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे समीन को बताई और उन्हें गर्मी से बचने के लिए दवाएं भी बताई, तदाबीर भी बताई और एहतियात के लिए भी उनको कहा। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। समीन, आपने सुना जो मशवरे हमारी डॉक्टर साहिबा ने दिए, हमें उस पर अमल करना चाहिए और सबसे बढ़कर कुदरत ने हर मौसम में उस मौसम के मुनासिबत से जो फल जो सब्जियां पैदा की हैं उनसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूजा, आम, लीची, ये वो फल हैं जो कि हमारे जिस्म को गर्मी की शिद्दत से महफूज रखते हैं और जिस चीज की यानी पानी की जो जरूरत होती है उसको पूरा करते हैं। तो हमें इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ठंडी सब्जियां, लौकी, तुरई, टिंडा, अल्लाह की नेमतें, इनको अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए ताकि हम मौसम की शिद्दत से महफूज रहें और हमारा जिस्म पूरी तरह कुव्वत मुदाफ़ियत के साथ गर्मी से लड़ने को तैयार रहे। इंसान जो कुछ भी करे सबसे पहले उसके लिए सेहत ज़रूरी है कि बकौल गालिब, तंगदस्ती अगरचे हो गालिब, तंगदस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्त इंसान हर हालात, हर परेशानी और हर मुसीबत का सामना आसानी के साथ कर लेता है। तो खुदा करे।

0: की ये गर्मियाँ, गर्मियों की ये छुट्टियाँ आप सब के लिए बहुत अच्छे अच्छे पल लेकर आए। आप सब इन छुट्टियों को, इस गर्मी के मौसम को एंजॉय करें। इन्हीं दुआओं के साथ अपने प्रोग्राम की मेज़बान रपा पंचम को दीजिए इजाज़त। अलविदा।
1: आप समाज फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम मीडियम वेव और एफएम पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 10 बज चुके हैं। श्रोताओं, सुनिए अनुरोध पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

बेमिसाल फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत सुनना चाहते थे पंडित नगलाबाई पास कोहिनूर तिराहा के पास से अख्तर हुसैन बारून निशा असलम हुसैन महमूद हसन और इन्हीं के साथ बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक वंश बत्ता और समस्त बत्ता परिवार कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा राय अमित कुमार राय और हैप्पी राय दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय रोशनी राय और प्रांजल राय और इन्हीं के साथ शेरपुर कला गाजीपुर के हमारे सुनने वाले हैं अवधेश राय प्रीति राय और नवनीत राय मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजिदा रानी और हिना कौसर मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकर नर्मदा सुनील साहिल अंश और सुजाता पोहरकर छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश और शीतल राजेश और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर विर्क जयतेग विर्क और मीका विर्क। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा शाइना और निवान शर्मा ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और मेराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम सिद्दीकी रियाज रिफाकत शमरीन परवीन मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर बेरड़ी से राजेश सोनी कंचन सोनी गायत्री ढोमड़े वैष्णवी ढोमड़े चंचल अर्जुन और धीरज सवासेरे भाटापारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा जरुण वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे मीनाक्षी चरपे रजनी कानीरे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे गांधी समाधि रोड रामपुर के हमारे श्रोता हैं हाजी गफ्फार खां रजिया खान सिमरन खान गुलफ शाह जीनत अमान हबीब अहमद इदरीसी और शहनाज बाबू अंसारी और गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी शोभा भूपेंद्र रघुवंशी बबीता सुरेंद्र पूजा विकी रघुवंशी स्वाति प्रयाग चौधरी मालती चौधरी देविका चौधरी गणेश कार्तिक संजना परी और ललिता नारायण खर्चे। आप सभी के लिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दूसरा आदमी से आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

दुनिया मेरी जेब में, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीत के लिए अनुरोध किया था हमारे इन सभी सुनने वालों ने। अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता और अंशु गौतम। जत्थू का किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज। मौला अफगानन शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत। पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम के हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धंजे और इन्हीं के साथ खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। और अब आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हमारे इन सभी श्रोताओं के लिए। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, निशान हुसैन, मरियम और बुशरा। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभय, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभय। सरोचौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा, शुएब खान, साइमा खान, मुश्तबा खान, आफिया खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। सादुलशहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से फरमाइश की है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा के साथ कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। आप सभी के लिए लता मंगेशकर का गाया गीत फिल्म बाबू से।

अभी आपने सुना अनुरोध पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं 90 के दशक के कुछ सदाबहार फिल्मी गीत।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम सजा है 90s के हिट गानों से। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं 1990 की एक बेहद मशहूर और बेहद हिट फिल्म आशिकी के गीत से। इस फिल्म के सभी गीत बहुत हिट हुए, लोगों ने उन्हें बहुत सराहा और जो भी गीत प्ले किया जाता है वो हर बार पसंद ही आता है। तो आज सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में फिल्म आशिकी से एक गीत।

सुनहरा दौर कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं 90 के दशक के कुछ फिल्मी हिट्स। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है 1993 की एक मशहूर फिल्म बाजीगर से। आवाजें हैं आशा भोसले और विनोद राठौर की।

साजन फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। अब सुनते हैं उदित नारायण को फिल्म राजा हिंदुस्तानी में।

अलका याग्निक की गाय फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई के इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुने 90 के दशक के कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे।

0: सुनहरा दौर। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों को। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 11 बज रहे हैं और ये समय है हमारे अगले कार्यक्रम धरोहर का। इन दिनों अब तक पहुंच रहा है धारावाहिक कहानी खंडहरों की। आज सुनिए इसकी कड़ी संख्या 3 का प्रसारण।
1: आकाशवाणी के लिए दमनिया इंटरनेशनल प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक कहानी खंडहरों की।

रेडियो धारावाहिक कहानी खंडहरों की दूसरी कड़ी में आपने सुना था कि खुद को मुगल शहजादा कहने वाले साबिर शाह ने कुमाऊं के राजा को दिल्ली का शासक बनने का ख्वाब दिखाया। लालची राजा ने साबिर शाह की बात मानकर दिल्ली पर कब्जा करने की तैयारियां शुरू कर दी। राजा की रानी और मंत्री ने राजा को दिल्ली पर कब्जा न करने की सलाह दी, लेकिन राजा नहीं माना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजा ने सरदार दाऊद खां की रोहिला सेना को किराए पर लिया और कुमाऊनी सेना के साथ पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाके में आ गया। मुरादाबाद के मुगल फौजदार की सेना से उसकी जंग हुई और राजा अपनी सेना के साथ शिकस्त खाकर भाग गया। जब सरदार दाऊद खां ने राजा से अपनी फौजी खिदमात की रकम मांगी तो राजा ने उसे रकम देने के बहाने अल्मोड़ा बुलाकर उसका कत्ल करने की योजना बनाई। राजा के एक शुभचिंतक मंत्री शिवदत्त ने उसे ऐसा करने से मना किया, परंतु राजा के दूसरे मंत्री ने राजा को मशवरा दिया कि सरदार दाऊद खां को पैसा देने के बहाने अल्मोड़ा बुलाकर उसका कत्ल कर दिया जाए। आज प्रस्तुत है तीसरी कड़ी।

0: ओह, आप जनाब पढ़ाई में व्यस्त हो, क्या सचमुच आप इतिहास पर काम करना चाहती हो?
1: हाँ, एटकिंसन का गजेटर पढ़कर मालूम हुआ बाबा सच कहते हैं। आप भी रोहिला मॉन्यूमेंट्स पर कुछ किताबें ले आइए।
0: किताबें?
1: हाँ।
0: कोई किताब नहीं है, आज सारी लाइब्रेरी छान मारी हमने, बस बहुत पुरानी फ्योहर की लिखी हुई एक किताब मिली जो 1890 में छपी थी। आज क्या हाल है रोहिलों की इमारतों का, कुछ पता नहीं।
1: इसका मतलब है हमारे पूर्वज केवल कथाएं सुनाते रहे और गाथाएं गाते रहे, इतिहास की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
0: ये सच है आशा, हिंदुस्तान का इतिहास तो तुर्कों और मुगलों के शासनकाल में लिखना शुरू हुआ, और वो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री। इस देश की कला और सभ्यता पर बिल्कुल नहीं लिखा गया। लेकिन आशा, ये काम हम दोनों मिलकर करेंगे।
1: हाँ, बड़ा मजा आएगा जब खंडरों की कहानी सुनाएंगे हम।
0: गिरती दीवारों और खंडहरों की कहानी आज बाबा से पूछेंगे, उन्हें जरूर मालूम होगा।
1: हाँ।

0: बाबा भी खूब है।
1: सलाम बाबा।
0: सलाम बाबा।
2: आओ आओ बैठो। देखो मैंने तुम्हारे नाम के दिए भी रोशन कर दिए है। आज अमावस की रात है ना, कैसा जगमग कर रही है मेरे आका की कब्र। चारों तरफ अंधेरा है लेकिन सिर्फ मेरे आका की कब्र रोशन है। मेरे आका की रूह आज बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी। 3 दिए जल रहे हैं।
1: बाबा एक बात पूछनी थी आपसे।
2: हाँ हाँ पूछो बेटा। लेकिन आजकल की बातें तो मैं नहीं जानता। हाँ बस पुरानी बातें याद हैं मुझे।
1: हमारे यहाँ एक खानदानी नौकर है शन्ने मियाँ।
0: शन्ने मियाँ बता रहे थे कि उनके पूर्वज बहुत पहले मुगलों के शासनकाल में अल्मोड़ा आकर आबाद हो गए थे और नकारा बजाते थे।
1: हाँ बाबा
2: समझ गया तुम्हारी बात। मैंने मनसबदारों के बारे में बताया था ना तुम्हें। ये मुगल बादशाहों के जमाने की बात है। कुमाऊं का राजा मुगल हुकूमत का ताबेदार था। उसे मनसब के साथ नौबत, नक्कारा, चौकदार, बल्लम बरदार भी दिए गए थे। नौबत अल्मोड़े के किले पर बजती जिसके सिर्फ निशान बाकी रह गए हैं, और नक्कारा फौज के साथ रहता था। चौकदार और बल्लम बरदार राजा की सवारी के साथ चलते थे। ऐसे ही शान थी राजा की।
1: इसका मतलब है कि मुगल शासन काल में बादशाहों और मनसबदारों के सम्मान की अलग अलग निशानियां थी।

0: दादे आज भी कुमाऊं में आबाद हैं। नौकर थे इसलिए आ गए, वरना कौन आता था पहाड़ी पर।
1: बाबा, मुगल सभ्यता भी लाजवाब थी। सब लोग अपनी अपनी सामाजिक हैसियत से रहते थे।
0: हाँ, बड़ी गंगा जमनी तहजीब थी मुगलों की। हाँ, एक बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई। मुगल बादशाह चाहे जंग के लिए जाए या शिकार पर तफरी के लिए, उसके लिए लाल रंग का खेमा लगाया जाता था, और बादशाह के अलावा किसी और को लाल खेमा इस्तेमाल कर

0: अपनी राजधानी अल्मोड़े का नाम आलमनगर रख दिया था। जानते हो क्यों?
1: नहीं, आप बताइए ना बाबा।
2: हाँ बाबा।
0: हाँ, शाहजहां के बेटे का नाम औरंगजेब आलमगीर था ना, लेकिन कुमाऊं के लोगों ने इस नाम को चलने नहीं दिया और अल्मोड़ा अल्मोड़ा ही रहा।
2: बाबा, आजकल तो बड़े आराम से नाम बदल दिए जाते हैं शहरों के।
0: हाँ। पर बेटा, हमें ये बात अच्छी नहीं लगती। तारीख को बदलना नहीं चाहिए, तारीख पढ़ने वाले को भी दुश्वारी होती है। हमारे आका सरदार दाऊद खां के जानशीनों ने किसी शहर के नाम को बदला नहीं। आंवला आंवला रहा और रामपुर रामपुर ही रहा। हाँ, अगर नए शहर बसाए तो उनका नाम नजीबाबाद या रहमतगंज जरूर रख दिया, और ऐसा ही मुगल बादशाहों ने भी किया था।
1: बाबा, आपकी बातों से लगता है कुमाऊं के राजाओं और मुगल बादशाहों के मधुर संबंध थे।
0: हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। कुमाऊं के राजाओं और मुगल बादशाहों के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, और इसकी सियासी वजह भी थी। सरकार मुरादाबाद और सरकार बरेली मुगल सूबे थे, और ये सारा कठेर का इलाका था। पहाड़ भी यहाँ से दूर नहीं थे। बगावत का खतरा होने पर आसानी से फौज कशी की जा सकती थी।
2: इसी कठेर को तो आजकल रोहेलखंड कहा जाता है।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और तुम जानते हो इसका नाम रोहेलखंड क्यों पड़ा? अच्छा चलो, मैं ये बात मैं बताऊंगा। अभी तो मैं बरेली और मुरादाबाद की बात कर रहा था ना। इन दोनों सूबों और कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ों के बीच तराई भावर का इलाका था, जिनमें बड़े घने जंगल थे। हाँ, कठेर के मैदानी इलाकों में अहीर, कठेरिया, राजपूत, गुर्जर और भील जैसी जनजातियां रहा करती थीं, जो मुगल इलाकों में लूटमार किया करती थीं, और जब मुगल सेना आती थी तो जंगलों में घुस जाते थे।
1: बाबा, मैंने तो ये भी पढ़ा है कि कठेरिया राजपूतों का सारे कठेर पर राज था।
0: हाँ, पर ये बात बहुत पुरानी है। यूं समझ लो कि तुर्क सुल्तानों ने कठेर पर हमला करके कठेरियों को शिकस्त दी थी। फिर मुगल बादशाहों के जमाने में राजा राम सु कठेरिया ने बगावत की तो मुगल सूबेदार रुस्तम खान तकनी ने उसे मार भगाया। अब बेटी, मैं बताना ये चाह रहा था कि कठेर में रहने वाली जनजातियां मुगल सेना से हार कर जंगलों में छुप जाती थीं और पहाड़ी इलाकों में लूटमार करती रहती थीं, और मौका मिलते ही कठेर के मैदानी इलाकों में भी लूटमार करने लगती थीं।
2: इसका मतलब ये हुआ बाबा कि ये जनजातियां मुगल साम्राज्य और कुमाऊं व गढ़वाल के राज्यों के लिए भी खतरा थीं।
0: हाँ, यही बात है। इसीलिए मुगल बादशाह ने राजा रुद्रचंद को तराई भावर की सनद दे दी। इसी राजा ने रुद्रपुर आबाद किया था।
2: बाबा, आज इसका नाम उधम सिंह नगर है।
0: हाँ बेटा, कोई नई बस्ती तो आबाद नहीं कर सकते ना, सिर्फ नाम बदल देते हैं। अच्छा बेटा, आज जरा तबीयत ठीक नहीं है मेरी, जल्दी जाना होगा।
2: हमारे साथ चलिए गाड़ी में।
0: नहीं नहीं बेटा, आज नहीं, कई घर होकर जाना है मुझे, और वैसे भी रास्ता भी तो पैदल का है। आप लोग भी चलें, हम भी जाते हैं।

0: आशा।
1: हाँ?
0: हम तो सोच रहे थे कि बाबा के साथ कठेर के सफर पर जल्द ही निकल जाएंगे, लेकिन अभी अल्मोड़े का इतिहास ही पीछा नहीं छोड़ रहा है।
1: हाँ, बाबा सच कहते हैं, हमारे कदमों के नीचे इतिहास है। कई बार हमने सोचा, कुमाऊं में मुसलमान कब आए, कैसे आए, ये लोग यहाँ किस तरह आबाद हुए। इतिहास की ये समस्या आज हल हुई कि ये लोग नक्कारची, बल्लम बरदार।

0: अलम बरदार, नौबत और नक्कारा बजाने वाले हैं। देखो अजय, मुगल सभ्यता ने पहाड़ों पर भी अपने निशान छोड़े हैं।
1: अभी तो एक और समस्या हल करनी है।
0: वो क्या है?
1: बाबा से पूछना है कि दाऊद खां के कत्ल के बाद उसकी औलादों का क्या रिएक्शन हुआ।
2: बेगम साहिबा वो आई हैं।
1: कौन? क्या चुमनिया आई है?
2: कुंवर साहिब, आप भी हमारा दिल जलाने की बात करते हैं। हाँ
0: शन्नी मियाँ, इसमें दिल जलाने की क्या बात है, चुमनिया तो आती है यहाँ।
2: ये क्या कह रही हैं बेगम साहिबा?
1: देखिए शन्ने मियाँ, अगर चुमनिया को पाने के लिए हमारी मदद चाहिए तो आपको साफ साफ बताना होगा, समझे?
2: जी समझ गया। इस वक्त तो मिसेज बीना तिवारी जी आई हैं और हमने इज्जत से बिठा दिया है। हाँ
1: अच्छा,
0: तो फिर आप जल्दी से गरम गरम कॉफी बनाकर लाइए, हमने आपके खातिर ही बुलाया है उन्हें।
2: अल्लाह जाने आज आपको क्या हो गया है बेगम साहिबा, हमारा कौन सा काम है उनसे। हाँ
1: देखिए शन्ने मियाँ, हमें आपकी शादी चुमनिया से करानी है।
2: नहीं हो सकती कुंवर साहिब, कभी नहीं हो सकती।
0: आप तो बड़ी जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं, आखिर क्यों नहीं हो सकती शन्नी मियाँ?
2: जी चुमनिया के सामने हमें ताना दिया था, कह रहा था न घर न दर, शादी करेगा चुमनिया से, बस बावर्ची बना रहे कुंवर साहिब का।
1: बस इतनी सी बात?
2: हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, शन्य कैसे कर सकता है मकान का इंतजाम।
0: वो सामने जो जगह पड़ी है पेड़ के पास,
2: जी
0: उस जगह हम आपके लिए घर बनवा देंगे।
2: आप हमारे लिए घर?
0: इसका नाम होगा शन्ने मियाँ चुमनिया कॉटेज।
2: अल्लाह कसम, चुमनिया कॉटेज, यानी यानी चुमनिया कॉटेज।
0: इसी सिलसिले में हमने मिसेस बीना तिवारी को बुलाया है, जिस होटल में चुमनिया का बाप नौकर है वो उसी होटल की मालिक हैं, समझे शन्ने मियाँ?
2: फिर तो उसका बाप
1: राजी हो जाएगा, खुशामद करेगा आपकी
0: और आपसे माफी भी मांगेगा।
2: मांगेगा कैसे नहीं, नौकरी से जो निकाला जाएगा। बहुत लाल पीले दीदे दिखाता था हमें, अब पूछेंगे उससे, कदम नहीं रख सकता हमारे कॉटेज में, बेघरा कहकर ताना मारता था। हाँ
1: ज्यादा ना पूछना सन्ने मियाँ, वरना चुमनिया नाराज हो जाएगी।
2: जी हाँ, बड़ी नाजुक मिजाज है वो बेगम साहिबा, वो मिसेज बीना तिवारी।
0: आइए अजय, आज बीना जी से शन्ने मियाँ की बात तय करा दें।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
2: बेगम साहिबा, मिसेज बीना जी से नहीं, चुमनिया जी से।
0: अरे आप भी खूब है शन्ने मियाँ।
1: चले।
0: हाँ चले।

0: सलाम बाबा।
1: बाबा सलाम, जीते रहो जीते रहो। हमने पढ़ा है बाबा, जब कुमाऊं के राजा देवी चंद ने सरदार दाऊद खां को धोखे से बुलाकर कत्ल कर दिया, शायद ये घटना 1721 की है। तब दाऊद खां का बेटा नवाब अली मोहम्मद खां 11-12 साल का होगा। उसने अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए 1743 में अल्मोड़े पर हमला कर दिया।
2: हाँ हाँ, मैंने भी ऐसे ही सुना है। वो कुमाऊं के राजा का क्या नाम था, मैं भूल गया।
0: हाँ, उस समय कुमाऊं का राजा कल्याणचंद था।
2: हाँ, यही नाम था राजा का, कल्याणचंद।
1: क्या उस समय अल्मोड़े का रास्ता यही था जो आज है?
2: बहुत काम की बात पूछी आपने। अरे अब पुरानी बातों और पुराने रास्ते भला कौन पूछता है। यूं समझ लो कि रोहिलों की फौज आंवले से रवाना हुई थी। राजा के सेनापति शिवदेव ने रुद्रपुर में मुकाबला किया और रोहिलों से शिकस्त खाकर बरखारी के किले में आ गया।
0: बाबा, बरखारी कहाँ है?
2: भीमताल से बरखारी को जाता है रास्ता।
1: किला तो अब भी होगा।
2: अरे नहीं, अब तो जमाने के हाथों किले के निशान भी मिट गए।

0: फिर रोहिलों ने बरखारी और बीजापुर पर कब्जा कर लिया। फिर कुमाऊनी फौज ने विजयपुर में मुकाबला किया, लेकिन हार गए। रोहिला में फौज रामगढ़ होती हुई प्योरा आई और सुआल फिर नदी पार करके अल्मोड़े पर अधिकार कर लिया।
1: वाह बाबा, आपने तो बड़े काम की बात बताई। ये रास्ता तो कोई भी नहीं जानता होगा।
0: रोहिलों के डर से राजा गढ़वाल के राजा मोरभट्ट के पास चला गया। कुमाऊनी और गढ़वाली सेना ने मिलकर कई लड़ाइयां लड़ी। गालौली, लाखनपुर, कटारमल, डोंगरी, भीमताल और सुहार वगैरह, इन सब जगहों पर लड़ाइयां हुई थी।
2: इन जंगों का परिणाम क्या हुआ बाबा?
0: अरे, सब लड़ाइयों में कुमाऊनी और गढ़वाली सेना को शिकस्त हुई। जंग में मारे गए रोहिलों की कब्रों के कब्रिस्तान इन पहाड़ों पर बिखरे पड़े थे। पता नहीं अब बाकी भी हैं या नहीं, या फिर जंगलों में खो गए हैं।
1: बाबा, रोहिलों की औलादों को भी नहीं मालूम उनके बुजुर्गों के कब्रिस्तान कहाँ हैं।
0: हाँ, मालूम तो होगा, लेकिन बेटा हालात बड़ी तेजी से बदले। मराठों, अवध के सूबेदारों, सिखों और मुगल सेना के साथ मुसलसल जंगों ने रोहिलों को चैन से बैठने ही कब दिया। इनकी औलादें आज भी रोहिलखंड में आबाद हैं। हाँ, वैसे बेटा तुमने रामपुर के नवाबों का नाम तो सुना होगा।
1: बाबा, इस नवाबी खानदान से आज भी हमारा ताल्लुक है। नौकर थे हमारे बुजुर्ग नवाबों के, लेकिन हम कभी गए नहीं उनके पास।
0: हाँ, बड़े बड़े महलों में रहते हैं सब। मेरे आका दाऊद खां की कब्र पर कोई नहीं आया आज तक। जानते भी नहीं होंगे वो लोग कहाँ है दाऊद खां की कब्र। सबने अपने अपने लिए शानदार मकबरे बनवा लिए, और जिसने रोहिला हुकूमत की बुनियाद डाली वो बेनामोनिशान यहां सो रहा है। मेरा आका सरदार दाऊद खां रोहिला।
2: हमने आपको उदास कर दिया बाबा।
0: नहीं, तुमने कुछ नहीं किया बेटी। याद आती है तो आंसू बह निकलते हैं।
1: आपने बताया बाबा, रोहिलों के कब्रिस्तान पहाड़ों पर बिखरे पड़े हैं।
0: हाँ बेटा, इनके बारे में कोई जानता भी नहीं। पहाड़ों पर जगह जगह लड़ाइयां हुई थी। जो रोहिला मारे गए थे उन्हें यहीं पर दफन कर दिया गया, और अल्मोड़े पर कब्जा करने के बाद भी रोहिला फौजें 8-10 महीने यहीं रही थीं। जब राजा ने रोहिलों की इताहत कबूल कर ली और सालाना रुपया देना कबूल कर लिया, तो नवाब अली मोहम्मद खां की फौज वापस चली गई। गढ़वाल के राजा मोरभट्ट को भी काफी रकम नवाब अली मोहम्मद खां को देनी पड़ी थी। इस तरह कुमाऊं का राजा रोहिलों का बास गुजार बन गया।
2: बाबा, इसका मतलब है कि राजा कुमाऊं मुगल बादशाह की जगह नवाब अली मोहम्मद खां का बास गुजार बन गया था।
1: हाँ बाबा।
0: हाँ बेटी, ऐसे ही हुआ था। इसी वजह से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और अवध का सूबेदार सफदरजंग नवाब अली मोहम्मद खां से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने कुमाऊं, तराई भावर के इलाकों, रुद्रपुर, काशीपुर, ठाकुर द्वारा, रामनगर, नानक मता और अवध राज्य के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था।
1: बाबा, रोहिलों ने पहाड़ों पर कोई इमारत भी तो बनाई होगी।
0: अरे, तो उन्हें रहना कब था यहाँ, इसलिए कोई इमारत भी नहीं बनाई। हाँ, कठेर के इलाके में बहुत शानदार इमारतें बनाई हैं रोहिलों ने, लेकिन वक्त के हाथों वो भी बर्बाद हो चुकी हैं। आंवला, पीलीभीत।

0: बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, नजीबाबाद, ना जाने कहां कहां बिखरी पड़ी हैं उनकी इमारतें। लेकिन मेरे आका के जानशीनों की इमारतों को अवध के जिम्मेदार नवाब शुजाउद्दौला मराठों, सिखों और अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया।
1: ऐसा क्यों किया बाबा?
0: अरे, ये सब दुश्मन थे रोहेलों के, सबसे लड़ाइयां होती रहीं। ना जाने अब क्या हाल होगा इन इमारतों का, खंडहर बन चुकी होंगी सब।
2: बाबा, मैं और आशा रोहेलों का इतिहास लिखना चाहते हैं।
1: हाँ बाबा।
0: अरे, तो फिर किताबों को पढ़कर ना लिखना, उन खंडहरों में एक एक शिकस्ता दीवार को गौर से देखना और कान लगाकर सुनना उनकी धीमी आवाज। हाँ, क्योंकि खंडहर भी बोलते हैं बेटा, खंडहर भी बोलते हैं, ऐसा मेरा यकीन है। हाँ
1: जी, ऐसा ही करेंगे बाबा।
2: हाँ बाबा।
0: हाँ, तुम्हें कठेर में महाभारत काल का इतिहास भी मिलेगा और पौध विहार और जैन मंदिर भी, रामायण की कथाएं और शिव मंदिर भी मिलेंगे, तुर्कों और मुगलों की निशानियां भी मिलेंगी, सूफियों के मजार और बाबा नानक साहब की तारीख भी।
2: बाबा,
0: हाँ,
2: इनके बारे में किताबों में बहुत कम मिलता है।
0: हाँ, किताबों को मैं नहीं जानता, क्या कह सकता हूँ, किसको फुर्सत है जो इन खंडहरों की कहानी लिखे।
1: लेकिन हम इन खंडहरों तक आपके बगैर नहीं जाएंगे बाबा।
2: हाँ बाबा।
0: मेरे बगैर? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ले चलूंगा तुम लोगों को वहां तक, लेकिन अभी फिलहाल तो मेरा वक्त हो चुका है, मुझे तो जाना ही होगा ना। अच्छा, अब चलता हूं मैं।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कहानी खंडहरों की तीसरी कड़ी। इस रेडियो धारावाहिक के निर्देशक हैं राजेश तिवारी, सह निर्देशक संजय गिरी, लेखक नफीस सिद्दीकी। इस धारावाहिक के निर्माता हैं दमनिया इंटरनेशनल। तो चौथी कड़ी में आपसे फिर होगी एक और भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत धारावाहिक कहानी खंडरों की तीसरी कड़ी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है मन भावन कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम केंद्रित है आप श्रोताओं द्वारा भेजी हुई शब्दावलियों पर।

श्रोताओं, आपकी शब्दावलियों के साथ और कुछ प्यारे से गीत लेकर हाजिर हो गए हैं हम मन भावन कार्यक्रम लेकर। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये मन भावन कार्यक्रम आप सुनेंगे सुरेंद्र कौर के साथ। आप सभी सुनने वालों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। श्रोताओं, अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी बात है जिसे आप हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप अपनी बात हमें मेल कर सकते हैं और उससे मेल खाता कोई गीत भी आप बता सकते हैं और ये शब्दावली गीत के साथ हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है patramila@gmail.com। कार्यक्रम में पहली शब्दावली हम शामिल कर रहे हैं कुंज निवास राजा राधा कुंज इज्जत नगर बरेली के हमारे श्रोता हैं बीके जौहरी, विनोद, अर्पित जौहरी, शीला ठाकुर और शाइना बी। आप बड़ी ही खूबसूरत सी बात कर रहे हैं कि चांद को चांदनी का एहसास हो जाता, चांद को चांदनी का एहसास हो जाता, खिल उठते फूल आपका दीदारे खास हो जाता। काश आप पर भी सब्जेक्ट घर कोई स्कूल में होता, दिल लगाकर पढ़ता बच्चा फर्स्ट डिवीज़न में पास होता। उनका प्यार उनका इंतज़ार कोई बड़ी शिद्दत से पलके बिछाई करता है, कभी हवाओं से बातें करता है तो कभी चांद से शिकायत करता है। जब कोई किसी को दिल से याद करता है तो उसके आने के इंतज़ार में मन की उदासियों के बादल घेर लेते हैं। कभी एक परछाई सी बनकर दिल पर छा जाती है तो कभी पलकों पर ना जाने कितने ही ख्वाब सजा जाती है। किसी के आने की आहट कानों में सरगोशियों सी करने लगती है। ऐसे में कभी जज्बात आंखों में छलकर गालों पर सूख जाते हैं, फिर भी जब दिल थाम के खड़े रहते हैं उनके इंतज़ार में। खुदा से रोज़ तेरी मोहब्बत का इकरार किया, खुदा से रोज़ तेरी मोहब्बत का इकरार किया, तेरी तस्वीर बनाकर उससे भी प्यार किया। करता हूँ और किसी दिन आओगे मेरी चौखट पर, इसी उम्मीद में हर शाम तेरा इंतज़ार किया।

कार्यक्रम की अगली शब्दावली। बीसलपुर मेहंदी वाले घर से पूनम सक्सेना और विनोद गोबल वाले जी की हमें प्राप्त हो रही है। आप लिखते हैं कि टूटती जाती हैं सांसें, डूबते जाते हैं दिल, बढ़ती जाती हैं हयाते इश्क की गहराइयाँ। इश्क में अगर दिल सिर्फ जज्बे से नहीं धड़कता बल्कि एक अहम होता है जो सिर्फ अपने महबूब के नाम से पर उसके एहसास पर धड़कना शुरू हो जाता है। एक ऐसी सदा जो अल्फाज की मोहताज नहीं होती, एक ऐसी इबारत जो सिर्फ रूह समझ सकती है। इश्क की मंजिल सिर्फ मुलाकात नहीं होती बल्कि एक ऐसी राह है जिसमें जुदाई भी रास्ते में कहीं ना कहीं खड़ी मिलती है और जुदाई का भी अपना एक तलख है, तजुर्बा है। जब किसी का इंतज़ार इबारत बन जाए तो हर आती जाती हवा उसका पैगाम बन के गुजरने लगती है। ये इश्क भी अजब दरिया है जिसमें उम्मीद तो बाकी रहती है लेकिन किनारा नहीं मिलता।

ईदगाह गेट मुरादाबाद के हमारे श्रोताओं ने एक शब्दावली लिखकर भेजी है। शफी अहमद अंसारी साहब और रईस तूला अंसारी साहब, आप कहते हैं कि वो कस्मे वादे करके निभा ना सके, हम सबूत अपनी चाहत का दे ना सके, दिखा ना सके। दिल में हजार दर्द थे मगर लब खामोश रहे, हाले दिल अपना उनको सुना ना सके, हम कदम बढ़ाकर भी अपना उन्हें मना ना सके। रात भर जान से करते रहे तस्करा उनका, एक नाम था जो हम कभी भुला ना सके।

बहुत खूबसूरत सी आप सभी श्रोताओं की शब्दावलियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं और आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को सुरेंद्र कौर के साथ। कार्यक्रम की अगली शब्दावली गांधी समाधि रोड रामपुर के श्रोताओं की हमें प्राप्त हुई है। हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, गुलफिर शाह और इनके परिवार के सभी सदस्य लिख रहे हैं आदाब प्यार भरा और कहते हैं कि जी हाँ दोस्तों, मत मिलिए उनसे जो सिर्फ मतलब के वक्त मिलते हैं, मत चलिए उनके साथ जो रास्ते में दगा देते हैं, मत जाइए ऐसी जगह जहाँ बुराइयाँ जन्म लेती हैं, मत बैठिए ऐसी जगह जहाँ झूठों की महफिल होती हो, मत पिए ऐसी शह जो ज़िंदगी को बर्बाद कर दे, मत चखिए ऐसा जायका जो ज़िंदगी को पामाल कर दे, मत मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छुपी रहे।

ये शब्दावली प्राप्त हुई है रिंगनी छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोताओं की, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी की। आप बड़ी खूबसूरत सी एक बात लिख रहे हैं कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। बहुत

ज़िला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम के हमारे श्रोता कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपनी प्यारी सी शब्दावली हम तक पहुंचा रहे हैं। आप हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी साहब, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और हमज़ा सकलैनी, और साथ में हैं गुलशन साहिबा। लिख रहे हैं रेडियो के माध्यम से बहुत खूबसूरत सी बात की दोस्तों, मन भावन की भावनाएं इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने दिल की बात, अपने दिल के जज्बात उन अपनों तक हम पहुंचा सकते हैं इस रेडियो के माध्यम से। ये बहुत ही नायाब तोहफा है क्योंकि ये हमारे काम में कोई रुकावट पैदा नहीं करता। प्रोग्राम सुनते रहो और अपना काम करते रहो, यही इस रेडियो की खूबी है। इस रेडियो के माध्यम से ना जाने कितने ही दोस्त बने और वो दोस्ती आज तक जिंदा है, आज भी कायम है। इस रेडियो की वजह से कुछ बातें, कुछ काम की कुछ जानकारी ऐसे हमें मालूम हुई कि रेडियो को बराबर सुनना, कॉल करना, पत्र लिखना, ईमेल करना, व्हाट्सअप करना, तरह तरह की जानकारियाँ इस रेडियो के माध्यम से हमें बखूबी मिली। इस रेडियो ने हमारा साथ चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो बराबर दिया है और आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्रामों ने इतना सुकून पहुँचाया है कि अब प्रोग्रामों को सुने बिना रहा नहीं जाता। कुछ प्रोग्राम दिल के बहुत करीब हैं, जैसे दिल ढूंढता है और मन भावन, हेलो रामपुर, हेलो फरमाइश, ये वो प्रोग्राम हैं जो आकाशवाणी रामपुर की धरोहर हैं, आकाशवाणी रामपुर की जान हैं, आकाशवाणी रामपुर की एक पहचान है। हम तो बस यही कहेंगे और यही कहना चाहते हैं कि आकाशवाणी रामपुर को हमको इसी तरह आगे भी साथ मिलता रहे, दुआएँ मिलती रहें उन्हें, उसे रब से भी सभी की ज़िंदगी में सुकून, अमन, चैन, भाईचारा कायम रहे। तेरी चाहतों के लिए दिए आज भी जिंदा हैं, तू इंतज़ार कर या ना कर, हम तेरे इंतज़ार में आज भी मुफीदा हैं। तेरी मोहब्बत ने इस दिल को इतना सुकून पहुँचाया है, हम तो तेरे कायल हैं और तेरे दीवाने हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप श्रोताओं के इतने सारे प्यार के लिए।

ये शब्दावली हमें प्राप्त हुई है अर्चना जौहरी की, निकट विद्युत सब स्टेशन नैतिक रोड नैनीताल रोड बरेली के हमारे श्रोता हैं। आप लिख रही हैं कि किसी की याद अपने दिल में बसाना ना, इश्क की राह में भी भूल कर भी जाना ना, अपने दिले दर्द को दिल में ही बसा लेना, किसी परदेसी से दिल कभी लगाना ना। गांव में किसी परदेसी के आ जाने से प्यार का मौसम आ जाता है और ये पूरी कायनात पर छा जाता है। दो दिल और धड़कने मिलती हैं तो प्यार का बीज धीरे धीरे जड़े जमा लेता है, फिर खिल उठता है मोहब्बत का फूल जिसे एतबार के पानी से सींचा जाता है। मिलन की ऊष्मा से इसकी खुशबू फैलकर चमन को गुलजार करने लगती है, हर तरह के रंग से सजती है मोहब्बत की बगिया। ऐसे में किसी का अचानक दूर चले जाना कितना अखरता है, प्यार का दर्द कितना पीड़ादायक होता है, न जीने देता है और न मरने देता है। ऐसे में उस परदेसी की याद नागिन सी डसने लगती है। तन्हाइयों के आलम में बीते हुए पलों की यादें जब करवटें लेती हैं तो आज भी तुम्हारे साथ की खुशबू जब कभी भी हवाएं लेकर आती है, मन का मौसम कुछ अचानक ही बदल जाता है। सूखी टहनी पर फूल खिल जाते हैं, फूल ही फूल, दिल का वो जख्म फिर हरा हो जाता है। परदेसी से दिल ना लगाना वरना तुम पछताओगे, छोड़कर जिस दिन वो जाएगा तुम पागल हो जाओगे। आएगा मौसम का फूलों का मौसम, तन्हाई और बढ़ जाएगी, जब जब याद करोगे उसको तुम आंसू बहाओगे।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मन भवन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं शब्दावलियों के साथ। आज का प्रोग्राम सुरेंद्र कौर के साथ, और कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। मुंबई से हमें ये शब्दावली प्राप्त हुई है अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बिनारा जी की। आप गर्मी के ऊपर कुछ बात लिख रहे हैं। कहते हैं कि गर्मी का मौसम, गर्मी, पसीने, लू, बिजली कट और आम के मौसम का नाम, तकलीफ भी मज़ा भी। गर्मी की हकीकत

पंखा आंगन में कुल्फी वाला और तालाब में छपाक छपाक गर्मी तब बुरी नहीं लगती थी जब दिल बेफिक्र होता था। अब गर्मी सिर्फ गर्मी है। तब गर्मी छुट्टियां थी और बरसात का इंतज़ार, बादल काले घिरते और दिल में ठंडक आ जाती है। एक बूंद गिरे तो पूरी ज़िंदगी महक उठे। और गर्मी बस इतना सिखाती है, इंतज़ार का मज़ा बरसात में है। फलसफाए गर्मी, गर्मी सिर्फ मौसम नहीं एक इम्तिहान है, सब्र का, हिम्मत का, ठंडे दिल रखने का। जो गर्मी में ठंडा रहे वो ज़िंदगी में भी ठंडा रहता है। और याद रखो, गर्मी के बाद बरसात आती है, अंधेर के बाद सवेरा। गर्मी के निपटने के नुस्खे, आप लिख रही हैं कि छाछ पियो, ठंडी हवा लो, दोपहर में घर रहो और दिल ठंडा रखो, क्योंकि गर्मी बाहर की है, अंदर की नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अनु जी, आपको बता दें कि यहाँ का मौसम, आज का रामपुर का मौसम सुहावना है और यहाँ पर जो है मौसम अच्छा हो गया है और बारिश हुई है। ये कार्यक्रम की अगली शब्दावली ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली के हमारे श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी साहब। आप एक बहुत ज्वलंत मुद्दे की ओर इशारा कर रहे हैं, महंगाई। महंगाई के इस दौर में आज लोगों का जीवन दूभर हो गया है। लोग हर तरफ महंगाई महंगाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग तरक्की पर तरक्की करते चले जा रहे हैं। उन पर तरक्की का कोई असर नहीं, समझ में नहीं आता महंगाई है या नहीं। आज लोगों के पास ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना सहना, अच्छा मकान, सब कुछ अच्छा ही अच्छा, फिर किस बात की महंगाई। हाँ, महंगाई है उन लोगों के लिए जिनके पास रोज़गार नहीं, महंगाई उन लोगों के लिए जो बेसहारा हैं, महंगाई उन लोगों के लिए जिनकी कोई सपोर्ट नहीं, महंगाई है उन लोगों के लिए जो गरीब हैं। गरीबों के लिए महंगाई 30-40 साल पहले भी थी और आज भी है। कुछ चीज़ों में मिलावट और महंगाई गरीब को हमेशा सताती है। बहुत सही कहा आपने।

आप सभी श्रोताओं की बहुत खूबसूरत सी शब्दावलियां हमें प्राप्त हुई थी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मन भावन के आज के कार्यक्रम से सुरेंद्र कौर को दीजिएगा इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर से बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: मन भावत। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे शब्दावलियों का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे।
1: मैं लवलीन निगम।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा

0: संरक्षण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशमदीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगेय, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:05 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश और गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचनाएं।
3: रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

श्रोताओं, आप सुनिए गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं। प्रभारी निरीक्षक थाना स्वार जिला रामपुर हमें सूचित करते हैं कि पायल उम्र 16 वर्ष, पुत्री संजीव मौला खास स्वार थाना जिला रामपुर से 6 मई 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस तरह से है, रंग गोरा है, चेहरा गोल है, कद 5 फीट, बाल काले हैं और आपने नीले रंग की टी शर्ट और सफ़ेद रंग का लोअर और सफ़ेद जूते पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है, कृपया इनके पिताजी के फ़ोन नंबर पर भी सूचित करने का कष्ट करें। फ़ोन नंबर है 8477990736। और जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, वो इस पते पर भी सूचना दे सकते हैं। बलराम सिंह, उप निरीक्षक थाना स्वार जिला रामपुर, मोबाइल नंबर 9136848474 और प्रभारी निरीक्षक थाना स्वार जिला रामपुर, मोबाइल नंबर 9454404170। सूचना समाप्त हुई। एक अन्य सूचना सुनिए। प्रभारी निरीक्षक थाना कैला देवी जनपद रामपुर, माफ कीजिएगा, जनपद संभल हमें सूचित करते हैं, रामकिशोर पुत्र विजय, निवासी ग्राम चंदनकटी चूहा, थाना कैला देवी जनपद संभल, जिनके पुत्र दीनदयाल, इनकी उम्र 25 वर्ष और आप 7 मई 2026 से रात्रि से लापता हैं। इनका रंग गोरा है, लोअर और टी शर्ट आपने पहनी हुई है और इनका कद करीब 6 फीट है। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो अथवा मिले, वो इस पते पर सूचित कर सकते हैं। रामकिशोर निवासी चंदनकटी चूहा, कैला देवी संभल, मोबाइल नंबर 9675576268। और आप सूचित कर सकते हैं इन फ़ोन नंबर्स पर भी। उप निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार, थाना कैला देवी जनपद संभल, फ़ोन नंबर है 8299020014। ये सूचना समाप्त हुई।

एक अन्य सूचना सुनिए। अनमोल शर्मा पुत्र हरप्रसाद अशोकनगर बनियाठेर जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि उनका पुत्र अनमोल शर्मा 6 मई 2026 से तहसील रोड से लापता हैं। इनकी आयु लगभग 40 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है, चेहरा गोल है और कद 5 फीट 7 इंच है, रंग गेहुआ है। आपने पैंट और टी शर्ट पहनी हुई है। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो वो कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित करने का कष्ट करें। 7983579732 और एक और फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए 9650360269। गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों को। कार्यक्रमों की श्रृंखला का हमारा अगला कार्यक्रम आप श्रोता साथियों का पसंदीदा लोकप्रिय फरमाइशी कार्यक्रम गीत आपके नाम।

गीत आपके नाम कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है आपकी आज की रेडियो साथी सुरिंदर कौर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम में पहले गीत की फरमाइश के लिए हमें बहुत सारी फरमाइशें मिल चुकी हैं और ये पहली फरमाइश हमें लिख भेजी है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोताओं ने, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी जी हमें ये मैसेज कर रहे हैं। और ये अगला मैसेज जसपुर उत्तराखंड से हमें प्राप्त हुआ है। रियासत हुसैन सिद्दकी, नाजमा बेगम सिद्दकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत हमें ये मैसेज कर रहे हैं। नमस्कार के साथ आप हैं वारली मुंबई के हमारे श्रोता नवाब खान, इशर जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। ये मैसेज बुल्डाना बड़शिंगी महाराष्ट्र से हमें प्राप्त हुआ है। अमूल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक मानकर, श्लोक कुमार, बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से आप हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमित कुमार। जमनिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल और आप ही के साथ गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। ये हमें मैसेज किया है करताल हैदराबाद तेलंगाना से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रबालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश जी ने। नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुँचाया है। और ये अगला मैसेज गुवाहाटी असम से हमें प्राप्त हो रहा है हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या जी का। नमस्कार के साथ आप हैं अभिनंदन करते हुए चंडीगढ़ सिटी के हमारे श्रोता सतीश अनेजा और विमला अनेजा। ये मैसेज भेजा है मेहरनगर उमरखेड़ के महाराष्ट्र के हमारे श्रोता अभिजीत गावणकर, रही श्रीमती सरिता गावणकर, एक प्रिंस एकांश गावणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गावणकर, सिद्धांत गावणकर, अर्जुन गावणकर और टुक टुक, साथ में आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर के हमारे श्रोता वैशाली, शैलेश गावणकर, सुमित गावणकर और कुमारी ध्वनि गावणकर परी। एकता कॉलोनी रोहतक से आप हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। ये मैसेज ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हमें प्राप्त हो रहा है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा जी का। यवतमाल महाराष्ट्र के हमारे श्रोता गाड़गे नगर से लिख रहे हैं अपना ये फरमाइश और आप हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षिता लोखंडे जी। नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुँचाया है। गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। सब्जी मंडी बुल्डाना से शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन साहब मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये मैसेज आ गया है नमस्कार के साथ छोटी बलिया मुंबई से, सिटी मुंबई से आप हैं अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदब आरजू जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले और कापसखेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आप हैं बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मतनशा और आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली। संबलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव सप्रेम नमस्कार करते हुए हमें फरमाइश भेज रहे हैं। उत्तम नगर दिल्ली के हमारे श्रोता बोधराज खोरवाल, कमिला रानी खोरवाल और साथ में हैं गीतिका खोरवाल, भावनु प्रकाश। ये मैसेज हमें भेजा है मोहाली चंडीगढ़ 67 सेक्टर से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और साथ में हैं बिट्टा बजाज जी। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से नमस्कार के साथ ये मैसेज हमें किया है विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशी

विश्वकर्मा जी ने और आप सभी श्रोताओं के नाम कार्यक्रम का यह पहला खूबसूरत संगीत, फिल्म का नाम रुदाली, गायक कलाकार लता मंगेशकर और इस गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और धुन बनाई है भूपेन हजारिका जी ने। लीजिए सुनिए इस खूबसूरत से गीत को।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें आप सभी श्रोताओं की प्राप्त हुई है। आप हैं दुर्गा चौक जूनापानी सनाबद एमपी के हमारे श्रोता कालू सिंह बड़ोले, सीताराम हीरालाल, साहिल सुमन बड़ोले और साथ में हैं विशाल हरिओम भावना बड़ोले। और ये अगली फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं सनावत के हमारे श्रोता मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और साथ में हैं मोहम्मद शादाब खत्री, जाम मस्जिद रोड गोगामा के हमारे श्रोता हाजी इसाक लोलमानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। और ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है ज़िला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोताओं का। आप हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रिहान। पालदा नाका इंदौर एमपी के हमारे श्रोता हसीना बी मंसूरी, आमना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी और हुसना हमें ये मैसेज कर रहे हैं। गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक और सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान नमस्कार के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। ये अगला मैसेज टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हमें प्राप्त हुआ है रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। हर पल खुशियों से भरा हो हमेशा ही ये इस मैसेज के साथ आप आते हैं, धन्यवाद। खेल बाजार पानीपत के हमारे श्रोता नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापा जी इनके नानक चंद मल्होत्रा जी, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का नमस्कार के साथ हमें ये मैसेज कर रहे हैं। और अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता संगमित्रा श्रोता संघ से वार्ड नंबर 1 से पोफाली जिला यवतमाल से हमें ये मैसेज कर रहे हैं जयराम सिंघणकर, दिशांत कुमार सिंघणकर और साथ में हैं अर्पिता जी। गोपालगढ़ राजस्थान के हमारे श्रोता नमस्कार के साथ आप हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और साथ में पूजा परिहार। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू हमें मैसेज कर रहे हैं। और अगला मैसेज हमारे इन श्रोताओं का हमें प्राप्त हो रहा है बंडीखेड़ा पंजाब से। आप हैं मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा नमस्कार के साथ। और ये अगला मैसेज प्राप्त कर रहे हैं हम राजधानी रायपुर के हमारे श्रोताओं का नीलू, मेघ, नीलम और डॉक्टर वंदना कुमार, साथ में हैं बिट्टू कुमार जी नमस्कार के साथ आपने इस मैसेज को हम तक पहुंचाया है। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान के हमारे श्रोता रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और साथ में हैं बेबी बॉय हिमाक्ष। और आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत जीना तेरी गली में फिल्म से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल। इस गीत की धुन बनाई है बाबुल बोस ने।

मोताला महाराष्ट्र से आपकी फरमाइश हमें प्राप्त हुई है विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर और साथ में हैं कुमकुम सुरलकर। ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गोवर्धन कॉलोनी दिल्ली के हमारे श्रोता तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना जी। नमस्कार के साथ आप हमें ये मैसेज कर रहे हैं। और फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल के हमारे श्रोता गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस रामगढ़िया। ये अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुडाना जी। सनावत गांव खंडवावणा से आप हैं धर्मेंद्र सेन, श्री राम सेन, कलाबाई सेन, सावित्री सेन, निशा सेन और आयुषी दीपांशु सेन और साथ में हैं अरुषि लक्षिता सेन। वाड़ी खाम गांव से आप हैं अनंता वाड़े, रमेश्वर वाड़े, साक्षी खुशी और समस्त वाड़े परिवार। ये मैसेज हमें भेजा है मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोताओं ने, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। साथ में शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन और साथ में पीहू स्वर्णकार। आप ही के साथ हैं कृष्णा। और ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है खंडवा रोड सनावत के हमारे श्रोताओं का, शाहबाज, अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर और डॉक्टर मोइन शेख का। आदाब के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। ये अगला मैसेज हमें भेजा है हरहरपुर मटकली जिला बरेली के हमारे श्रोताओं ने, शाहरू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तसीम अंसारी और डीजे प्रधान जी हमें मैसेज कर रहे हैं। और ये मैसेज गांव हिपसोगा तहसील ज़िला लातूर से हमें प्राप्त हुआ है मैसेज उस्मान शेख फौजी और सायरा बानो शेख करिश्मा शेख जी का। बुल्डाना बरशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार। नमस्कार के साथ ये मैसेज आप दोबारा हमें कर रहे हैं। और ये अगला मैसेज देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, साथ में मास्टर अल कबीर। आप लिख रहे हैं हमें डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। और आप ही के साथ हैं बन बगेरा राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता योगेश सारवा और आशीष सारवा जी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा हमें मैसेज कर रहे हैं। और ये अगला मैसेज प्राप्त हुआ है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार के हमारे श्रोताओं का, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। नमस्कार के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। ये अगला मैसेज हमें सत श्री अकाल के साथ जलालाबाद वेस्ट से प्राप्त हो रहा है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी का। सेव वाटर सेव लाइफ, हमेशा की तरह आप ये मैसेज हम तक पहुंचाते हैं। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और साथ में सहारनपुर उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता राधा नामदेव। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हमें ये मैसेज प्राप्त हो रहा है सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई गोडाने, हिरामन शेंडे और साथ में है प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोडाने जी का। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश, सोनू, राजपाल, पंकज, गादल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह जी का। और आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है कार्यक्रम का अगला खूबसूरत सा गीत प्यासा सावन से लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं। इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी रामपुर से हमारे श्रोता सुन रहे हैं। अपनी फरमाइशों पर आधारित, ईमेल फरमाइशों पर आधारित ये कार्यक्रम गीत आपके नाम सुरिंदर कौर के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस फरमाइश के साथ। मरहरा दरवाज़ा एटा के हमारे श्रोता नवी हसन अब्बासी, शाहनवाज, नवीद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ, राशिद, सिद्धपुरा टाउन से आपके साथ हैं जुबेर अली अहम खान, मुशीर अहमद कुरैशी, नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है, और फातिमा कलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से कार्यक्रम को सुन रही हैं। सप्रेम नमस्कार के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर के हमारे श्रोता जुनेद मुजाबर, सबिया मुजाबर और साथ में है मिखाइल मुजाबर, जैनम मुजाबर। ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाने वाले हमारे श्रोता हैं ग्राम नथाना पंजाब के हमारे श्रोता हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। ये मैसेज हमें भेजा है राशिद हुसैन अंसारी साहब ने, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, जैन मंदिर वाली कली कुरावली के हमारे श्रोता हैं। ये आदाब के साथ मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। शास्त्री नगर बीड शहर के हमारे श्रोता किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईंराज सपकाल, विशाल सपकाल, नमस्कार के साथ इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। खंडवाड़ा से आप हैं सुनील विश्वकर्मा, महेश पटेल, प्रदीप पटेल, विल्लू यादव, राकेश यादव और धर्मेंद्र सेन जी इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, और ये अगला मैसेज पहुंचाया है ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ के श्रोताओं ने। आपका ये दोबारा मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, रक्तदान महादान इस संदेश के साथ आप आए हैं। और ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है सदर बाजार बिलवाड़ मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान के हमारे श्रोताओं का, रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान जी का, नमस्कार के साथ इस मैसेज तो को हम तक पहुंचा रहे हैं। करणवीर हाउस भुचो कैचिया बठिंडा पंजाब से नमस्कार के साथ आप हैं प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। ये अगला मैसेज सहारनपुर से हमें प्राप्त हो रहा है सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब, और आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है प्यार प्रेम पूर्वक आदाब के साथ ग्राम कुमार हेड़ा सहारनपुर से। हिंगोली महाराष्ट्र से कार्यक्रम को सुन रहे हैं शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े जी, नमस्कार के साथ इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये अगला मैसेज बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, कौन सा मैसेज है ये, वीरगांव गुजरात के हमारे श्रोताओं का ये मैसेज है अजीत भावसार और प्रमिला भावसार जी का। ये अगला मैसेज जमनिया मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हमें भेज रहे हैं मनीष रावत, लीलू रावत और रोहन रोशन, और आप हैं नई बस्ती गंज डुंडवारा के हमारे श्रोता मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी और मोहम्मद तौसीफ। इतना ही मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। और अगला मैसेज भेजा है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली के हमारे श्रोताओं ने, प्यार भरे आदाब के साथ आज के सफ़र में हम भी हैं आपके हम सफ़र इस मैसेज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं मोहम्मद इसहाक, खतीबा बेगम, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, छत्तीसगढ़ रायगढ़ से आप, रायपुर से आपके साथ हैं मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रज़ा, गौसिया फातिमा और आपके परिवार के सभी सदस्य। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम के साथ लगातार लाइव जुड़ने के लिए। आप सभी ने सुनना चाहा है और एक मैसेज

और भी हैं, आप हैं रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ के हमारे श्रोता जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, मोहम्मद रुखसार, रकीबा शाहीन।

लगातार लाइव जुड़ने के लिए। आप सभी ने सुनना चाहा है, और एक मैसेज और भी है। आप हैं रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ के हमारे श्रोता जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, मोहम्मद रुखसार, रकीबा शाहीन।

चूड़ी लाइन मुंगेली के हमारे श्रोताओं ने। प्यार भरे आदाब के साथ आज के सफ़र में हम भी हैं आपके हम सफ़र, इस मैसेज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं मोहम्मद इसहाक, खतीबा बेगम, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, छत्तीसगढ़ और भी हैं। आप हैं रेशमी नगर, मुबारकपुर, आजमगढ़ के हमारे श्रोता जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, मोहम्मद रुखसार, रकीबा शाहीन, तुबा आफरीन और शमीम अख्तर साहब इस मैसेज को हमें कर रहे हैं। और ये

तो रहा है। तत्रेंगी से आप हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। ये अगला मैसेज रमेश कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू और समस्त कठेरिया परिवार, आप ये मैसेज हमें पहुंचा रहे हैं। ग्रामवा पोस्ट, मुंगीसापुर, कानपुर देहात के हमारे श्रोता। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता सिद्धार्थनगर, दरियापुर, बाबली के हमारे श्रोता गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और मधुकर येले जी हमें इस मैसेज को कर रहे हैं। और ये अगला मैसेज भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग जी हमें इस मैसेज को कर रहे हैं। ऊपरकोट चौकुंटी बुलंदशहर के हमारे श्रोता मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुबहान, सुहान अरजान और अबान अब्बासी इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये अगला मैसेज वारण शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोता विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान जी नमस्कार के साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हमें मैसेज भेज रहे हैं। लाल कुर्ती रुड़की कैंट के हमारे श्रोता राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर की राजा। ये अगला मैसेज हमें पहुँचाया है नाभा जिला पटियाला पंजाब के हमारे श्रोता सोमदत्त, कैरल, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु ने। और अब ये मैसेज हमें मिला है अनारकली बाजार जगराऊं के हमारे श्रोताओं का, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और सादर प्रणाम के साथ हमें मैसेज भेज रहे हैं। और ये मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है चंद्रनगर सहारनपुर के हमारे श्रोताओं का, सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली शेख, अल्लाह बख्श, अरविंद्र कुमार, संदीप मक्कड़ और एस के सरगम जी का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का। और ये कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सभी श्रोताओं के नाम, फिल्म का नाम प्यार किया है प्यार करेंगे और इस गीत के सुर दिए हैं शब्बीर कुमार ने और कविता कृष्णमूर्ति ने। इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

इसी खूबसूरत से गीत से के साथ सुरेंद्र कौर को अब गीत आपके नाम कार्यक्रम से दीजिएगा इजाज़त। अगले कार्यक्रम में फिर से बात होगी, फिर से आपकी फरमाइशें होंगी और होंगे खूबसूरत से गीत। नमस्कार।

0: हमारे श्रोताओं ने सुना फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: हर के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के 3 पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए

0: ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 1:05 और 10 सेकंड हो रहे हैं। आइए अब आपको बता दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
7: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
6: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

श्रोताओं, आप सुनिए कार्यक्रम विवरण। धरती गाती है, लोकगीतों का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 1:15 पर। आज इसमें कलाकार स्वर होगा राम नारायण मौर्य जी का। 1:30 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम आंचल। आज इसमें चर्चा का विषय रहेगा संघर्ष ही सफलता। इसके साथ ही एक वार्ता भी आपको सुनवाई जाएगी, महिला सशक्तिकरण। वार्ताकार होंगी श्रीमती शिखा सक्सेना। मनोरंजन के लिए होगा एक लोकगीत और साथ में क्षेत्र संकलित वार्ता के अंतर्गत ग्रामीण महिला के अनुभव आपको सुनवाए जाएंगे। 2:30 का समय है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का।

श्रोताओं, शाम की सभा आरंभ होगी संध्या 4 बजे हमारे रिले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। संध्या 5 बजे सुनिएगा आज शाम कार्यक्रम और 5:15 पर होगा युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। 6:10 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत और 6:20 पर किसान साथियों के लिए हम लेकर आएंगे उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। विविधा के अंतर्गत सुनिएगा वार्ता राम प्रसाद बिस्मिल और उनकी सरफरोशी की तमन्ना। वार्ताकार होंगे शन्नू खान। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लाएंगे संध्या 7 बजे। 7:31 पर सुनिएगा सुकन संगीत के अंतर्गत कुछ संजीव पराशरी की गाई हुई कुछ गजलें। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चला आपके लिए हम लेकर आएंगे रात्रि 8 बजे। 9:30 का समय है सबरस कार्यक्रम का आज, इसके अंतर्गत सुनिएगा धर्मपाल सिंह और से रागनी। और रात्रि 10 बजे आपके लिए होगा एक नाटक। और 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोताओं, ये था आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इलाकाई खबरें नश्र होंगी।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए टीम इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म के नज़रिए के ऐन मुताबिक इस साल के मौजू विकसित भारत 2047 के लिए जामे इंसानी तरक्की में उम्र, खित्ते, सिन्फ या समाजी और माशी पस मंज़र के कता नज़र हर भारतीय की बहबूद और तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इस मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल भारत के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बन गए। इस मौके पर नई दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की ख्वाहिशात जरूर पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क के आवाम ने देखा है कि जब कोई हुकूमत सही नीयत के साथ चलती है तो तरक्की भी तेजी से होती है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क मुसलसल तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है।
1: 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं

0: संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: इससे कबल मरकजी काबीना ने भी कल एक करारदाद पास करके वजीर आजम को मुबारकबाद दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल भारत के सबसे तवील मुद्दत तक खिदमत करने

0: खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: इससे कबल मरकजी काबीना ने भी कल एक करारदाद पास करके वजीर आजम को मुबारकबाद दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल भारत के सबसे तवील मुद्दत तक खिदमत करने

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत राम नारायण मौर्य के गाए हुए कुछ लोकगीत। आइए सुनते हैं इनके सुर में कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

अभी श्रोता साथी आनंद ले रहे थे कुछ लोकगीतों का। प्रोग्राम था धरती गाती है। आज इसमें कलाकार स्वर था राम नारायण मौर्य का। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आंचल कार्यक्रम।

नमस्कार बहनों, आप सुन रही हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आंचल और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मीना। बहनों, आज के कार्यक्रम में चर्चा को विषय रहेगा संघर्ष ही सफलता है, साथ ही साथ वार्ता सुनवाई जाएगी, क्षेत्र संकलित कार्यक्रम भी सुनवाओ जाएगा और हाँ, मनोरंजन लोकगीत से कराओ जाएगा। बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर इंसान के जीवन से जुड़ो है, संघर्ष ही सफलता है। जीवन में कोई भी सफलता बिना मेहनत और संघर्ष के बिना नहीं मिलती, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो या गृहिणी। हर व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने पड़ता है। बहनों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। बहनों, सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब लोग हमारे विरुद्ध होता है, हर तरफ से निराशा ही मिलती है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। लेकिन उस समय आप जीवन के उस मोड़ पर होते हैं जहां आपसे गलतियां ही होती हैं, लेकिन आपको निराशा ना होने हैं, क्योंकि आप कोई कंप्यूटर ना है जो कि वायरल वाली फाइल काटने से समस्या दूर हो जाता है। आप एक इंसान हैं, वो सब कुछ आपके पास है जो और किसी के पास ना है। इंसान जन्म से मृत्यु तक मुसीबतों से घिरा रहता है, उसे चोट लगती है, हार मिलती है, तो क्या हम जीवन जीना छोड़ दें? नहीं ना। इसलिए बहनों, जब भी मुश्किलें आएं, आप उसे हटाएं और खुद को जिताएं। बहनों, सही मायने में हमारी हार जीत से महत्वपूर्ण होती है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहनों, इतिहास में जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, वे जीवन में सफल बनने से पहले असफल हुए हैं, वो भी कई बार। बहनों, जब हम बहुत काम कर रहे होते हैं तो जरूरी ना है कि सब काम सही हों, लेकिन अगर हम प्रयास करना ही छोड़ दें तो कभी भी सफल ना होंगे। इसलिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। बहनों, आपने एडिसन को नाम तो सुनो ही होगा, जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल्ब को आविष्कार करो, वो भी लगभग 1000 बार प्रयास करने पर असफल हुए, यानी फेल हुए, तो कहीं जाकर उन्हें सफलता मिली। बहनों, हार ही हमें जीवन का रास्ता दिखाती है, क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। बहनों, हमें खुद पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं, क्योंकि सफलता वक्त और मेहनत मांगती है, हौसले बुलंद हो और दिल से चाहत हो। बहनों, सफल होने की तो दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है।

0: चाहें कि हमारो नाम हो, हमारे पास पैसा हो, निर्धन व्यक्ति भी अमीर बनना चाहता है, एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, बेरोजगार नौकरी चाहता है, लेकिन खुद को बदलना ना चाहता, मेहनत करना ना चाहता, क्योंकि लोग दूसरों को देखकर जलते रहते हैं। बहनों, आप सभी ने चींटी को तो देखो ही होगो, जब चींटी दीवार पर चढ़ती है तो वह गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर भी वह हार नहीं मानती और एक समय ऐसा आता वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। तो हम क्यों हार मान कर बैठ जाएं? हम तो परमेश्वर की बनाई हुई सबसे अच्छी रचना है, हम इंसान हैं, जिसके पास सब कुछ करने की ताकत होता है तो हमें भी अपने जीवन तक कठिन मेहनत करनी चाहिए। हमें हारने के बाद भी अपने हौसलों को बुलंद रखना चाहिए, जब तक कि हम अपनी मंजिल को न पालें। बहनों, जिस प्रकार बीज मिट्टी के अंदर संघर्ष करके पौधा बनाता है, उसी तरह से इंसान भी कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ सकता है। इसी तरह से महिलाओं का जीवन भी संघर्ष से भरो होता है। सुबह जल्दी उठनों, घर को काम धाम करनो, बच्चन की देखभाल करनो, पशुओं की सेवा और खेत में काम करनो, ये सब आसान ना है, लेकिन महिलाएं फिर भी हार नहीं मानती हैं। बहनों, ये हिम्मत उन्हें सफल बनाती है, इसलिए कहा है संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। इसलिए हमें मुश्किलों का, मुसीबतों का सामना करना चाहिए, अपने हौसलों को बुलंद रखना चाहिए। बहनों, जो तो बात रही संघर्ष ही सफलता है कि, बहनों अब वो सुनवाता वार्ता जिसको विषय है महिला सशक्तिकरण। बहनों, महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं को अधिकार देने ना हैं, बल्कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना है। महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार को, समाज को और देश को, सभी को मजबूत बनाती हैं। बहनों, और अधिक विस्तार से जानकारी देने के लिए वार्ता कहाँ है शिखा सक्सेना, तो सुनते हैं जो वार्ता।
1: आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रही हूँ जो केवल एक सामाजिक आंदोलन नहीं बल्कि एक नवजागरण है, महिला सशक्तिकरण। जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है महिलाओं को वह अधिकार, संसाधन और आत्मविश्वास देना जिससे वे अपने जीवन के हर निर्णय को खुद लेने में सक्षम हो सके। महिला सशक्तिकरण के चार मुख्य स्तंभ होते हैं, शिक्षा, आर्थिक स्तंभ, कानूनी अधिकार, मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता। एक शिक्षित महिला न केवल अपने लिए सोच सकती है बल्कि एक जागरूक पीढ़ी को जन्म देती है। जब एक महिला कमाने लगती है तो वह निर्णय लेने की क्षमता भी प्राप्त करती है। घरेलू हिंसा, दहेज और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ कानूनी महिलाओं को सुरक्षा और न्याय दिलाने में सहायक है। यह सबसे जरूरी है जब महिलाएं खुद को कमजोर नहीं बल्कि परिवर्तन की शक्ति मानने लगेंगी, तभी असली सशक्तिकरण होगा। इतिहास में महिलाओं की भूमिका रही है, हमारे यहाँ, हमारे भारत में इतिहास में महिलाओं की जो भूमिका रही है, हमारी संस्कृति ने सीता, सावित्री, झांसी की रानी, रजिया सुल्तान और रानी दुर्गावती जैसी सशक्त महिलाओं को जन्म दिया। महिला सशक्तिकरण कोई नया विचार नहीं है, यह हमारी परंपरा में हमेशा से रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हमें उस सशक्तिकरण को पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत है। मीडिया और फिल्मों में महिलाओं की छवि, आज के समय में फिल्मों और टीवी सीरियल का महिलाओं पर बहुत गहरा प्रभाव है। जहां कुछ फिल्मों और महिला नेतृत्व, साहस और आत्मनिर्भर को सहारा देती हैं, जैसे क्वीन, राजी और दंगल, वहीं कुछ जगहों पर आज भी महिलाओं को सिर्फ सजावट की वस्तु या बलिदान की मूर्त के रूप में ही जाना जाता है। समाज को चाहिए कि वह ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दे जो महिलाओं को प्रेरित करे, सीमित नहीं करे। डिजिटल युग में महिला सशक्तिकरण, आज हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए

फ्रीलैंसिंग, ऑनलाइन शिक्षा, स्टार्टअप और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में भी आगे बढ़ रही हैं। सरकार की योजनाएं जैसे डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्टैंड ऑफ इंडिया ने महिलाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर पर आगे बढ़ने का मंच दिया हुआ है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिला उद्यमिता, आज भारत में 60 लाख से ज्यादा महिला उद्यमी हैं। उनमें से कई ने घर से ही अपने बिजनेस शुरू किए हैं और वे दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। फाल्गुनी नायर, वंदना लूथरा और अपर्णा पोपट जैसी महिलाएं आज दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। अगर एक महिला आत्मनिर्भर हो जाती है तो वह केवल खुद नहीं कई जिंदगियों को दिशा देती है। जब एक महिला अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेती है तो वह दूसरों की दुनिया भी बदल सकती है। शहरी और ग्रामीण भारत दोनों की चुनौतियां अलग अलग होती हैं। शहरों में महिलाएं अब कारपोरेटिव, चिकित्सा, न्याय और तकनीकी क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं, फिर भी पैट्रियार्की, वर्कप्लेस, भेदभाव और सुरक्षा की चिंता आज भी मौजूद है। वहीं ग्रामीण भारत की महिलाएं अब भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए संघर्ष ही कर रही हैं। हमें इन तक सुविधाएं और अवसर पहुंचाने होंगे। पेप्सिको की पूर्व CEO, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय महिलाएं वैश्विक नेतृत्व कर सकती हैं। गंगादीप कांग, भारत की अग्रणी वायरोलॉजिस्ट, विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी का प्रतीक हैं। शेफाली वर्मा, युवा क्रिकेटर, जो लड़कियों के लिए नया आत्मविश्वास बनकर उभरी हुई हैं। आप जैसी महिलाएं जो जीवन के हर मोर्चे पर ईमानदारी, मेहनत और आत्मबल से आगे बढ़ रही हैं। मैं क्या सोचती हूँ, मेरे लिए महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ भाषण देना नहीं है, यह मेरी रोजमर्रा की सोच है। जब मैं अपने लिए निर्णय लेती हूँ तब मैं अपने आसपास की महिलाओं को प्रोत्साहित करती हूँ। जब मैं अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देती हूँ तभी असली सशक्तिकरण होता है। नारी वह शक्ति है जो सृजन भी कर सकती है और परिवर्तन भी। वह केवल सहनशील नहीं बल्कि सक्षम भी है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर बेटी, हर बहन, हर महिला अपनी पूरी क्षमता से जी सके, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक से, बिना किसी भेदभाव के। जहां लड़कियों की पहचान दहेज से नहीं डिग्री और दक्षता से हो। जहां महिलाएं सुरक्षा की नहीं संभावनाओं की बात करें। जहां हर महिला के चेहरे पर आत्मविश्वास और मुस्कान होना चाहिए, क्योंकि वह जानती है कि वह दुनिया बदल सकती है। नारी शक्ति को समर्पित है कविता। छूले हर ऊंचाई तू, किसने तुझको रोका है। बात कल कुछ और थी, फिर से आज मौका है। पर खोल कर हो आजाद, डरना आसमान से। कमर कस ले आज ही, लड़ना है अभी जहान से। यह बंदिशे, यह बेड़ियां तुझे ना रोक पाएंगी। इरादों को शमशीर कर, यह खुद ही टूट जाएंगी। सर झुके थे, सर झुकेंगे फिर ये तेरे सामने। पुरुष और महिला को बराबरी पर लाने के लिए महिला सशक्तिकरण में तेजी लाने की जरूरत है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान राष्ट्र की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। महिला और पुरुष के बीच की असमानता कई समस्याओं को जन्म देती है। सशक्तिकरण को लाने के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों से अवगत होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। महिलाओं के सशक्त होने के पूरा समाज अपने आप सशक्त हो जाएगा। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान राष्ट्र की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। इतिहास में महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी वे विज्ञान, लेखन, राजनीति और व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सफल रही हैं। भले ही महिलाओं को अनुचित व्यवहार और पुरुषों के समान काम के अवसर ना मिले हों, जैसी समस्याएं, जिस भी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, फिर भी उन्होंने साहस दिखाया है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करी है। समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं को शक्ति और अवसर देना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। महिला समाज की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। वे माँ हैं, बेटियां हैं, बहनें और नेता हैं। महिलाएं कई तरह से मदद करती हैं, जैसे परिवार की देखभाल करना, पढ़ाना, अस्पतालों में काम करना और समुदायों की मदद करना।
इतिहास में महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी वे विज्ञान, लेखन, राजनीति, व्यापार और जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रही हैं। युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता देना और उनका सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लड़कियों को अपने सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन किया जाना चाहिए, चाहे समाज उनसे क्या अपेक्षा रखता है क्या नहीं। पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता एक बुनियादी मानव अधिकार है। लोगों को समाज में सभी की मदद करने के लिए इस दिशा में काम करने की जरूरत है। महिलाओं का समर्थन करने और उनके अधिकारों के लड़ना हम सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करता है। आइए हम सबको मिलकर सुनिश्चित कर रही महिला और लड़कियों को सम्मान, स्वतंत्रता और खुशी का जीवन जीने का

हमें काम करने की जरूरत है। महिलाओं का समर्थन करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ना हम सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करता है। आइए हम सबको मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए महिला और लड़कियों को सम्मान, स्वतंत्रता और खुशी का जीवन जीने का।

हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में

काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में

0: बहनों, अभी आपने जो लोकगीत सुनो, हमें उम्मीद है आपको लोकगीत पसंद आओ होगा। बहनों, मनोरंजन तो होएगा, अब वो सुन लेते हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम गांव की बातें। हमने उनसे काका बातें करी, हम आपको सुनवाते हैं। आप हैं नीरज, ग्राम बंटपुरा चमरुआ रामपुर से।
1: का नाम है आपको?
2: नीरज।
1: आप क्या करती हो?
2: गृहस्थी देखता, अपनी खेती बाड़ी है, काश्तकारी, खाना बनाना है, पशु को पालना है।
1: हाँ,
2: खेती बाड़ी में अपने हस्बैंड थोड़ी मदद कर देते हैं।
1: अच्छा,
2: काश्तकारी हमारे यहाँ।
1: इस समय कौन कौन सी फसलें हैं?
2: अब खेती बाड़ी में गन्ना में पानी उनी लग रहे हैं, बरसात ही ना आ रही है तो पानी की ज्यादा समस्या है, तो इंजन उंजन चलाया जा रहा है। गन्ना में पौध डालन की दो चल रही है, मतलब खेत जोते जा रहे हैं, खेत जोते पौध पाई।
1: देखो दीदी, इस समय गर्मी तो पड़ रही है।
2: हाँ दीदी, बहुत ज्यादा गर्मी है और गांव में तो गर्मी बेहिसाब है, बहुत ज्यादा बारिश।
1: अच्छा हाँ, तो ऐसी गर्मी में कैसे बचकर रह सकता?
2: दीदी देखो, ऐसी गर्मी में हम गांव के रहने वाले हैं, तो हमारे साथ एसी उसी की सुविधा तो ना है।
1: हाँ,
2: लेकिन हम लोग अपने बचाव के लिए जगह जगह पेड़ पौधे होते हैं,
1: उनके
2: पेड़ पौधों के नीचे रहें।

0: पानी पिए हैं, बालकन को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलावा
1: है। हाँ, और
0: सुबह नहा ले है, दोपहर में बच्चन को फिर से नहा दिए है। तो अगर हमारे फ्रिज ना है ठंडो पानी रखने ताई,
1: हाँ हाँ,
0: तो हम लोगों को जी मिट्टी के जो मटका होता है,
1: हाँ हाँ
0: हाँ, मिट्टी के मटकन में पानी भर के रख ले है, वो पानी पिए तो ज्यादा अच्छा हुआ।
1: क्यों का, हाँ, हाँ,
0: क्योंकि पानी गर्मो ना होता है और शुद्ध रहता है मटका।
1: हाँ, और वो शरीर के लाभकारी होता है।
0: हाँ, बहुत लाभकारी होता है। हाँ, बीमारियों से बचाव, गर्मी
1: से बचाव। हाँ, बीमारी सब बचाते।
0: हाँ, और हमें जो देखना चाहिए कि हम ज्यादा धूप में घर से बाहर ना लग रहे हैं।
1: हाँ हाँ,
0: कि देख ही ना रहे हैं, टाइम 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, हर समय बाहर ना रहना चाहिए। सुबह को हमारे काम है, जैसे पशुओं के हैं या
1: हाँ,
0: बच्चा की कोई दवाई ववाई ले जाने हैं,
1: हाँ,
0: तो सुबह उठ कर 8 बजे चले जाओ और 10-11 बजे लोग घर आए आए जाओ, तो सब ऊपर टाइम ना हुआ, फिर 3 बजे तक अपने घर में ही रहो, पेड़ की छांव में।
1: खेतन पर किस समय जाती हो?
0: खेतन पर दीदी जैसे सुबह को हमारे पति चले जाते होंगे इंजन उंजन लेकर।
1: हाँ,
0: फिर हम भैंसियों को अपने चारा डाल कर, अब धूप में भैंसियों को ना छोड़ सकत।
1: हाँ,
0: तो 8 बजे चारा उरा डाल कर पानी पिवा कर पेड़ के नीचे भैंसियों को बांध जाता है, अपने खाना लो टिफिन में, खाना उना बनाए दो और अपने बच्चों को नहला उला कर ले जा रहे कि लला हम अभी आ रहा है, लली हम अभी आ रहा है, चलो तुम लेती हो।
1: हाँ,
0: तो फिर 9 बजे खेत पर चले जाता, अपने पति को खाना दे दो।
1: हाँ,
0: खाना दे कर इंजन पर भी अपने बैठे हैं, कपड़ा दया है कि नहा के यहीं पर पहन लियो और छाता दे आता, अब बस ट्रैक्टर की छतरी पर बैठ जाता।
1: जंगल में तो पेड़ होते
0: हाँ, तो पेड़ छाई में बैठ

0: बंदर का हवा हवा आ जाता है।
1: अच्छा, और जानवर को इस समय क्या का खवा रही है?
0: भूसा खवा रहा है, भूसा। हाँ, चरी वो लगी है थोड़ी।
1: अच्छा,
0: तो भूसा में चरी मिलेगा खवा देता, हल्को भूसा और चरी।
1: अच्छा, पशुओं की तो बात हो गई और खेती बाड़ी की भी बात रहेगी, अब कर लेता अपनी खान पान की बात है। तो ऐसी गर्मी में हमारो खान पान कैसे होना चाहिए?
0: दीदी मेरे समझ तो ये गर्मी में खान पान हम लोगों को अगर तली हुई चीजों से जितना ज्यादा बच लिए
1: हाँ,
0: उतना ज्यादा अच्छा है।
1: हाँ,
0: तली हुई चीजें बाहर की चीजें बिल्कुल ना है।
1: हाँ,
0: तली हुई चीजों से डायरिया वालों को बहुत ज्यादा डर है।
1: हाँ,
0: बहुत हल्को तेल छौकर में लगाओ, बहुत हल्को।
1: हाँ,
0: और अगर घर दूध घीरा हुआ तो दही और मट्ठा को सेवन ज्यादा से ज्यादा करें।
1: हाँ,
0: दूध
1: हाँ,
0: को सेवन कम करें।
1: दूध
0: तो नाम मात्र को ही पिए, दही और मट्ठा।
1: हाँ, दही और मट्ठा इस समय
0: हाँ,
1: बहुत जरूरी
0: दही
1: है।
0: और मट्ठा इस समय सबसे अच्छी चीज है। और जब खाना खाए तो खाना के संग में घर के खीरा की सलाद है।
1: हाँ,
0: सलाद ले लियो हल्की फुल्की।
1: हाँ, हाँ,
0: और पानी ज्यादा से ज्यादा पी। अगर हम चार रोटी भूखा तो चार रोटी की जगह हम तीन रोटी खाए, एक रोटी का
1: एक रोटी
0: बिल्कुल ना था।
1: एक रोटी की जगह पानी पिए।
0: हाँ, पानी से गुजारा करा, क्योंकि अब गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा। बालक ना मानता कि टिक्की मोमो जे वगैरह सब कतई ना दिए, बाल करता है बहुत ज्यादा नुकसानदायक है।
1: अच्छा,
2: बनो अभी आपने क्षेत्र संकलित कार्यक्रम सुनो। हमें उम्मीद है आप इस कार्यक्रम को सुनकर अपने बच्चन को अच्छे से रखेंगे। बहनों अब कार्यक्रम समाप्ति को रो है, अब अपनी बहन मीना को दो कार्यक्रम समाप्त करने की।

0: This edition of the World Cup will be the biggest in history, with an expansion from 32 to 48 teams. A record 104 matches will be played, with 72 in the group stage and 32 in the knockout rounds, across host nations, United States, Canada and Mexico. The three host nations qualified automatically, while 45 teams earned their places through a demanding two-year qualification journey. The competition features 12 groups of four teams each. The top two teams from every group, along with the eight best third-place teams, will advance to the round of 32. This expands the knockout stage to 32 teams for the first time in tournament history. The grand final is scheduled for 19th of July, promising a thrilling conclusion to football's greatest celebration. This World Cup is also expected to be one of the most challenging in history, with teams facing demanding conditions across three countries, including long travel distances, varying climates, different altitudes, and shifting time zones. Over the decades, only eight nations have lifted the FIFA World Cup trophy: Brazil, Italy, Germany, Spain, Argentina, England, France, and Uruguay, the inaugural champions. Among the most unfortunate sides in World Cup history remain the Netherlands, who have reached three finals but are yet to win the title despite producing generations of world-class talent. From history to high stakes, from legends to new challengers, the stage is set for football's ultimate battle. Shagun Chopra from Sports Desk.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Vikasit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First made-in-India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
3: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
3: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
2: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
4: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
2: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
4: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
5: Zero tolerance.

0: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
1: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जोर्दा में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जोर्दान के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इसे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जोर्दान या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और

0: उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में चार चार टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम कर्नाटक

0: 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप श्रोता जुड़े हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रमों से। 2:30 का समय हुआ है, आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
1: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजी जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओ, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी

0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
1: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भून कर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
1: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
1: जी,
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक। माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियां उनके लिए अनुकूल हैं।
0: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म,

इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त

0: करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी,
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी,
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
2: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
2: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
2: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
2: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
2: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
2: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
2: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
2: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो यह है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
2: जी,
0: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाना।

0: लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो, वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला,

की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी श्रोताओं ने सुना प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आप इस समय सुन रहे हैं हमारी प्रथम सभा के प्रसारणों को। अपनी द्वितीय सभा के प्रसारणों को लेकर हम संध्या 4 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक विविध भारती के प्रसारण विधिवत आप सुन सकेंगे। संध्या समय में अपनी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और FM पर आपसे पुनः भेंट होगी। अब मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

जी हाँ, आज हम आपको लिए चल रहे हैं 1950 और 1960 के उस सुनहरे दौर में, जहां संगीतकारों की जादुई धुनें, गीतकारों की कलम का कमाल और गायकों की मधुर आवाजें मिलकर अमर गीतों की रचना कर रही थीं। आजादी के बाद का भारत नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा था और हिंदी सिनेमा भी नए रंगों में ढल रहा था। और इस दौर में संगीतकारों जैसे नौशाद, शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन और मदन मोहन ने

आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।

0: बिल्कुल। तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोर नाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
1: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहां की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेयता, जो आपने भी बताया, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है। कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानियों को अच्छे से समझाया जा सके।
0: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना,
1: हाँ
0: इस तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
1: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं। और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
0: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांव तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी, संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है।
1: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती। और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहां के लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
0: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
1: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सके, ताकि जो तोगलू गोम्बेयता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सके।
0: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है।
1: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं, इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके दर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहां के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है, उनसे जुड़े हुए होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
0: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा को भारत का 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
1: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
0: जी,
1: और एक गीत सुन ले अभी।
0: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था। और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और
1: बिल्कुल
0: खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि
1: हाँ
0: किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतली होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो
1: हाँ
0: डांस है वो देखने में बड़ा मजा आता
1: बिल्कुल। अजीब अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं ना।
0: हाँ
1: तो हमारे एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज और बड़े बड़े बंगला बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसा आपने बोला वो बोल
0: बिल्कुल।
1: रही हैं।
0: और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है, तो बच्चों को जरूर वहां लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाएं कि कठपुतली नाम की कोई चीज होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है।
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं। और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है, तो उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में। आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने की खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए। क्योंकि
1: बिल्कुल
0: कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित
1: बिल्कुल। वो
0: करना
1: जिस
0: बहुत
1: तरीके के
0: जरूरी
1: खेल
0: है।
1: में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए।
0: जी
1: और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है।
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है, तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सके। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं, आरती

0: को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सके। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं, आरती

का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सके। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जाने, पहचाने और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना

0: तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
1: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है, तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।

0: को उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए, अब मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी

0: वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
1: ऐसी बहुत से मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं, कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने की, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में। एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को। जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है। इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। और इसी साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूं, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूं, तो आप सभी शक्की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं, उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे।

0: जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है हमें, कभी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीरी, जैसे अक्सर हाँ। हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ नहीं हो रही तो बस माचिस की तीरी लेके करने लगे तो वो बहुत खतरनाक।
0: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती
1: हैं, हेयर पिन, चाबी ले जाए, कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना बहुत समय तक ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि एक वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे रहता है ना जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा हम अगर शोर में रहेंगे तो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
0: देखो जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी नुकीली चीजें हेयर पिन इनका तो कभी ना करें,
1: इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीजें आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पुराने जो होते हैं वो बड्स उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये सब चीजें आप ना प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज ही आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, तो अब बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही,
0: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है तो बहुत तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना है।
1: सबसे बड़ी चीज है आप अगर आपको सुन ही रहे हैं आप उसको बहुत जरूरी आपको कान में लगाना तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज को कि आपको बाकी आवाजें ना आए। और दूसरी चीज अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना एक कान में लगा लिया थोड़ी देर आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना कान आपका ऐसे पर्दे पे उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, कृपया करके अपने आप कोई दवाई मत करिए, कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीजें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन कर अच्छे से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी जरूर करवाइए।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर अभी तक आप विविध भारती के प्रसारण सुन रहे थे। संध्या के 4 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम मीडियम वेव और एफएम पर अब एक साथ आरंभ हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: भारत एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उनको यह सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कंट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।

0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। SSB सशस्त्र सीमा बल बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल, हाँ, हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को SSB के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप SSB एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामणि में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
0: जी जी,
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
0: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
1: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था।
0: जी, जी।
1: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
0: जी, जी।
1: तब हम ITBP को देखते थे, हमें CRPF की जानकारी थी, BSF की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
0: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
1: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं, खासतौर पर भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं, और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
0: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का
1: जी,
0: इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी।
1: बिल्कुल।
0: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
1: बिल्कुल।
0: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं।
1: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से, दूसरा अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम CCTVs को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है
0: जी।
1: हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज़ में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
0: राइट देन, तो आप अभी CTC में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
1: बिल्कुल।
0: और किस तरह की ट्रेनिंग आप?
1: बेसिकली जो हमारा CTC है वो सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं, और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं
0: जी। या जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
1: बिल्कुल, ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था
0: जी
1: तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है, तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेस तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव।
0: और आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है आप CTC में, ये कितने समय से है?
1: मेरे को अभी एक साल हुआ है लगभग।
0: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर, ही इज सेकंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
1: ऐ मेरे वतन के लोगों।
0: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है?
1: बहुत प्रिय है।
0: और कोई खास वजह?
1: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिबली रहता ही था
0: जी जी,
1: तो दिल को छूता है ये।
0: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल as far as the playback singing is concerned, the late, the legendary Lata Mangeshkar.

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहां तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहाँ सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी।
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
0: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
1: जी,
0: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
1: जी।
0: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
1: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्योर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस जिले में हम लोगों को दिया गया था उस जिले को नक्सल फ्री कराने में

0: हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
1: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, जामतारा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है। और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी, एक आईपीएस ऑफिसर की, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे। तो इसको, इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पर, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पर किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
1: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा, बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से, बातों का जो सिलसिला उसे रख कर कोई चीज़ सॉल्व कर सकें?
0: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इंफॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत,
1: ये सब एसएसबी कर रही है?
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी, वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बींग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा, तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है?
0: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रिक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ
1: जी,
0: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं, उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुँचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुँचाना, गाँव वालों को विकास के नज़दीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहाँ पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
1: जी,
0: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे हैं कि आप बनाइए, जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा, ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना, इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से

0: एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज़ है। 90 का दशक है, वहाँ पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे। ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
1: पनिशमेंट।
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूं संथाल परगना में, बहुत सीधे साधे लोग हैं। जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुंचने नहीं देते थे, पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया। और यही इसी से नक्सलवाद वहां पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज के उसमें बैरियर लगा दिया, आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे। तो डर भी एक चीज थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद के तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
1: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूंगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
0: हाँ, मैं जरूर बताता हूँ। थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए। नाम लेना चाहूँगा मैं उनका, हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर श्री सुमित जोशी
1: जी,
0: हमारे कमांडेंट सर परिचित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री वाई एस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफिस थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई। और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब। तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट, जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी, उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे, हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की, उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए। और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वाह, वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी। शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो झारखंड जैसे एरिया में, थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो। तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
0: बिल्कुल। आतंक का पर्याय थे ये नक्सली, ये नक्सलियों लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इंसास, इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे जबरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया, तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग। और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया। एसएसबी ने वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
0: बिल्कुल, ये हमारी जो टीम थी इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
1: जी,
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी इसके बाद जो है उनका भी कार्य शैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है तो एक कंपटीशन है, और एक पॉजिटिव कंपटीशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है।
1: और वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम कर रहे हैं आगे जाके।
0: बिल्कुल,
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी सीटीसी में जो ट्रेनिंग आप।
0: बिल्कुल, हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया, हमारे उसमें सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
1: जी।
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा।
1: तो मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो एसएसबी में, क्या खींच कर लाया आपको एसएस, कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं आपके अपने अंदाज में?
0: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहां से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है
1: जी।
0: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की जरूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
1: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकंड इन कमांड हैं एसएसबी के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने?
0: बिल्कुल,
1: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
0: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
1: जी,
0: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में, और
1: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती
0: है। बिल्कुल,
1: हमारे दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं शादी?
0: बिल्कुल, हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है, तो जब पाता लड़की का पाता आता है, मतलब पतड़ा जो आपको कहिए, तो वो आता है, तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और वो मिल जाता है तो उसके बाद शादी फिक्स हो जाती है। तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
1: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
0: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। हम मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा, और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
1: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं, तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है
0: जी,
1: मॉडर्न पढ़ाई है, और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का? या
0: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत छोटी हैं, तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है, बट मैंने जरूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं

0: या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं, तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल
1: जी
0: हो जाए।
1: आपकी SSB में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है।
0: बिल्कुल
1: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स।
0: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बनाने जा रही है। और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज़ के लिए। वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही
1: वाह
0: बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं, उनके सोचना समझना उनका तरीका बहुत अलग रहता है। जी
1: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
0: बिल्कुल
1: हूँ। पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व तो ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पर पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास
0: जी,
1: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: ओके।
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी,
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: मैंने मशीन खोली है।

0: देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज़ ऑन AIR ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और हैं, सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं CTC SSB श्रीनगर से हूँ, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ कि आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं, महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन अच्छा। लिख रहे हैं, आप पहचान गए होंगे
1: जी।
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहाँ से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर, यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
1: धन्यवाद है यश का।
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी।
0: अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूँ ललित सर का, सही कह रहे हैं सर
1: जी।
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा, एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी, जय हिंद बाबूलाल।
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है, एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन वेमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे,
1: बिल्कुल
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं,
1: बिल्कुल
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही मैंने जो देखा है कि दोनों ही चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है, पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं।
0: ओके,
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है, अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है, बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, और जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को, और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं।
0: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
0: बट सुझाव अच्छा है,
1: बहुत अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फ़र्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है, जो पुलिस की टैक्टिस है जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है, उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है, और हमारा जो पाठ्यक्रम है अब हमको एएनओ नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उन्हें जेएनके हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं, जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
0: ऑलराइट, टीपीटी सेल एफएचक्यू से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा है।
1: जी मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
0: ओके
1: जी,
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही एसएसबी में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है।
1: बिल्कुल।
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी।
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे कि अब आगे की जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में, मैं ये नहीं कह रहा कि एसएसपी सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है, और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग। और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके
0: जी,
1: उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पे आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख पाएंगे।
0: तो यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कम्प्लीटली, लोगों को लगता है कि यार आपने कम्प्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, एआई का जमाना आ गया, आप लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं एसएसबी में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट यह है कि एआई के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
0: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नजर तो जरूर रखते होंगे।
1: बिल्कुल नजर रखते होंगे और उन पे हम भी नजर रखते हैं, नज़र दोनों ही तरफ से रखी जा रही है, और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नज़र रखते हैं और उनके किसी भी मोमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी हुई है।
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि हम
1: भी तैयार हैं, बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं।
1: बिल्कुल।
0: सीटीसी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट भमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है।
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहाँ आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं, एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ, अच्छा लगेगा।
1: धन्यवाद।
0: ऑल राइट, 29th एसआईडी से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम जरूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं, हम सबकी तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं, और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य, इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय।
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूँ, कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं।

0: इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहां से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है, महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ।
0: अच्छा।
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ।
0: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं।
1: नहीं बस यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है।
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर
1: गुनगुना सकते हैं फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
0: राइट देन, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आशाम, और मैं हूं आपका हम सफर, आपका रेडियो साथी रोहित कुमार कुकरेती। उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुन रहे होंगे अपने परिवार के साथ आकाशवाणी रामपुर से इस कार्यक्रम आशाम को। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस अनमोल धरोहर की जो हमें बिना किसी कीमत के मिली है, लेकिन जिसकी कीमत पूरी दुनिया की दौलत से भी अधिक है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी की, जो कि एक अनमोल उपहार है हम सब के लिए। श्रोताओं, हर सुबह का सूर्योदय, हर नई सांस, हर मुस्कान और हर अनुभव हमें ये याद दिलाता है कि जीवन वास्तव में ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। ये उपहार हमें केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि कुछ अच्छा करने, सीखने, प्रेम बांटने और दूसरों के जीवन में खुशियां भरने के लिए मिला है। किसी ने बहुत खूब कहा है, जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। हर दिन एक नया अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का।

0: SBI फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में

जीवन में सुख और दुख, सफलता असफलता, ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है वही जीवन का सही अर्थ समझ पाता है। कहते हैं जिंदगी एक सुंदर गीत है जिसे हर दिल गुनगुनाता है, कभी खुशी की धुन बनती कभी दर्द भी सिखलाता है। जो हर पल को जीना सीख ले वही जीवन का सार समझता है, हर गिरकर फिर उठ जाने वाला जीत का अधिकार समझता है। अक्सर हम जीवन की कमियों पर ध्यान देते हैं और जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं, जबकि सच्ची खुशी उसमें है कि हम हर दिन के लिए ईश्वर के आभारी रहें। महात्मा गांधी ने खूब कहा था, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। जीवन हमें हर दिन एक खाली पन्ना देता है और उस पर क्या लिखना है ये हमारे हाथ में होता है। जीवन को बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह जीना चाहिए। जो बीत गया उसे स्वीकार करें, जो आने वाला है उसका स्वागत करें। कहते हैं जीवन है एक दीप सुनहरा जिसमें आशा का प्रकाश है, हर मुश्किल के बाद यहां नई सुबह का विश्वास है। हार मिले तो सीख समझो, जीत मिले तो विनम्र रहो, हर पल ईश्वर का उपहार है, बस इसे प्रेम से जीते रहो। तो श्रोताओं, जिंदगी का असली सौंदर्य बड़े घर बड़ी गाड़ी या बड़े पद में नहीं बल्कि छोटी छोटी खुशियों में छिपा है। परिवार के साथ समय बिताओ, दोस्तों के साथ हंसो मुस्कुराओ, माता पिता का आशीर्वाद लो और किसी जरूरतमंद की मदद करने का सुख ये तो अलग ही है।

तो श्रोताओं, ये पल जो अभी हमारे पास है वही सबसे कीमती है, इसीलिए हर दिन को विशेष बनाइए, हर रिश्ते को सहेजिए और हर अवसर का सम्मान कीजिए। जिंदगी एक अनमोल उपहार है।

ना जाने देना, हर पल में खुशियों की मोती प्रेम से उन्हें सजाने देना, मुस्कानों से भर दो दुनिया, उम्मीदों के दीप जलाओ, जब तक सांसों का संग मिले जीवन का उत्सव मनाओ। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि जीवन को शिकायतों में नहीं बल्कि कृतज्ञता और उत्साह के साथ जिएंगे, क्योंकि जिंदगी सचमुच एक अनमोल उपहार है। इसी सुंदर विचार के साथ मैं यानी रोहित कुमार कुकृति आपसे विदा लेता हूं कार्यक्रम आज शाम से। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत नगमे को।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं भारती
1: और आपका रेडियो साथी हर्ष।
0: दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, चेहरे पर मुस्कान होगी और उसी मुस्कान के साथ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे अपने पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी का। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आज की सवाल की ओर। हमारा आज का सवाल है, वर्ष 2025 में खोजा गया नया हड़प्पा स्थल रताड़िया ढेरी भारत के किस राज्य में स्थित है?
1: दोस्तों, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। हमारा आज का सवाल है, वर्ष 2025 में खोजा गया नया हड़प्पा स्थल रताड़िया ढेरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर और उसके आज की अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजना होगा अपना जवाब। सवाल का सही जवाब और सही जवाब देने वाले सभी श्रोता साथियों के नाम हम बताएंगे आपको प्रोग्राम के एंड में।
0: दोस्तों, साथ ही आज दिन है गुरुवार का और गुरुवार के दिन हमारा स्पेशल सेगमेंट फेसबुक लाइव लेकर आए हैं हम, जिसका टॉपिक रहने वाला है मानव जीवन में खेलों का अमूल्य योगदान और स्वास्थ्य लाभ। तो दोस्तों, जल्दी जाइए हमारे आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर और आज के कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए इस विषय पर अपने अपने विचार।
1: भारती, आज का दिन न केवल बच्चों से बल्कि हर उम्र के लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
0: बिल्कुल हर्ष, खेल न केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
1: बिल्कुल, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2024 में एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया।
0: दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि खेलना हर बच्चे का अधिकार है और स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक भी है।
1: दोस्तों, जब हम खेलते हैं तो केवल शरीर ही सक्रिय नहीं होता बल्कि हमारा मस्तिष्क भी बेहतर ढंग से कार्य करता है।
0: विशेषज्ञों का मानना है कि खेल बच्चों की शिक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल के माध्यम से बच्चे अनुशासन, सहयोग और निर्णय लेने जैसे जीवन कौशल सीखते हैं।
1: जब हम खेलते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन नामक रसायन निकलते हैं, जिन्हें फील गुड हार्मोन कहा जाता है। यह खुशी और सकारात्मकता बढ़ाने में मदद करते हैं।
0: यही कारण है कि नियमित खेल कूद तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक माना जाता है।
1: दोस्तों, हर साल इस वर्ष की थीम डिसाइड की जाती है। इस साल इस दिवस की थीम है प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड, अर्थात खेल को सुरक्षित रखें, बचपन को सुरक्षित रखें।
0: यह थीम हमें याद दिलाती है कि खेल न केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, क्योंकि खेलता हुआ बच्चा ही स्वस्थ, खुश और आत्मविश्वासी भविष्य की पहचान है।
1: दोस्तों, अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास।
2: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
4: वेलकम बैक साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
5: कुछ ख्वाबों की बात,
6: कुछ अपनों का साथ,
5: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
6: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
5: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
6: वाकई कुछ खास है आज,
5: कुछ खास है आज।

0: दोस्तों कुछ खास है आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिनका नाम सुनते ही देशभक्ति का जज्बा दिल में उमड़ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी, कवि और देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल जी, क्योंकि आज है उनकी जयंती।
1: राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून यानी आज ही के दिन 1897 को सहजानपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती देवी था। बचपन से ही वे तेजस्वी, स्वाभिमानी और देशभक्त विचारों वाले थे।
0: दोस्तों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल केवल एक महान व्यक्ति ही नहीं बल्कि वे उस क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक थे जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। उनका जीवन साहस, त्याग, राष्ट्र प्रेम और बलिदान की ऐसी मिसाल है जो आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है।
1: युवा अवस्था में उन्होंने हिंदी, उर्दू और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। वे साहित्य और कविता में भी विशेष रुचि रखते थे। बाद में उन्होंने बिस्मिल उपनाम से देशभक्ति की अनेक कविताएं लिखी।
0: उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। देश भर में स्वतंत्रता की अलख जग रही थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी भी

0: इस वातावरण से प्रभावित हुए और उन्होंने देश को आजाद कराने का संकल्प लिया। वे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े। उनका मानना था कि केवल भाषण ही नहीं बल्कि संगठित संघर्ष से ही देश को स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है।
1: दोस्तों, आपको बता दें कि राम प्रसाद बिस्मिल जी एक प्रतिभाशाली कवि थे। उनकी कविताएं युवा में जोश और उत्साह भर देती थी। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, आत्मबल और स्वतंत्रता की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। जेल में रहते हुए भी उन्होंने कई लेख और कविताएं लिखी।
0: दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम जिस घटना से सबसे अधिक जुड़ा है वह है काकोरी ट्रेन एक्शन। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार का खजाना ले जा रही ट्रेन को काकोरी स्टेशन के पास रोककर सरकारी धन अपने कब्जे में ले लिया। इस धन का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं था बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करना था।
1: इस योजना के प्रमुख सूत्रधार राम प्रसाद बिस्मिल थे। उनके साथ कई अन्य क्रांतिकारी भी शामिल थे। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने व्यापक अभियान चलाकर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना शुरू किया। अंततः राम प्रसाद बिस्मिल भी गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी कांड के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा सुनाई।
0: दोस्तों, 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी आयु मात्र 30 वर्ष थी। कहा जाता है कि फांसी के फंदे पर चढ़ते समय भी उनके चेहरे पर भय नहीं था बल्कि मातृभूमि के लिए बलिदान देने का गर्व था। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया कि देश सर्वोपरि है।
1: तो दोस्तों, उनका जीवन हमें बताता है कि सच्ची देशभक्ति वही है जो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे और समाज तथा राष्ट्र के विकास में योगदान दे।

0: कुछ ख्वाबों की बात,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
0: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
0: कुछ खास है आज।
2: दोस्तों चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: दोस्तों अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स की। दोस्तों सेगमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स में आज हम बात करने जा रहे हैं एक रोमांचक खेल की, जिसे देखकर ही दिल में एडवेंचर की लहर दौड़ जाती है और उस खेल का नाम है सर्फिंग।
1: दोस्तों जरा सोचिए, नीला समंदर, तेज हवाएं, ऊंची ऊंची लहरें और उन लहरों पर बैलेंस बनाकर दौड़ता हुआ एक इंसान, वाह कितना शानदार नजारा है ना। सर्फिंग सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि हिम्मत, आत्मविश्वास और प्रकृति के साथ तालमेल का प्रतीक है।
0: सर्फिंग में खिलाड़ी एक लंबे बोर्ड यानी सर्फ बोर्ड पर खड़े होकर समुद्र की लहरों पर राइड करते हैं। इस खेल में शरीर का बैलेंस, धैर्य और सही टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। कई बार लहरें इतनी तेज होती हैं कि अच्छे अच्छे लोग डर जाएं, लेकिन एक सच्चा सर्फर उन्हीं लहरों को अपनी ताकत बना लेता है।
1: दोस्तों सर्फिंग हमें जिंदगी का भी एक बड़ा सबक सिखाता है। जिंदगी में भी मुश्किलें लहरों की तरह आती हैं। अगर हम डर जाएं तो डूब सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस और बैलेंस बनाए रखें तो उन्हीं मुश्किलों पर जीत हासिल कर सकते हैं।
0: दोस्तों आज के समय में सर्फिंग पूरी दुनिया में बेहद लोकप्रिय स्पोर्ट बन चुका है। कई देशों में बड़े बड़े सर्फिंग कॉम्पिटिशन होते हैं। भारत में भी गोवा, केरला और तमिलनाडु जैसे समुद्री इलाकों में लोग सर्फिंग का खूब आनंद ले रहे हैं। धीरे धीरे युवाओं के बीच भी इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है।
1: और दोस्तों सर्फिंग करने वाले लोग सिर्फ एडवेंचर ही नहीं इंजॉय करते बल्कि वे नेचर के बहुत करीब भी महसूस करते हैं। समुद्र की लहरें, खुला आसमान और ठंडी हवाएं मन को एक अलग ही शांति देता है।
0: तो दोस्तों अगर जिंदगी में कभी आपको मौका मिले तो डरिए मत, नई चीजें सीखिए, चैलेंजेस को अपनाइए और जिंदगी की लहरों पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि असली मजा उसी में है जब हम डर को पीछे छोड़कर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं।
1: तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, पर उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट फेसबुक लाइव की ओर, जिसका आज का विषय है मानव जीवन में खेलों का अमूल्य योगदान और स्वास्थ्य लाभ। तो जानते हैं किस किस ने हमें इस विषय पर अपने अपने विचार दिए हैं।
1: हमसे पहले विचार साझा करते हैं अक्ष सक्सेना जी, जो लिखते हैं, खेल मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

0: नियमित रूप से खेल खेलने से शरीर स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान बना रहता है। खेल हृदय को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा मोटापा, तनाव और अनेक बीमारियों से बचाव करता है। इसके साथ ही खेल अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक सोच का विकास करता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के निर्माण में खेलों का योगदान अमूल्य है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में खेलों को अवश्य स्थान देना चाहिए।
1: इसी क्रम में हमें अगली कमेंट भेजी है लाल मोहम्मद अंसारी जी ने। वे कहते हैं, मानव जीवन में खेलों का बहुत बड़ा योगदान है। जिसने अपने जीवन में खेलों को बढ़ावा नहीं दिया, उसका जीवन अधूरा है। खेल को जीवन का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे जीवन में खेलों का योगदान नहीं होता, हमारे शरीर फिट नहीं रह सकता। तो मोबाइल को छोड़ें और जीवन में खेलों को बढ़ावा दें।
0: दोस्तों, इसी के साथ हमें अगला कमेंट लिखा है राजवीर सिंह यादव जी ने, और ये कहते हैं, मानव जीवन में खेलों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेल न सिर्फ हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि हमारे भीतर अनुशासन, एकाग्रता और विपरीत परिस्थितियों से जूझने का हौसला भी पैदा करते हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और खेल इसका सबसे सरल माध्यम है।
1: दोस्तों, कमेंट्स पढ़ने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। चलिए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों इसी क्रम में हमें अगली कमेंट भेजते हैं भाई रफत साहब। कहते हैं कि दोस्तों अगर खेल की बात करें तो खेल कोई भी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर हो गिल्ली डंडा, खेल हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। पेट संबंधित सारी बीमारियां और लीवर की बीमारियां जो होती हैं खेलों के माध्यम से भी ठीक हो सकती हैं। हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। समय समय पर हमें कोई भी खेल हो खेलना चाहिए, इससे हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है।
1: इसी क्रम में अगला कमेंट लिखा है एलेक्स गोयल जी ने और ये कहते हैं, मानव जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। खेल न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए भी आवश्यक है। नियमित रूप से खेल खेलने से शरीर स्वस्थ, सुदृढ़ और ऊर्जावान बना रहता है। यह हृदय को स्वस्थ रखने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। खेल तनाव, चिंता और अवसाद को कम करके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। इसके अतिरिक्त खेलों के माध्यम से अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना, सहयोग और आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास होता है। आज के व्यस्त और तकनीकी प्रधान जीवन में खेलों का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि वह लोगों को सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए खेल मानव जीवन के सर्वांगीण विकास और उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक अमूल्य योगदान है।
0: दोस्तों कमेंट का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, चलिए सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों अगली कमेंट हमें भेजी है गंगा सिंह रावत जी ने, जो कहते हैं मनुष्य के जीवन में खेलों का अत्यंत महत्व रहा है। वर्तमान समय में अनेक खेल गतिविधियां मौजूद हैं, लेकिन पहले समय में जब मनुष्य के पास साधन नहीं थे तब वह शारीरिक मेहनत करते थे, खेतों में काम करते थे, वजन उठाते थे, कुश्ती लड़ते थे और अपने शारीरिक रूप से फिट रहते थे। आज आधुनिक समय में जिसमें खेल कुछ हद तक कम हुए हैं, लेकिन फिर भी क्रिकेट, फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेल के अलावा बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज जैसे इंडोर गेम्स में भी बच्चे भाग लेते हैं। स्कूल के अलावा कई एकेडमी खुली हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये विचार थे गंगा सिंह रावत जी के।

0: साथियों, आपके विचार सुनकर हमारे श्रोता साथी सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो अब वक्त है प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव का और जानते हैं आज के हमारे सवाल का सही जवाब। हमारा आज का सवाल था, वर्ष 2025 में खोजा गया नया हड़प्पा स्थल रेतड़िया दी ढेरी भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसका सही जवाब है राजस्थान। और इस सवाल के सही जवाब देने वाले श्रोता साथी हैं आप सभी,
1: पुंजा जी नावकर, मोहम्मद रफीक पवार, अजीत कसाना, नंद कुमार ठाकुर, उत्तम सिंह, सुदर्शन साह, नारायण लाल साहू, दिनेश वर्मा, रियासत हुसैन सिद्दीकी, अशोक सिंह, धर्मेंद्र छिपा, जॉन डी कैस्ट्रो, नारायण प्रधान, राम कुमार रेवार, किशन सपकाल, नजमुल होडा, रवि कुमार, सोहन जोशी, फागुराम यादव, विनोद मुनत, लालगिरी गोस्वामी, सुरेश गगनेजा, उदय भानपाल, शाहरून नूर अंसारी, निसार सलमानी, सुनील पाठक, बलवंत कुमार वर्मा, आसिफ चौधरी, रामशरण मसरूर हसन, शाहजी बोटके, जाकिर मंसूरी, बब्बल मल्होत्रा, सिद्धार्थ गौंडाने, दीपेश वर्मा, राष्ट्रपाल गजभिये, संजय ढींगिया, जगदीश ठाकर, गुरमीत सिंह, मास्टर बिट्ठल सुरोशे, मोहम्मद यासीन, इरशाद अहमद, हीरामणि वर्मा, अरविंद कुमार, सुरेश जायसवाल, राम राधेश्याम पांडे, वी कमल, मोहम्मद यासीन अनजान, विजय भुवन प्रकाश, अनिल वी गोटके, मोहम्मद सईद अब्बासी, आमिर हुसैन, गंगा सिंह रावत, महाराजा कीर्तनपुरी गोस्वामी, हाजी गफ्फार खान, लाल मोहम्मद अंसारी, एम अफजल ताज, आकाश रस्तोगी, रवि रस्तोगी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मुजफ्फर अली खान, मोहम्मद जैद अली, हिम्मत सिंह, राजवीर सिंह यादव, बीपी गौतम, गजानन येले, भाई रफत साहब, धीरज भाई रवारी, प्रवीण चौहान, नीतीश कुमार देवगन, चौधरी राजवीर सिंह, दुर्गाराम साहू, मुकेश कश्यप। तो आप सभी थे वो श्रोता साथी जिन्होंने दिया है इस सवाल का सही जवाब। कार्यक्रम के अंत करने से पहले चलिए सुनवाते हैं आपको इस गीत को।

0: दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है, युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर। पिन संख्या है 244901। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। दोस्तों, इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई आवाज और एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो साथी भारती
1: और रेडियो साथी हर्ष को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी वह श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। कार्यक्रम में आपके साथ थे आपके युवा मित्र भारती और हर्ष। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है

0: श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C-295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
4: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
5: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
4: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
6: मम्मी मम्मी कहाँ हो? जरा एक ग्लास पानी तो पिला दो, आज तो थक गया स्कूल से आते आते।

0: अरे ये क्या शोर तो इतना मचा रहे थे और ये आधा गिलास पानी भी नहीं पिया। क्या करूं इस बचे हुए पानी का?
1: तो क्या हुआ मम्मी?
2: जितना पीना था पी लिया, बाकी फेंक दो। कौन से पैसे लगे हैं? पानी है, कोई सोना थोड़ी है।
0: पानी का मोल समझ मेरे बच्चे, अगर हम इसी तरह पानी बर्बाद करते रहे तो आने वाले समय में तरस जाएंगे एक बूंद पानी के लिए, और तब समझ आएगी पानी की कीमत।
3: जी हाँ, जल बचाएं और बचाएं अपने कल को। बूंद बूंद से भरती गागर, पानी का प्रयोग जरा संभल कर। पानी अर्थात जीवन, और संरक्षण अर्थात

0: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
1: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
0: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
1: आपातकाल में साथ निभाए,
0: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए।
1: 112
0: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
1: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
0: यदि चाहिए पुलिस सहायता
1: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
0: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
1: मिटाकर हर सस्पेंस को
0: डायल 112।
1: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
0: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
1: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
0: या फिर भेजें ईमेल alwaysuse112 इंडिया मोबाइल ऐप।
1: जब घेरे कोई भी आपदा,
0: तुरंत मिले सहायता,
1: डायल 112।
0: चिंता से पाएं छुटकारा,
1: पुष्पा झुकेगी नहीं,
2: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।
3: श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर, आपका अपना आकाशवाणी रामपुर। जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
4: प्लास्टिक चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
3: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
4: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
3: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
5: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष, हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
3: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
6: से नो टू प्लास्टिक।
7: सुनो ना।
8: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
8: तो रोका किसने है? हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
8: मुझसे।
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
8: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
8: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
8: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
7: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
9: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का दैनिक कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत में पहला गीत KK के स्वरों में, फिल्म गैंगस्टर से।

0: फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म जहर से। गायक कलाकार हैं श्रेया घोषाल।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: संध्या के 6:20 जैसे ही बजाते हैं भैया, वैसे ही भैया बहन को इंतजार रहता है कृषि जगत कार्यक्रम सुनन को। तो हाजिर हैं आज को कार्यक्रम कृषि जगत लेके आपकी बहन ममता
1: और आपके भैया हेमपाल।
0: स्वीकार करें हम दोनों की
1: राम राम। ममता बहन,
0: आपके
1: हाथ में तो आज बड़ी मोटी किताब है, क्या बात है आज?
0: भैया आज तो जो दिन है उसे याद करो, आज दिन है गुरुवार को, तो आज के दिन होता है हमारा कार्यक्रम कृषि पत्रिका खेत खलियान। तो आज के कृषि पत्रिका खेत खलियान में बात करें जो जो जुटाई के लाए हैं जानकारियाँ, वे कौन कौन सी हैं?
1: बिल्कुल साथियों, देखो आज जैसे कि बहन ने बताया कि आज गुरुवार माह को दूसरों है और इन दिनों जो हम कार्यक्रम में बदलाव करे गए हैं, दिन प्रतिदिन मैं आपको डेली बता रहे हैं कि कार्यक्रम में क्या क्या बदलाव करेगा, उसी के तहत आज दूसरे गुरुवार को कृषि पत्रिका खेत खलिहान इन दिनों हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज नींबू वर्गीय फसलों यानी पौधों की देखभाल पर चर्चा आपसे करेंगे। तो साथियों देखो, इन दिनों गर्मी को समय चल रहा है और ऐसी गर्मी में हमें अपने लिए, अपने बच्चन के लिए, अपने पशुओं के लिए सबको बचा कर रखना है, साथ ही साथ जो हमारी खेती है उसको भी बचा कर रखनी है, जो हमारी भूमि है उसको भी बचा कर रखनी है। तो अगर बात करें खेती में नींबू वर्गीय फसलों की, तो इसकी देखभाल कैसे करें, इस पर कुछ चर्चा करते हैं।
0: हाँ भैया, तो हमारे जो पहलो पन्ना है कृषि पत्रिका का, उस पर जो है अंकित है कि नींबू वर्गीय जो पौधे हैं उनकी देखभाल कैसे करें। तो जून को महीना नींबू वर्गीय जो पौधा है उनके लिए अत्यधिक गर्मी और जो आने वाला मौसम है मानसून, उसके बीच को संक्रमण काल है।
1: बिल्कुल बहन, देखो जो समय ऐसा होता है जहाँ अगर पानी ज़्यादा भर जाए तो अनेक तरीका के रोग उसमें लग जाते हैं, फंगस की बीमारी उसमें लग जाती है, साथ ही साथ अगर घास फूस उसमें पड़ो है उसके नीचे तो टहनी भी खराब हो जाती है, अगर कोई टहनी नीचे ज़मीन से चिपकी भी है तो, और अनेक तरह के कीट में पैदा ही जाते हैं और जो हमारे पौधा को ख़राब कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जहाँ भी हमारे नींबू वर्गीय पौधा है वहाँ पर हम कोई भी कूड़ा करकट गंदगी ना होने दें, साथ ही साथ अगर पानी वहाँ पर इकट्ठा होता है यानी जमा हो जाता है तो पानी निकासी की उचित व्यवस्था करें।
0: और हिम्पल भैया, एक बात और ध्यान रखनी है साफ सफाई की, समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई करते रहें, जो भी खरपतवार हैं उनको दूर करते रहें और सूखी शाखाएं हैं उनको हटाते रहें, और साथ ही जो नमी की बात करी आपने कि उसको ध्यान रखनी है, हमेशा गहराई से उसकी जड़न की जो है उनकी खुदाई करते रहें पास के चारों तरफ, जिससे जड़न में पानी पहुंचेगा और नमी बनी रहेगी।
1: बिल्कुल साथियों, इसके अलावा अपने खेतों को आप खेतन में जो भी पौधा है उनमें आप बर्मी कंपोस्ट या फिर देसी खाद या सिटी कंपोस्ट की कोई भी आप कंपोस्ट उसमें जरूर लगावें, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से होती रहे। अगर आप रसायन लगाना चाह रहे हैं तो NPK या DAP वगैरह आप उसमें लगावें, और साथ ही इस तरह से आप अपनी नींबू वर्गीय फसलों को ध्यान रखें।
0: तो हिमपाल भैया, अगलो पन्ना पलटते हैं और देखते हैं अगले पेज पर क्या है। अगले पेज पर भैया अंकित है, मृदा स्वास्थ्य उत्तम कैसे रखें इस पर भेंटवार्ता है। डॉक्टर राकेश तिवारी से बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया विक्रांत चौधरी। तो भैया बहनों सुन लेते हैं जा भेंट वार्ता।
2: किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत आज जिस विषय को लेकर हम आपके बीच में हैं वो है मृदा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, क्या कारण है कि मिट्टी की जांच समय रहते करवाते रहना चाहिए। इस विषय पर आज एक एक्सपर्ट के रूप में हमारे बीच आकाशवाणी के स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश तिवारी। आप KVK बदायूं से जुड़े हैं और एक एक्सपर्ट के रूप में आपका लंबा अनुभव है, आइए आपसे बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि मृदा स्वास्थ्य या मिट्टी की हेल्थ, इससे हमारे किसान भाई क्या समझे क्या जाने?
3: देखिए, मिट्टी का संबंध अगर आप देखें तो सीधे मनुष्य से भी है
2: जी,
3: क्योंकि अगर हमारी मिट्टी अस्वस्थ है तो उसके साथ साथ हमारा पर्यावरण भी अस्वस्थ रहेगा और मनुष्यों का स्वास्थ्य भी अस्वस्थ रहेगा। अब कई किसान भाई देखते हैं कि मिट्टी परीक्षण नहीं करा रहे हैं
2: जी,
3: और वो जो उर्वरकों का प्रयोग है अंधाधुंध कर रहे हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, और किसान भाइयों को ये भी कम से कम ये मालूम नहीं है कि हमें उन उर्वरकों का कब प्रयोग करना चाहिए
2: जी।
3: जिन लोगों ने मिट्टी परीक्षण नहीं कराया है, अगर वो मिट्टी परीक्षण करा के उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करें तो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और उसके साथ पर्यावरण भी ठीक होगा और फसल भी हमारी स्वस्थ होगी
2: जी।
3: तो संतुलित उर्वरक प्रयोग क्या है? संतुलित उर्वरक प्रयोग का एक फार्मूला है कि 4-2-1, अगर हम 4 किलो नाइट्रोजन दे रहे हैं तो हमें 2 किलो पोटास देना है और 1 किलो हमें पोटास देना है और 2 किलो हमें फास्फोरस देना है
2: जी, एनपीके 4:2:1 में हो,
3: 1 का होना चाहिए। अब अगर हम

0: मिट्टी परीक्षण के आधार पर, सबसे पहले किसान भाई कहते हैं सर मिट्टी का नमूना हम कैसे लें, तो सबसे पहले अगर हमारे किसान भाई मिट्टी का नमूना सही ढंग से लेते हैं तो उसका भी प्रभाव ज्यादा पड़ता है
1: जी।
0: अब मिट्टी का नमूना कैसे लें, या तो हम उसको खुरपी ले लें, उसको वी आकार का कट कर लें, उसके बाद हम उसको मिट्टी प्लास्टिक के उसमें टब में रख लें
1: जी।
0: लेकिन एक हमने जो विधि निकाली है वो है, एक आप कोई भी मोटा पाइप ले लीजिए
1: जी,
0: उसमें आप 6 इंच का निशान लगा दीजिए और उसको आप 10-15 जगह से मिट्टी में उसको गाड़ के प्लास्टिक के टब में रखना है
1: जी।
0: कई किसान भाई क्या करते हैं, मिट्टी का नमूना लेने के बाद लोहे की बाल्टी में या उसमें रख देते हैं, तो उसका वो जो नमूना है वो गलत हो जाता है
1: जी।
0: क्योंकि अगर लोहे की बाल्टी में ज्यादा समय तक रहेगा तो उसमें आयरन की मात्रा आ जाती है
1: जी।
0: तो इसीलिए उसको प्लास्टिक के टब में रखना चाहिए और उसके बाद जब वो मिट्टी का नमूना ले ले तो उसको प्लास्टिक के टब में उसको अच्छे हाथों से, मतलब उसमें कोई भी खाद हाथ से छिड़क के ना आया हो किसी खेत
1: जी, कोई गंदगी भी ना हो, कोई अन्य केमिकल उसमें ना मिल पाए
0: जी, तो उसके बाद उसको वो हाथ से मिलाए 3/4 खेत में डाल दे
1: जी,
0: फिर मिलाए फिर 3/4 खेत में डाल दे, जब 250 ग्राम मिट्टी रह जाए तो वो लैब में ले जाए और उसमें लैब में जब ले जाए तो उसमें अपना एक तो अपना नाम और खेत की पहचान
1: जी,
0: क्योंकि कई किसान भाइयों अपना खेत की अलग अलग पहचान रख देते हैं कि ये तालाब के किनारे वाला है, ये ट्यूबवेल के किनारे वाला है और कौन सी फसल ली थी और कौन सी फसल हमें लेनी है
1: जी,
0: ये उसमें इंकित कर दें। उसके बाद उनका जो आएगा उर्वरकों का जो हमें प्रयोग करना है उस विधि से प्रयोग करें
1: जी।
0: अब रह गई बात कि उर्वरकों का जो मिट्टी का स्वास्थ्य क्यों गिर रहा है, मिट्टी का स्वास्थ्य इसलिए गिर रहा है कि जो भी किसान भाई फसल ले रहे हैं वो अधिक खाद चाहने वाली है
1: जी।
0: और फसल चक्र किसान भाई अपना नहीं रहे हैं
1: जी।
0: अब मिट्टी में होता है एक तो पीएच होता है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है जिसको हम विद्युत चालकता भी बोलते हैं और जीवांश कार्बन होता है, इसके बाद नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, इन सब का भी समावेश धीरे धीरे हमारी मिट्टी में से खत्म हो गया
1: जी। डॉक्टर साहब, हम कई बार देखते हैं कि हमारे किसान साथियों के खेत कुछ इस प्रकार से भी होते हैं कि वो समतल नहीं है, या उसमें एक कोने में पानी भरा है, या एक तरफ जो है पानी बिल्कुल नहीं रुकता। क्या उस स्थिति में भी जो सॉयल हेल्थ जांचते हैं और अलग अलग जगह से नमूना लेते हैं उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा?
0: हाँ, अगर आपका खेत तो ऊंचा नीचा है, मतलब समतल नहीं है
1: जी,
0: तो या तो आप उसको समतल करके मिट्टी का नमूना ले लें, नहीं तो आप जहाँ पे असमतल है और जहाँ पे वो है वहां से भी आप असमतल को भी दो जगह से नमूना ले लें
1: जी,
0: और समतल वाला भी मिला लें, तो इससे भी हमारी नमूना ले सकते हैं
1: जी।
0: अब क्या है कि सबसे पहले होता है पीएच, जैसे हमारा मनुष्य का टेम्परेचर क्या है, अगर 98 है तो मनुष्य ठीक है
1: जी,
0: लेकिन मिट्टी का पीएच क्या है, 6.5 से 7.5 होना चाहिए
1: जी।
0: अब उसके ऊपर जा रहा है मतलब हमारी मिट्टी जो है ऊसर की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद हमारा आता है जीवांश कार्बन
1: जी,
0: जीवांश कार्बन 0.8 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें पूरे उत्तर प्रदेश का तो वो 0.1 और 0.2 चल रहा है
1: जी, कम चल रहा है,
0: बहुत कम चल रहा है
1: जी।
0: कहते हैं कि इस समय हमारी मिट्टी वेंटिलेटर पर है। अब वेंटिलेटर पर क्यों है, एक तो किसान भाइयों का फसल चक्र न अपनाना
1: जी,
0: दूसरा अधिक खाद चाहिए फसलों का समावेश
1: जी, जी, जी।
0: कुछ किसान भाई फसल अवशेष प्रबंधन नहीं करते, वो पत्तियों को जलाते भी हैं
1: जी।
0: तीसरा क्या है कि जो हमारा नाइट्रोजन है, अब गन्ने में अलग चाहिए
1: जी,
0: धान में अलग चाहिए, गेहूं में अलग चाहिए, लेकिन वो जो गन्ने में दे रहे हैं वही धान में भी दे दे रहे हैं, वही गेहूं में भी दे दे रहे हैं
1: जी।
0: पोटास का समावेश किसान बहुत कम कर रहा है। अब हमने कई किसान भाइयों से पूछा कि आप यूरिया क्यों देते हो
1: जी,
0: तो उनको ये भी नहीं मालूम यूरिया क्यों दे रहे हैं। तो यूरिया का अलग रोल है, फास्फोरस का अलग रोल है, और पोटास अगर किसान भाई दें तो जो ये रोग कीट प्रबंधन है इसमें बहुत सहायता मिलेगी
1: जी।
0: क्योंकि पोटास क्या है कि रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, और हमारा एक तरह से मिट्टी बैंक है, और जो गोबर की खाद है, जो सड़ी हुई खाद है, FYM है
1: जी,
0: इनको भी आप अगर देखें तो वो सड़क के किनारे गोबर इकट्ठा कर देते हैं, उसके बाद बरसात में उसमें से जो उसके मुख्य तत्व हैं
1: जी
0: वो निकल जाते हैं
1: जी, जी, जी।
0: उसके बाद किसान कहता है कि हमने 2-3 बुग्गी खाद डाल दी
1: जी, कोई असर नहीं दिखाई,
0: तो उसका कोई असर नहीं दिखाई पड़ता। तो किसान भाइयों को FYM भी गड्ढे में बनाना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर किसान भाई किसी भी फसल को ले रहा है
1: जी,
0: तो उसको भी इस हिसाब से ले कि उसमें जो स्टेट की रिकमेंडेशन है अगर उसका भी समावेश कर ले, मिट्टी परीक्षण नहीं करा रहा है
1: जी,
0: तो जो स्टेट की रिकमेंडेशन है उसके अनुसार भी अगर वो उर्वरक प्रयोग करे
1: जी,
0: तो भी हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होगा और हमारा जो फसल है वो भी स्वस्थ होगा
1: जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि जो मुख्य तत्व हैं, किसान भाई उनके बारे में तो फिर भी जानकारी रखते हैं, एनपीए को भले ही वो किसी भी मात्रा में करते हों कम या ज़्यादा उपयोग करते रहते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म तत्व है उनके बारे में अभी भी बहुत से किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती और फसलों के लाभ के लिए उतनी ही आवश्यकता है, इस बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को ज़रूर आप गाइड करें।
0: हाँ, तो देखिए किसान भाई, सबसे पहले तो उर्वरक आजकल नकली भी आ रहे हैं, यूरिया में कोई मिलावट नहीं आती
1: जी,
0: लेकिन जो डीएपी है हमारा उसमें मिलावट आती है। तो डीएपी को हम कैसे पहचाने कि असली है कि नकली है
1: जी?
0: तो डीएपी जहां से आप ले रहे हैं किसान भाई
1: जी,
0: वहीं पे आप जो डीएपी गिरी रहती है उसको आप जूते से रगड़िए
1: जी,
0: तो वो टूटेगा नहीं।
1: अच्छा,
0: और दूसरा क्या है, थोड़ा सा आप हाथ में लेके जो तम्बाकू वाला चूना होता है
1: जी,
0: उसको आप हाथ से रगड़िए तो उसमें पेशाब जैसी गंध आती है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो इसका मतलब हमारा डीएपी असली है
1: जी।
0: पोटास में भी मिलावट होती है, दो रंग का पोटास आता है, सफेद और लाल
1: जी।
0: सफेद में तो वो नमक मिला देते हैं कई लोग, और लाल वाले पिसा हुआ ईंट
1: जी।
0: तो आप पोटास को भी आप एक गिलास में ले लीजिए, उसको एक चम्मच पानी में डालिए
1: जी,
0: तो जो पोटास है वो तो तैरता रहेगा और जो मिलावट है वो नीचे बैठ जाएगी
1: जी।
0: तो इसका मतलब इसमें भी मिलावट है। अब आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जो पूछा
1: जी,
0: जितना भी हमारे जो प्रमुख पोषक तत्व है उससे ज्यादा हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी काम करते हैं
1: जी।
0: अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी किसी में भी कमी है तो फसलों में उत्पादन गिरना संभावित है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए जिंक है
1: जी,
0: अगर अभी धान बोया जाएगा तो जिंक का भी प्रयोग करना चाहिए। जिंक का क्या काम है कि धान में खैरा रोग नहीं आता। अब खैरा रोग की पहचान क्या है कि अगर आप किसान भाई खेत में जाएंगे तो पत्तियों पे लाल रंग का स्पॉट दिखाई पड़ेगा
1: जी जी।
0: तो अगर स्पॉट दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब हमारे पे जिंक की कमी है। अब आ गया सल्फर
1: जी।
0: सल्फर का क्या काम है कि एक तो हमारी मिट्टी को भी शोधित करता है ये
1: जी,
0: और दूसरा क्या है कि सल्फर जैसे तेल वाली फसल हो गई या हमारी गन्ने की फसल हो गई तो इसमें ये रस की मात्रा को बढ़ाता है
1: जी।
0: अब सल्फर की कैसे पहचान करें कि सल्फर कैसे कम है
1: जी?
0: तो जो पौधा जब निकलता है तो अगर नई पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इसका मतलब इसमें सल्फर की कमी है
1: जी।
0: अगर पुरानी पत्तियां पीली पड़ रही तो इसका मतलब नाइट्रोजन की कमी है। लेकिन किसान भाई क्या करता है, उसको पीली पत्ती पड़ी तो वो तुरंत यूरिया डालता है
1: जी।
0: तो एक उर्वरक दूसरे उर्वरक की पूर्ति नहीं कर सकता
1: जी जी जी।
0: तो इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी धीरे धीरे, अभी देखिए आयरन की कमी आने लगी, सल्फर की कमी आने लगी, जिंक की कमी आने लगी
1: जी।
0: अब आगे आगे बोरान की भी कहीं कहीं डिफिशिएंसी देखी जा रही है
1: जी।
0: तो इसलिए किसान भाइयों को एक तो अगर मिट्टी का स्वास्थ्य हमें रखना है सही तो एक तो गर्मियों में गहरी जुताई कर दें
1: जी।
0: गन्ने के साथ सह फसली खेती करें
1: जी।
0: और अगर सह फसली खेती करते हैं तो उससे भी हमारी मिट्टी का जीवांश कार्बन बढ़ेगा
1: बढ़ेगा,
0: क्योंकि जीवांश कार्बन ही मिट्टी का मेन स्रोत है
1: जी।
0: और जीवांश कार्बन ही पूरे में 1-2% चल रहा है। तो इसलिए सबसे पहले किसान भाइयों को जीवांश कार्बन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं
1: जी,
0: या तो सह फसली खेती करें, फसल अवशेष प्रबंधन करें और समुचित उर्वरकों का प्रयोग करें
1: जी। डॉक्टर साहब, मृदा स्वास्थ्य को लेकर सोयल हेल्थ कार्ड नाम से योजना चली, किसानों को उसका लाभ भी पहुंचा। हम देखते हैं कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या केवीकेएस भी अपने स्तर पर किसानों तक पहुंचते हैं और किसान भी स्वयं केवीकेएस तक पहुंचकर अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। और कौन कौन से ऐसे आयाम हैं, किस किस तरह से वो पहुंचें अपने नज़दीकी केंद्र पर कि मिट्टी की सफल जांच हो सके और सही रीडिंग उनको प्राप्त हो सके?
0: देखिए, मिट्टी का जांच हमारे अभी, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ बदायूं में भी चालू होने वाला है
1: जी।
0: कृषि विभाग में भी है, आपका इफ्को भी करता है
1: जी,
0: और आपके आपका एनएफएल करता है, और ये आपका ये बबराला में भी है जो आरा कंपनी है
1: जी। राज्य सरकार की लैब्स भी होती हैं।
0: राज्य सरकार की लैब भी होती हैं, आप वहाँ भी करा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, मैंने ये देखा है अगर उनको मिट्टी परीक्षण का कार्ड दिया गया
1: जी
0: मान लीजिए एक किसान का है और उसके बगल में उसके किसान भी ले गया
1: जी,
0: और जो वहां पे सॉयल सैंपल का रिजल्ट आया तो किसान भाई के मन में एक भ्रांतियां हैं कि ये फर्जी हो रहा है
1: जी।
0: कहता हूँ एक बार वो मृदा परीक्षण के आधार पे उर्वरकों का प्रयोग करें
1: जी,
0: उसको अगर लाभ नहीं मिलता है तब वो क्या कह सकते हैं, लेकिन पहले कहना। और दूसरी चीज क्या है
1: जी,
0: कि जो भी हम सॉयल टेस्टिंग कर रहे हैं तो सॉयल का नमूना लेना, प्रतिदिन नमूना बहुत जरूरी है, वो सही ढंग से होना चाहिए। और नमूना लेने में अगर किसान भाई गलती करते हैं तो नमूने का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ठीक ढंग से, और जीवांश कार्बन बढ़ना चाहिए, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करें। और अगर संतुलित प्रयोग करते हैं, जैसे आजकल हम लोगों ने एक निकाला है कि जैसे मान लीजिए गन्ने की खेती है
1: जी,
0: गन्ने की खेती में अगर वो बीच में जो जगह है अगर हम उसको मल्चिंग कर दें
1: जी,
0: मल्च कर दें
1: जी, जी,
0: तो जो केंचुआ एक हमारा है वो 24 घंटे काम करता है।
1: हाँ जी, हाँ
0: अगर
1: जी,
0: मल्चर पड़ा है तो क्या हुआ कि जो केंचुआ है वो 24 घंटे काम करेगा, जब 24 घंटे काम करेगा तो हमारी मिट्टी भुरभुरी होगी
1: जी,
0: दूसरा नमी बनी रहेगी
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तीसरा जब नमी बनी रहेगी तो वो जो हमने वो डाला है पुआल उवाल तो धीरे धीरे मिट्टी में वो गल जाएगा, तो उससे क्या एक तो हमें सिंचाई भी कम करनी पड़ेगी। अच्छा कई किसान भाई सिंचाई भी ऐसा करते हैं कि नमी बनी रहती है तब भी सिंचाई करते
1: जी,
0: हैं
1: जी,
0: उस पे भी उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है, उत्पादन कम होता है
1: जी,
0: तो सिंचाई को भी हमें ढंग से करना है। सिंचाई कब करनी है, जब हमें देखने हम खेत में जा रहे हैं तो अगर मिट्टी में हल्की हल्की दरार आ रही है तो इसका मतलब मिट्टी हमारी पानी मांग रही है
1: जी,
0: तो उसको उस हिसाब से जल वो दें कि जिससे ज्यादा पानी भी ना हो और हमारा पौधा उतना ग्रहण कर ले
1: जी। जी डॉक्टर साहब, हम जब फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि किसान भले ही उनके खेत में उर्वरकों की आवश्यकता नहीं है या पानी की आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे की देखा देखी भी वो कॉम्पिटिशन की भावना कहिए या कुछ इस तरह का कहिए, पानी का भी अत्यधिक उपयोग करते हैं उर्वरकों का भी, क्या इन चीजों का भी प्रभाव मिट्टी के स्वास्थ्य पर पड़ता है?
0: बिल्कुल, देखिए जैसे उर्वरक है, आपने मान लीजिए आपने नाइट्रोजन देना, यूरिया देना
1: जी,
0: तो यूरिया कब देना है, या तो कई किसान भाई सिंचाई के बाद देते हैं, कई किसान भाई पहले यूरिया देते थे उसके बाद पानी लगाते हैं
1: जी,
0: तो वो विधि गलत है जो यूरिया डालने के बाद पानी लगाते हैं
1: जी,
0: क्योंकि जब पानी आप दे रहे हैं जहां तक पानी लीच करेगा वहां तक यूरिया हमारा नाइट्रोजन जाएगी, कुछ वाष्प में उड़ जाएगी
1: जी,
0: पौधे को उतना नहीं मिल पाता, तो इसलिए जब खेत में पहले सिंचाई करते हैं, जब खेत में हल्का चिपचिपापन रहे
1: जी,
0: तब हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके बाद देखिए नैनो डीपी, नैनो यूरिया ये सब आ गए हैं
1: जी,
0: किसान भाइयों को इनको भी धीरे धीरे समावेश करें, उसके भी बहुत रिजल्ट बढ़िया है। जैसे दानेदार यूरिया हमारा 10-15 दिन काम करता है
1: जी,
0: नैनो यूरिया हमारा 20-25 दिन काम करता है
1: जी। डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि हमें विदेशों पर निर्भरता कम करनी है और फर्टिलाइजर्स का एक बड़ा हिस्सा हम एक्सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उसका सीधा असर हमारी खेती पर भी पड़ रहा है, पड़ता भी है, क्या कुछ ऐसे उपाय हैं, क्या कुछ ऐसे प्राकृतिक तरीके हैं, कुछ नियम हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जिनका किसान भाई ध्यान रखें ताकि वो इन चीज़ों पर निर्भरता कम करते हुए भी अपने खेत की मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखें?
0: हाँ देखिए क्या है कि अभी आप 1 जून से हम लोगों का एक भूमि बचाओ अभियान चल रहा है भारत सरकार का
1: जी,
0: जिसमें हमारे सारे वैज्ञानिक किसानों के खेत पे जा रहे हैं, तो एक तो जो हमारे नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी, अब तो हमारा जिंक भी आ गया है, तो इनका समावेश अधिक करें और नैनो डीएपी का समावेश करें, क्योंकि जो सब्सिडी है वो भारत सरकार पे ज्यादा बोझ डाल रही है
1: जी,
0: तो इसलिए। और दूसरा क्या है कि अगर मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरक प्रयोग करेंगे, जैसे भी होता है कि कई किसान भाई क्या करते हैं फसल बोने के बाद डीएपी का प्रयोग करते हैं
1: जी,
0: वो गलत है। बुआई के समय ही हमें डीएपी और पोटास देना है, और डीएपी पोटास को अगर हम लाइन में खून में डालें
1: जी,
0: तो हमारा उर्वरक कम होगा और उर्वरक की बचत होगी और मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक होगा
1: जी। तो किसान साथियों, ये थे डॉक्टर राकेश तिवारी जी, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मृदा स्वास्थ्य को लेकर हमारे बीच में थे, आप सभी के बीच में थे। उम्मीद है आपको डॉक्टर साहब द्वारा दी गई ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी और आप आज इस कार्यक्रम को सुनकर जो लाभ लेंगे उससे ज़रूर आपकी खेती में भी आपको लाभ पहुँचेगा। डॉक्टर साहब, आप समय निकालकर हमारे बीच स्टूडियोज़ में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक आपने पहुँचाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
2: भाई बहनों, मृदा स्वास्थ्य उत्तम कैसे रखें?

0: रखें। इस विषय पर अभी आपने विस्तार से जानो डॉक्टर राकेश तिवारी जी से, और आपसे बातचीत करके जानकारी दिलवा रहे थे हमारे भैया श्री विक्रांत चौधरी। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि जैसे कि इस समय अभियान चल रहा है मिट्टी बचाओ को, आप इस बातचीत को सुनकर आप मिट्टी बचाओ अभियान में भी भागीदारी ले सकेंगे। अब साथी देखो, समय कह रहो आगे मनोरंजन करान को।
1: हाँ भैया, अगले जो पन्ना है हमारो कृषि पत्रिका को, उस पर अंकित है लोकगीत को। लेकिन लोकगीत सुनने से पहले सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: मैं पैसे वाली बलम, कनक सक्सेना की आवाज़ में। भैया बहनों, अभी आपने जो लोकगीत सुनो, और अब हिमपाल भैया आगे पन्ना पलट रहे हैं, अपनी कृषि पत्रिका को देख रहे हैं। कहा है इस पन्ना पर, इस पन्ना पर है विशेषज्ञ की राय। तो आज हमारी कृषि पत्रिका खेत खलिहान में एडीओ एडी श्री भगवत शरण, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर जनपद रामपुर से हैं, उनसे बातचीत हुई है किसान भाइयों के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में।
1: हमारे जो किसान भैया हैं वो खेती बाड़ी में, उन्हें कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिनको आप दे रहे हैं?
2: ये मैम, एक तो ये हमारे धान का भी आया हुआ है हमारे यहाँ पे। धान में भी तीन तरह का है, एक पीआर 126, ये मोटे में है, और एक महीन में है 1692, और एक है हाइब्रिड धान। ठीक है
1: जी,
2: तो ये 50-50% के अनुदान पर है।
1: पात्र कौन से किसान है जो अनुदान
2: इसके लिए? मतलब उनके नाम पे जमीन होनी चाहिए, किसानों की जमीन को देख कर ही हम उन्हें अनुदान देंगे। जमीनों को अपना रिकॉर्ड लेके आएंगे, जैसे कि खतौनी, खसरा, ये ले आएंगे, हम देख लेते हैं। देखने के बाद जैसे मान लीजिए एक एकड़ जमीन है उनपे, तो हम उन्हें एक एकड़ का बीज दे देते हैं। जैसे 5 एकड़ जमीन है तो फिर 5 एकड़ का दे देते हैं, लेकिन 5 एकड़ से ज्यादा का नहीं देते हम।
1: मतलब इसकी कुल भूमि उनकी 5 एकड़ हो उनके नाम?
2: 5 एकड़ तक का हम अनुदान दे सकते हैं एक किसान को, 5 एकड़ से ज्यादा का नहीं दे सकते।
1: तो ये बहुत अच्छी योजना है हमारे जो किसान भैया और बहने हैं उनके लिए। बीज है, और दूसरी कौन सी योजना बताई आपने?
2: हमारे यहाँ पे कृषि रक्षा रसायन आए हुए हैं दो, एक तो आया है ट्राइकोडर्मा और दूसरा आया है ब्यूवेरिया बेसियाना।
1: तो इस पर भी अनुदान मिल रहा हो या कुछ सब्सिडी मिल रही है?
2: इससे है लगभग 75%। ये दोनों का ही मतलब ना, एक एक किलो के पैकेट आते हैं और ये 100 रुपए का मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ से हम इसको 75% अनुदान पे देते हैं, यानी के 25 रुपए का पड़ता है ये किसान को।
1: इसमें कोई रसायन लेने में कोई दिक्कत तो ना आ रही है किसान भैया और बहनन को इसमें?
2: ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी खतौनी ले आए, हम दिलवा देंगे उन्हें।
1: तो खतौनी लेकर आपके केंद्र पर पहुँचे और वहाँ से जो सुविधा मिल रही है उसका लाभ लें।
2: जी,
1: और कौन सी योजना बता रहे हैं आप?
2: इसके अलावा मैम एक चल रही है हमारे यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री की योजना। इसमें ये है कि सभी किसान, जो भी जिसके पास भले ही 1 एकड़ जमीन हो, 10 एकड़ हो, 20 एकड़ हो, सभी की हम फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं निःशुल्क। अगर वो बाहर से करवाएंगे, ठीक है, जनसेवा केंद्र या फिर कहीं भी, तो वो चार्ज लेते हैं किसान से, लेकिन हमारे यहाँ पे आएंगे वो तो हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसमें ये होता है फार्मर रजिस्ट्री में कि किसान की जितनी भी जमीनें हैं उनको सबको ऐड करके एक आईडी बना दी जाती है। ठीक है, उस आईडी से होता क्या है, जैसे कि किसान को खाद लेनी होती है तो वो आईडी दिखाएगा, और उन्हें जैसे मान लीजिए 2 एकड़ जमीन है उसपे, तो वो 2 एकड़ की खाद दे देंगे इस फार्मर रजिस्ट्री को देख के। और इसके अलावा एक योजना अब आने वाली है, इसी हफ्ते आएगी शायद, एक है हमारी ये सोलर पंप की।
1: इसमें कौन कौन से पात्र रहेंगे हमारे भैया बहन?
2: पात्र वही हैं जिनके नाम पे जमीन है। ठीक है, भले वो 1 एकड़ हो, 1 बीघा हो, 5 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, उनका खतौनी में नाम होना जरूरी है, हम उन्हीं को ही लाभ देंगे। तो ये जो सोलर पंप वाली योजना है, इसमें हमारे आते हैं 5 तरह के सोलर पंप।
1: 5 तरह के कौन कौन से हैं?
2: एक आता है 2 किलोवाट का मैम, और एक आता है 3 किलोवाट का, फिर 5 किलोवाट का, और 7.5 किलोवाट का, फिर 10 किलोवाट का।
1: जी, तो एडियो साहब हम ये जानना चाहेंगे, जो हमारे किसान भैया खेतों में भी तो पानी की जरूरत रहती है, उसके लिए भी तो लगाते हैं, तो उसमें कौन सा लगाते हैं?
2: तो वो यही है मैम, सोलर पंप। आपने देखा होगा कि खेतों में सोलर प्लेटें लगी रहती हैं और नीचे पानी चलता रहता है।
1: कि जो ऊर्जा बचाओ, ईंधन बचाओ, इसके लिए हमारी सरकार काफी प्रयास रहता है, और हमारे भैया बहन इसका लाभ भी ले रहे हैं, और बहुत अच्छी योजना चला रही है हमारी सरकार, और हमारे किसान भैया यहाँ तक पहुँच रहे हैं।
2: इस योजना में मैम ये है कि किसान केवल 40% देगा उस सोलर पंप का, और 60% गवर्नमेंट देगी।
1: आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो 60% सरकार देगी, तो पहले हमें पूरा भुगतान करने हुए वो सब्सिडी बाद में आएगी, या सब्सिडी काट के हमें भुगतान करने है?
2: हाँ, वो छूट काट के देना होगा किसान को, जैसे कि वो 40% ही देगा केवल पैसे, 60% नहीं देगा। वो हमारे विभाग से कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब किसान 40% ही पैसे देगा, सोलर पंप मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे यंत्र वाली योजना भी आने वाली है, यंत्रीकरण की, जिसमें कई तरह के यंत्र हैं, जैसे कि हैरो, ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, स्प्रे मशीन हो गई, और मल्चर, सुपर सीडर, ये सभी तरह के यंत्र जो भी कृषि में उपयोग होते हैं,
1: जी,
2: ये भी हमारे यहाँ से सब्सिडी में मिलते हैं किसानों को। ये कई तरह के वो यंत्र होते हैं, जैसे कि एक आते हैं हमारे पराली वाले, पराली वाले यंत्रों में हम 80% तक अनुदान देते हैं
1: जी जी,
2: और जो नॉर्मल यंत्र होते हैं उन पे देते हैं हम 50% अनुदान। इसमें करना क्या होता है मैम, जैसे एक स्प्रे मशीन मान लीजिए, स्प्रे मशीन बाजार से आती है 6,000 रुपए की
1: जी,
2: ठीक है, तो उस पे लगभग 3,000 के आसपास सब्सिडी मिल जाती है। और रोटावेटर होता है एक जो मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, ठीक है, उस पे वो आता है लगभग 1,00,000 रुपए के आसपास का, तो उसमें 50,000 रुपए सब्सिडी मिल जाती है।
1: तो यानी आपके यहाँ यंत्र, बीज, रसायन और जो आपका सोलर पंप है, इस पर अनुदान मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, बहुत अच्छी योजना है हमारी सरकार चला रही है, आप उन सबका लाभ दे रहे हैं। और
2: जी जी।
1: आज हमारी आपकी जो बातचीत हुई है, इसके लिए हमारे बहुत से भैया बहन सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
2: उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आजकल जो किसान लोग कर क्या रहे हैं कि खाद को, कि भाई उसने 2 कट्टे डाले हैं, मैं 3 कट्टे डालूंगा,
1: जी
2: कोई
1: जी।
2: कहता है मेरे पड़ोसी ने 3 डाले हैं तो मैं 4 कट्टे डालूंगा, इस तरह से वो कर क्या रहे हैं, एक तो खाद को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खेतों में, ये ना करें। ये मतलब उससे होता क्या है, एक तो हमारे शरीर में खाद जाती है और उससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। खाद का इस्तेमाल सही तरीके से करें, जैसे कि पहले वो मिट्टी की जांच कराएं, फिर उस तरह से जैसे उसमें रिकमेंडेशन होगी कि आपको इस ये वाली यूरिया इतने कट्टे डालनी है और DAP इतने कट्टे डालनी है, NPK इतने कट्टे डालनी है, तो उस रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से ही खाद डालें अपने खेत में। एक संदेश और मैम
1: जी जी,
2: कि अभी हमारे जो किसान हैं वो पेस्टिसाइड बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका थोड़ा कम इस्तेमाल करें, जैसे कि पढ़ना चाहिए 250 ml डाल रहे हैं वो, 700 ml, 800 ml ऐसे डालते हैं, तो उसका भी कम थोड़ा इस्तेमाल करें, ताकि जो पेस्टिसाइड हमारे अंदर आ रहा है वो तरह तरह की बीमारियां बढ़ा रहा है, और लीवर की, शुगर की, कैंसर, ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब इन पे थोड़ी बंदिश लगे, हम ये चाहते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी है आज आपने और अपना समय दिया है हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: श्री भगवत शरण, ADU AD, कृषि विभाग, बिलासपुर, जलरामपुर से हमारी बहन ममता ने बात करी, काका बातचीत करी, वो अभी आपने सुनी। साथियों, इन्होंने बताई कि किस तरह से हम किन किन योजनाओं का लाभ दे रहे हैं और फार्मर रजिस्ट्री के क्या लाभ हैं, और जो यूरिया की किल्लत हो रही है उस पर जो पाबंदी लगाई है फार्मर रजिस्ट्री की, क्यों लगाई है, इन तमाम बातों की जानकारी दी। साथियों, हमें उम्मीद है आपको पसंद आई हुई। अब साथियों देखो, कृषि पत्र का खेत खलिहान में आगे देखते हैं क्या है। तो साथियों, इसमें आगे है कृषि समाचार। तो साथियों, हम बता दें आपको कि केरल में मानसून की दस्तक ही चुकी है, और विशेषज्ञों की माने तो इस बार बारिश को स्तर आसमान रह सकता है, कहीं पर बहुत कम बारिश हुई, कहीं पर बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है। और इस सप्ताह की अगर बात करें तो इस सप्ताह वर्षा, आंधी और तेज हवाएं आने की संभावना बनी रही। और साथियों, देश के 197 जिलों में हमारी सरकार ने हाई अलर्ट कृषि संकट घोषित कर दो है।
0: और इसके अलावा हमारी जो प्रदेश सरकार है, खरीफ फसलों की कीट रोगों की रोकथाम को देखते हुए स्प्रे पंप, पेट्रोल, बैटरी चलित और हस्तचलित जो यंत्र हैं उनमें स्प्रे के 50% अनुदान देने हैं और फैसला करो है देन को, और अन्य कृषि यंत्र हैं उन पर 50% से 80% तक योगदान देने की जो है व्यवस्था करी गई है।
3: बिल्कुल बहन, जाके अलावा अगर बात करें किसान साथियों, एक हमारी सरकार ने और निर्णय लिया कि राजस्व संहिता 2006 धारा 24 के अंतर्गत की सीमा विवाद को निपटारा किस प्रकार से करे जाने हैं, यानी गांव में देखी जाता है कि भूमि की जो सीमा है, मेड़ है, बाउंड्री है, उससे संबंधित अनेक तरह के वाद विवाद आए दिन होते रहते हैं। तो सरकार ने इसी को लेकर बैठक करी है कि खातोदारों के बीच जो विवादों को किस तरह से निपटाओ जाए, और इसीलिए राज्य संहिता 2006 धारा 24 सीमा विवाद जो धारा लगाई है, और इसके अंतर्गत कोई भी किसान साथी अगर पड़ोसी से या फिर किसी से मेड़ से या फिर बाउंड्री से परेशान हैं, आए दिन लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो आप उप जिला अधिकारी यानी SDM के समक्ष धारा 124 के अंतर्गत जो भी दस्तावेज उसमें लगते हैं उसकी जानकारी लेकर अगर आप आवेदन दे देंगे तो उसको निस्तारण जांच के उपरांत 3 माह के अंतर्गत होना जरूरी कर दो है।
0: और किसान भाई, और राशन की जो सीमा है उसको भी 1 लाख से बढ़ा के 2,50,000 कर दो।
3: बिल्कुल साथियों, देखो जो तो हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छो निर्णय लो है कि 2.5 लाख रुपए सीमा कर दी है, और जब से 2.5 लाख रुपए सीमा करी है तब से हमारे जो किसान साथियों की आय 1 लाख से ज़्यादा ही, उनमें खुशी की लहर जाग गई है।
0: और इन दिनों देश के कई क्षेत्र में खेत बचाओ अभियान चलाओ जा रहा है, इससे

0: जो हमारी भूमि है उसको सुधार हो रहा हुआ है, संतुलित उर्वरक है उनको प्रयोग बढ़ावा जा रहा हुआ है और टिकाऊ खेती की ओर बढ़ावा मिल रहा हुआ है।
1: और साथियों देखो, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और काफ़ी पड़ रही है, तो ऐसी गर्मी में आप इन दिनों बुवाई, सिंचाई और कीटनाशक का बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें।
0: तो
1: अब
0: हेमपाल भैया आगे बात करते हैं, जो अगले पेज पर है वो है बाजार भाव, जो कि हमें रामपुर मंडी से मिलो है। बात करें लहसुन की, तो 3,900 रुपया प्रति कुंतल से 4,000 रुपया प्रति कुंतल रहने की संभावना है।
1: गेहूं को जो मूल है वो 2585 रुपया है, और कहीं पर जो लोकल मंडी है उनमें 2700 रुपया के आसपास भी है। वैसे जो सरकार द्वारा MSP है वो 2585 रुपये की ही है।
0: इसी तरह से धान की बात करें तो 2150 रुपया प्रति कुंतल और अधिकतम मूल्य जो है वो 2,369 रुपया प्रति कुंतल तय करो गए है, और चावल जो है वो 4,000 रुपया प्रति कुंतल है।
1: और साथियों हरी मिर्च 10 जून को 1500 रुपया प्रति कुंतल बिकी।
0: और लाल मिर्च 9,100 रुपया प्रति कुंतल से 9,500 रुपया प्रति कुंतल रही, और सरसों काली 5,420 रुपया से 5,500 रुपया अधिकतम मूल रहो इसको।
1: और साथियों मेंथा की अगर बात करें, या मेंथा 1,10,000 रुपया से लेकर 2,29,000 रुपया तक बिको।
0: इसी तरह से बात करें कुछ फल हैं हमारे पास खरबूजा की, तो 1,400 रुपया प्रति कुंटल से 1,600 रुपया प्रति कुंटल बिको। केला 2,450 रुपया प्रति कुंटल से 2,550 रुपया प्रति कुंटल को भाव रहो, और सेब को 6,050 रुपया से 6,150 रुपया प्रति कुंटल को भाव रहो।
1: तो
0: और
1: साथियों देखो, ये कुछ बातें जैसे सब्जी वाली फसलन की, धान की, गेहूं की, जो बाजार मूल्य यानी मंडी को मूल, रामपुर की मंडी को रहो, वो हमने आपको बताओ। अब बहन देखो, समय कह रहो कि विदा लो, उससे पहले कुछ किसान साथी इनके लिए अपने कार्यक्रम को आज तो पत्तो तो बता दो।
0: हाँ भैया, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 2,44,901।
1: भाई बहनों देखो, आप हमें इसी पते पर पत्रों के माध्यम से लिख भेजें कि हमारा कार्यक्रम कैसे लोगों, या फिर भैया कोई कमी रही हो तो भी आप हमें इसी पते पर लिखें, और भैया कोई सुझाव देने हो तो भी आप हमें ज़रूर बतावें। हम आपके पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए अपने भैया हेमपाल,
0: और अपनी बहन ममता को दें अनुमति।
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत एक वार्ता। विषय है राम प्रसाद बिस्मिल और उनकी सरफरोशी की तमन्ना। पर उससे पहले एक जरूरी संदेश।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
2: माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है।
3: पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 में हुआ था, जबकि 19 दिसंबर 1927 को वह वीरगति को प्राप्त हुए। वह भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक जाबाज सिपाही थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 30 वर्ष की कम उम्र में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल रहे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को बिस्मिल, राम, अज्ञात उपनामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म

अपने लेख और कविताएं लिखते थे। बिस्मिल ने सन 1916 में 19 साल की उम्र में सरफरोशी की तमन्ना को अपना लिया था। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई किताबें लिखीं और खुद ही उन्हें प्रकाशित किया। इन किताबों को बेचकर जो पैसा मिला उससे उन्होंने हथियार खरीदे और उन हथियारों का इस्तेमाल अंग्रेजों का विरोध करने के लिए किया। उन्होंने 11 किताबें अपने जीवन में प्रकाशित कीं, जिनमें से अधिकतर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जब्त कर ली गईं। बिस्मिल को आगरा व अवध की लखनऊ सेंट्रल जेल की 11 नंबर बैरक में कैद किया गया था। इसी जेल में उनके दल के अन्य साथियों को एक साथ रखकर सभी पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने का मुकदमा चलाया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले उत्तर भारत की एक प्रमुख क्रांतिकारी पार्टी थी, जिसका गठन हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के जुल्म से आज़ाद कराने के मकसद से उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा सन 1924 में कानपुर में किया गया था। 11 जून 1897 शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर के खिरनीबाग मोहल्ले में जन्मे राम प्रसाद अपने पिता मुरलीधर और माता मूलमती की दूसरी संतान थे। उनसे पूर्व एक पुत्र पैदा होते ही मर चुका था। मुरलीधर के कुल 9 संतानें हुईं, जिनमें 5 बेटियां 4 बेटे थे। बाल्यकाल से ही रामप्रसाद का मन खेलने में ज्यादा और पढ़ने में कम लगता था। लगभग 14 साल की उम्र में रामप्रसाद ने उपन्यास आदि पढ़ना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर रामप्रसाद उर्दू के प्रेम रस से परिपूर्ण उपन्यासों व गजलों की पुस्तकें पढ़ने के आदि हो गए थे। रामप्रसाद ने उर्दू मिडिल की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाने के चलते अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। सन 1914 में भाई परमानंद की फांसी की खबर सुनकर रामप्रसाद ने ब्रिटिश हुकूमत को खत्म करने की कसम खाई। 1916 में एक पुस्तक छपकर आ चुकी थी, कुछ नवयुवक उनसे जुड़ चुके थे। एक संगठन उन्होंने पंडित गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में मातृवेदी के नाम से खुद खड़ा कर लिया था। इस संगठन की ओर से एक विज्ञापन और एक प्रतिज्ञा भी प्रकाशित की गई। दिसंबर 1918 में दिल्ली के लाल किले के सामने हुए कांग्रेस अधिवेशन में इस संगठन के नवयुवकों ने चिल्ला चिल्लाकर जैसे ही पुस्तकें बेचना शुरू किया तो पुलिस ने छापा मार दिया, लेकिन बिस्मिल की सूझबूझ से सभी पुस्तकें बच गईं। पंडित गेंदालाल दीक्षित को देशभक्ति का जुनून सवार हुआ तो उन्होंने शिवाजी समिति के नाम से एक संस्था बना ली और हथियार इकट्ठा करने शुरू कर दिए। आगरा में हथियार लाते हुए पकड़े गए, किले में कैद थे, वहां से पुलिस को चकमा देकर रफू चक्कर हो गए। बिस्मिल की मातृवेदी संस्था का विलय शिवाजी समिति में करने के बाद दोनों ने मिलकर कई काम किए। एक बार दोबारा पकड़े गए, पुलिस पीछे पड़ी थी, भाग कर दिल्ली चले गए जहाँ उनका अंत हुआ। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में पंडित गेंदालाल का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। मैनपुरी षड्यंत्र में शाहजहांपुर से 6 युवक शामिल हुए थे, जिनका नेता रामप्रसाद बिस्मिल थे, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आए, वह वहां से फरार हो गए। नवंबर 1919 को मजिस्ट्रेट ने मैनपुरी षड्यंत्र का फैसला सुनाया। जिन जिन को सजाएं हुई उनमें मुकंदीलाल के अलावा सभी को वर्ष 1920 में आम माफी के ऐलान में छोड़ दिया गया। बिस्मिल पूरे 2 साल तक छिपे रहे। उनके दल के कुछ साथियों ने शाहजहांपुर जाकर यह अफवाह फैला दी कि भाई रामप्रसाद तो पुलिस की गोली से मारे गए, जबकि सच्चाई यह थी कि वे पुलिस मुठभेड़ के दौरान यमुना में छलांग लगाकर पानी के अंदर ही अंदर तैरते हुए मीलों दूर आगे जाकर नदी से बाहर निकले। रामप्रसाद बिस्मिल ने यहाँ के एक छोटे से गांव रामपुर जागीर में शरण ली और कई महीने यहाँ के निर्जन जंगलों में घूमते हुए गांव के गुजरों की गाय भैंसे चराई। इसका बड़ा ही रोचक वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा स्वदेश प्रेम पलायन अवस्था में किया है। यहीं रहकर उन्होंने अपना क्रांतिकारी उपन्यास बोल्शेविकों की करतूत लिखा। यह उपन्यास मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखित पुस्तक निहिलिस्ट रहस्य का हिंदी अनुवाद है। यमुना किनारे की जमीन उन दिनों पुलिस से बचने के लिए सुरक्षित समझी जाती थी। वर्तमान समय में ये गांव चूंकि ग्रेटर नोएडा के बीटा वन सेक्टर के अंतर्गत आता है, अतः उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर जागीर गांव के क्षेत्र में आने वाली वन विभाग की आरक्षित भूमि पर उनकी स्मृति में अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उद्यान विकसित कर दिया है। बिस्मिल की एक विशेषता यह भी थी कि वे किसी भी स्थान पर अधिक दिनों तक नहीं ठहरते थे। कुछ दिन रामपुर जागीर में रहकर अपनी सगी बहन शास्त्री देवी के गांव कोसमा जिला मैनपुरी में भी रहे। कोसमा से चलकर बाह पहुंचे।
कुछ दिन बाद बाहम में रहे, फिर वहां से पिनहट आगरा होते हुए ग्वालियर रियासत स्थित अपने दादा के गांव बरबई जिला मुरैना मध्य प्रदेश चले गए। उन्होंने वहां किसान के भेष में रहकर कुछ दिनों खेतीबाड़ी की। पलायन अवस्था में रहते हुए उन्होंने 1918 में प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक द ग्रैंड मदर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन

0: किचन का हिंदी अनुवाद किया। उनके सभी साथियों को ये पुस्तक बहुत पसंद आई। इस पुस्तक का नाम उन्होंने कैथराइन रखा था। इतना ही नहीं, बिस्मिल ने सुशील माला सीरीज से कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की थीं। इनमें मन की लहर नामक कविताओं का संग्रह, कैथराइन या स्वाधीनता की देवी, कैथराइन ब्रशकोवस्की की संक्षिप्त जीवनी, स्वदेशी रंग और बोल्शेविकों की करतूत नामक उपन्यास प्रमुख थे। शाहजहांपुर में उनके घर पर 7 अगस्त 1925 को हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में निर्णय लेकर योजना बनी और 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल की अगुवाई में कुल 10 लोग, जिनमें अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, शचीन्द्र नाथ बख्शी, मनमत नाथ गुप्त, मुकंदीलाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल गुप्त तथा बनवारी लाल शामिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती क्रांतिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। पुलिस ने काकोरी कांड के संबंध में जानकारी देने व षड्यंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाने के लिए इनाम की घोषणा के इश्तिहार सभी प्रमुख स्थानों पर लगा दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि पुलिस को घटनास्थल पर मिली चादर में लगे धोबी के निशान से इस बात का पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर के ही किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर मालूम हुआ कि चादर बनारसी लाल की है। बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने सारा भेद प्राप्त कर लिया। यह भी पता चल गया कि 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से उसकी पार्टी के कौन कौन लोग शहर से बाहर गए थे और वे कब कब वापस आए। जब खुफिया तौर से इस बात की पुष्टि हो गई कि राम प्रसाद बिस्मिल, जो एसोसिएशन के लीडर थे, उस दिन शहर में नहीं थे, तो 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अप्रैल 1927 को विशेष सेशन जज ए हैमिल्टन ने 115 पेज के निर्णय में प्रत्येक क्रांतिकारी पर लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए लिखा कि यह कोई साधारण ट्रेन डकैती नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की एक सोची समझी साजिश है। हालांकि इनमें से कोई भी अभियुक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस योजना में शामिल नहीं हुआ, परंतु चूंकि किसी ने भी ना तो अपने किए पर कोई पश्चाताप किया और ना ही भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से स्वयं को अलग रखने का वचन दिया है, अतः जो भी सजा दी गई है सोच समझ कर दी गई है। काकोरी कांड का मुकदमा लखनऊ में चल रहा था। पंडित जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील के साथ उर्दू के शायर भी थे। उन्होंने अभियुक्तों के लिए मुलजिमान की जगह मुलाजिम शब्द बोल दिया। फिर क्या था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने तपाक से उन पर फप्ती कसी। मुलाजिम, हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है। अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। 16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय पूरा करके जेल से बाहर भिजवा दिया। 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6:30 पर गोरखपुर की जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता। विषय था राम प्रसाद बिस्मिल और उनकी सरफरोशी की तमन्ना। कार्यक्रम हम तक पहुंचा रहे थे शनु खान। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की।

अब से कुछ देर यानी 7:31 पर श्रोता सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत गजलें कलाकार संजीव पराश्रय के स्वरों में। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल श्रोताओं तक पहुंचेगा 8:00। कार्यक्रम सबरस के अंतर्गत श्रोता सुन सकेंगे लोकगीत कलाकार धर्मपाल सिंह और रागनी के स्वरों में आज रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:00 आप सुन सकेंगे नाटक यथार्थ लेखक सुरेश ठाकुर और प्रस्तुति असीम सक्सेना की होगी। अनुरोध पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन सकेंगे रात्रि 10:30 पर।

0: भी आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशान में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।
2: और अब जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। कल प्रातः 6:05 पर श्रोता सुन सकेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। प्रातः 6:25 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा, शीर्षक गांधी विचार की प्रासंगिकता। कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश आप तक पहुंचाएंगे कल प्रातः 6:35 पर, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगी जानकारी नशीली दवाओं का स्वास्थ्य पर प्रभाव शीर्षक पर।

कार्यक्रम अमृत कलश आप सुन सकेंगे प्रातः 7 बजे। अमृत कलश से पहले प्रातः 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान।

0: फिल्म संगीत का एंटरटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे आप तक पहुंचाएंगे कल प्रातः 7:31 पर। कल सुबह आप सुनेंगे प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत राजेंद्र प्रसाद के बारे में। उर्दू प्रोग्राम आप तक पहुंचाएंगे 9:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल के कुछ कार्यक्रमों की।
1: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
2: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
1: लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
2: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
3: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
4: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
5: से नो टू प्लास्टिक।
0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 हुए हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
3: बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और इसमें नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास की थीम पर केंद्रित बैठक में मानव विकास, सुशासन और जन भागीदारी को विकास की धुरी बनाकर विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने पर सार्थक विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल नई दिल्ली में आयोजित एनडीए के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
4: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
2: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
5: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं है, ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है, कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य, ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12 करोड़ 58 लाख हो गई है। मतदाता वृद्धि के मामले में बलिया प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। यहां 1,60,376 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। आयोग ने पहली बार सभी मतदाताओं के लिए स्टेट वोटर नंबर जारी किया है। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। लखनऊ स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने की प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राज कुमार मित्तल ने बताया कि छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।
7: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है उसमें PG एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है CUT के माध्यम से, कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हमारा हेल्पलाइन भी नंबर दिया हुआ है और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं उनके लिए non-CUT का भी प्रावधान किया हुआ है।
6: अयोध्या में आज होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर DG होमगार्ड DK ठाकुर ने बताया कि जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
8: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया उन्होंने दो बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ टाइप सुझाव दिया जाए, ईपीएफ टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है। इन दोनों प्रस्तावों पर हम लोग आगे काम करेंगे और शासन स्तर से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इसको जल्दी संपन्न कराएंगे।
6: प्रदेश के कई जनपदों में कल से आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। शामली और महाराजगंज में देर रात तेज हवा के साथ शुरू हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। जौनपुर, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में भी सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पश्चिमी जनपदों में तेज हवाओं के साथ बिजली और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गजलें कलाकार संजीव पराशरे के सुरों में।

सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत गजलें, कलाकार संजीव पराशरी के स्वरों में। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल।

कार्यक्रम गीत गाथाचल सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी रोहित कुमार कुकृति का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सुन रहे होंगे आकाशवाणी से आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीत गाथाचल।

जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित कुमार प्रथमेश, सर्वद प्रणाली कुमारी सानवी कल्पना देशमुख। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी। इसी गीत को राजस्थान रटलाई जिले से सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने, हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से श्रोता हैं मनभावन नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, श्रीमती फुनदी बाई बागरी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाणकर रहे, श्रीमती सरिता गुहाणकर, प्रिंस एकांश गुहाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गुहाणकर, सिद्धांत गुहाणकर, लाडला टुकटुक गुहाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली और शैलेश गुहाणकर, सुमित कुमारी ध्वनि, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमारे श्रोता हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया, जो इसी गीत को सुनना चाहते हैं। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू हंसमुखलाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और परिवार के सभी सदस्य। नगारिया अखिल डिस्ट्रिक्ट रामपुर से इसी गीत को सुना चाहा है अथर तौफीक ने। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गज भैये, राधिका गज भैये, बीबी अनुष्का और तन्मय गज भैये। रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन, उमा, संजय, दीपक और कमल। खंडवा से राधिका, अनीता, सपना और राकेश ताई। जेल रोड रायगढ़ से निशा, डोमीन, उमा, जानवी। चंद्रनगर सहारनपुर से देवशंकर यादव, प्रभारानी, सुरेश और नरेंद्र यादव। तो लीजिए आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पे फिल्म गुरु से हरिहरन और अलका याग्निक के स्वरों में ये खूबसूरत सा नगमा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का अगला गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की स्वरों में फिल्म पार्टनर से। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान आज अंसारी और शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी और फातमा नाज, चमर पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम डॉक्टर आदिबा, डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुना चाहते हैं कबीर देव जलोटिया, सरगुजा मेन पार्ट से प्रभा डोमेन प्रमिला आशा निशा और पूरा डोमेन परिवार, तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू मेरा देवी गंगा देवी और मिश्री देवी साहू, इसी गीत को जिला पीलीभीत के ग्राम ढकिया केसरपुर बांसखेड़ा से सुना चाहते हैं आप सभी एके राजपूत अनिल राजपूत भगवान दास मदन लाल भाई रवि कुमार नवनीत वर्मा खुशी वर्मा संतोषी प्रिया और देवराज और साथ में इनकी छोटी सी गुड़िया चंचल कुमारी, बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा काजल मीरा सोनाली और अनामिका शर्मा, जसपुर उत्तराखंड से हमारे श्रोता हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम रिया जिरफाखत मोहम्मद रेहान समरीन परवीन और माहिना नूर, मनकारा मंदिर बीडीए खालौनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से अनुरोध करता है बिनी सिंह सागर पन्नीलाल सागर आशीष कुमार अमर सिंह हितेश उर्फ बंटी राजेश कुमार वर्मा रूबी भारती एकता दिव्या रचना भारती ओमती खनक शगुन सारांश अदिति वर्मा आयांश प्रथम सिंह और शिवांश, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही शमशुल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा शाहिनी तूबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज से जीशान वारसी इमरान रेहान करूला मुरादाबाद से अयुब खान एरम गुड़िया और शुएब खान, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर, गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण दिल स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनूर गुरलाल और अविराज सिंह, करणवीर हाउस भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से श्रोता है प्रेम सिंह जौड़ा मंजीत कौर करणवीर दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमो एकम दमन और अभिजोत, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजदा रानी और हिना कौसर। तो लीजिए आप सभी श्रोताओं के पसंद का ये गीत जो कि है सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वरों में फिल्म पार्टनर से, आइए सुनते हैं।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत कथा छल, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गीत कौन सा है जो हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं। अगला गीत है कुमार सानू के स्वरों में फिल्म प्यार तो होना ही था से, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव महिमा और हर्ष आहूजा, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इश्तेहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से इसी गीत को सुनना चाहा है श्री सुधाकर जादे ने, डॉक्टर प्रशांत कुमार संचित, प्रथमेश देशमुख, सर्वद देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी और कल्पना देशमुख, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से अनुरोध करता है गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर। फाइव स्टार रेडियो श्रोता संघ जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत और इनके मित्र सुरेश चौरसिया फुरखवाबादी, भाटापारा दतरंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती महाराष्ट्र से सईद भाई, सुफियान, अनस, आयशा, सैफ, अल्फिया सदफ, गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नागर, अंजू, मोहित, लकी, तानिया, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और नमिता आहूजा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से फरमाइश करता है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, कबनूर कोलापुर महाराष्ट्र से रेवण भाविष्ठे, अनीता और राहुल भाविष्ठे, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंजा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी, इरफान खान, राजद्वारा कोठी अफसर आला से रूमा खान, बॉबी खान, मदिहा खान, सुभान खान, शबनम बासी, गुलफशा, जीनत अमान और शमा परवीन। लीजिए आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर सुनते हैं फिल्म प्यार तो होना ही था से कुमार सानू की सुरों में गीत।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म सलामी इश्क से। गायक कलाकार है कैलाश खेर और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। बेरड़ी से राजेश सोनी कंचन, गायत्री डोमने, वैष्णवी चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सबासेरे, लदावली मुरादाबाद के हमारे श्रोता हैं अजीत खसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य खसाना, कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय शाहपुरकर, अमित अशोक, मधुकर सिकंदर, अमर, कमल मनिक, अर्चना रीमा अनीता और नेहा समुद्रे, मास्टर राधेश्याम शाक्या कासगंज से। इसी गीत को नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से सुनना चाहा है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मण, देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी, दिशा

वड़िंगखेड़ा महाराष्ट्र से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। नूर महल मैसोल सीतामढ़ी बिहार से नुसरत जहानाज जो कि एक शिक्षिका है, तलत जहानाज, फरज जहां, रिफत, नुजहत, साजिया शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्रोता हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मौनाद भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। अनारकली बाजार जर जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोदपुरी। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर, बीबी आरोही, इशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। बिहारी कॉलोनी महासमुद से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा, जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन सोनावली और कालिया बेलदार। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। तो लीजिए आप सबके अनुरोध पर कैलाश खेर के सुरों में आइए सुनते हैं फिल्म सलाम इश्क से ये गीत।

श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आपको आपका अपना कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला कौन सा गीत है जिसकी फरमाइश अंत तक पहुंची है। अगला गीत है राहत फतेह अली खां के सुरों में, फिल्म का नाम है इश्कियां। और इस गीत को सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने, चांदनी चौक सांगली महाराष्ट्र से ज्योति अजीत चौहान, लता राजाराम चौहान, सक्षम शैक्षणिक चौहान, छठिया पोखर डुमराव से फातिमा वली बेलदार, डब्लू वली आसमा वली बेलदार और सोना वली बेलदार, बिहार भवन दिल्ली से सैफुद्दीन वली कुटरिया वल्ला वली, जेलरोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा, धर्मजीत फातिमा कौर, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शुभ नायक और समस्त परिवारगण, सरगुजा मेन पार्ट से रेशम सोनम, अकरम, आसफा, फातिमा और वसीम, जेल रोड झांसी से फखरुद्दीन अंसारी, फर्जी वली फर्जू और फर्जुद्दीन, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, साइना निवान, सौरव और मैंडी शर्मा, कोल्हापुर महाराष्ट्र से बवन चौगले, बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मैक मुणत, चेतन नहाटा, दिशा मोहल्ला बरादरी, महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी, साथ में राजद्वारा मीठा कुमार रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभय, रिया और आरुष। तो लीजिए आप सभी के अनुरोध पे आइए सुनते हैं फिल्म इश्कियां से राहत फतेह अली खां के सुरों में ये गीत।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं, बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बजाय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है

0: भारत में वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
1: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक अच्छा मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार

0: कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरतेहाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलफ हो गईं। उसने अमरीका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एस्टिका में पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल और इकतसादी चैलेंजों का सामना है, भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफालत के तईं मुल्क के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत को उजागर किया और दुनिया की बेहतरीन अमल आवरियों, बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि अब जबकि भारत विकसित भारत के तसव्वुर की ताबीर की हुसूलियाबी की जानिब पेशरफ्त कर रहा है, मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वजीर आजम ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इसके ताल्लुक से बरामदात के लिए मौजू हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया, जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शनाख्त कायम कर रहा है, और रियासतों को तरगीब दी कि वो इस तरक्की से रूनुमा होने वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वजा करें। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी ने आज कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की गरज से बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली

में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोख के मौजू पर तबादला ख्याल में तमाम 28 रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। इसमें तालीम, सेहत, देखभाल और रोजगार जैसे कलीदी शोबों का अहाता किया गया। जनाब लहरी ने कहा कि नीति आयोग ने वज़राए आला के बामकसद नजरियात और उनकी मुतालिका रियासतों में किए जा रहे काम से इस्तिफादा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने इस मीटिंग से तफसीली खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि एक बेहतर तालीम याफ्ता और हुनरमंद आबादी भारत की तरक्की के लिए लाजमी है। मगरबी एशिया के बहरान से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब लहरी ने कहा कि वजारत खारजा सूरत हाल को मुनासिब तरीके से हैंडल कर रही है, जबकि अफरादी कुव्वत की तरक्की पर मरकूज तवज्जो में कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि तबादला ख्याल के दौरान शमसी तवानाई, जोहरी तवानाई और मैनुफैक्चरिंग पर भी खास तौर पर तवज्जो दी गई। नीति आयोग के रुकन राजीव गौबा ने कहा कि तबादला ख्याल में एक और कलीदी शोबा मंसूबा बंद शहरकारी था। उन्होंने वादे किया कि नीति आयोग मुल्क में शहरी हुक्मरानी की काया पलट की गरज से एक एजेंडा तैयार करने के सिलसिले में मुख्तलिफ वजारतों के साथ काम कर रहा है। मरकज और आसाम और नागालैंड की हुकूमतों के दरमियान आज एक सह फरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए ताकि आसाम नागालैंड सरहद पर खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार की सहूलियात शुरू की जा सकें। इस माहदे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के वजीर आला निफियो रिव्यो की मौजूदगी में नई दिल्ली में दस्तखत किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने इस माहदे को एक तारीखी कदम करार दिया जो तआवुन पर मबनी वफाकियत और कौमी मफाद के जज्बे का मजहर है। उन्होंने कहा कि इस कदम से खित्ते में तेल और गैस की तलाश को खातिर खा फरोग मिलेगा और इस तरह भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी को इस्तेहकाम मिलेगा और दरामदाद पर इन्हिसार में कमी आएगी। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि इससे शुमाल मशरक में अमन और इस्तेहकाम में भी बेहतरी आएगी, इससे सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए साजगार हालात पैदा होंगे। भारत ने आज अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया और ओमान के साहिल के करीब पालाउक झंडे के हामिल टैंकर एमटी सेटबेलो पर हुए हमले के सिलसिले में सख्त एहतजाज दर्ज कराया। इस हमले में तीन भारतीय बाशिंदों की जानें तलब हुई हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने खित्ते में जहाजरानी पर जारी हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया और कहा कि इसका ताल्लुक जारी तनाजे से है। उन्होंने इस तरह के वाकयात पर फौरन रोक लगाने पर जोर दिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बहाल करने की गरज से मुजाकर और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया। खलीजी डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी असीम आर महाजन ने कहा कि हुकूमत मगरबी एशिया की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है और भारतीय मिशनों से 24 घंटे हेल्पलाइन चलाई जा रही हैं और ये मिशन मकामी हुक्काम के साथ तालमेल कायम किए हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एमटी मैरीवैक्स पर सवार अमले के सभी 24 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है और उनके जल्द ही भारत वापस आने की उम्मीद है। इस जहाज को इस माह की 8 तारीख को ओमान के साहिल के नजदीक निशाना बनाया गया था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी रास्तों की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने कहा कि एमटी सेटबेलो से बहिफाजत निकाले गए अमले के 21 भारतीय अफराद महफूज हैं, जबकि हलाक होने वाले तीन मल्लाहों के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि एमटी जलवीर पर सवार अमले के सभी 22 भारतीय अफराद महफूज हैं और उन्हें बहिफाजत निकालने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि कीमियावी खाद और ईंधन की सप्लाई मुस्तहकम रहेगी, इसका खातिर खाद अखीरा दस्तियाब है और मुल्क की रिफाइनरीज अपनी ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश के साथ काम कर रही हैं। शहरियों से जोर देकर कहा जाता है कि वो घबराहट में खरीदारी से गुरेज करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 14 तारीख से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां वो G7 समिट में शरीक होंगे। आज से पहले नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि यह इंतहाई समर आवर और वसी तर मामलात पर मुश्तमिल दौरा होगा। उन्होंने मजीद बताया कि इस दौरे में फ्रांस के तीन मकामात नाइस, एवियान और पेरिस शामिल हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने बताया कि इस दौरे से वजीर आजम को G7 समिट में शरीक होने वाले आलमी लीडरों के साथ भारत नीज आलमी जुनूब के लिए अहमियत के हामिल मामलात पर तबादला ख्याल का मौका मिलेगा।
حکومت نے ایتھنول ملے پیٹرول کی کئی قسموں پر ایکسائز

0: सुन रहे थे कार्यक्रम सब रस में, लोकगीत धर्मपाल सिंह और रागिनी के सुर में। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है नाटक जिसका शीर्षक है यथार्थ। लेखक है सुरेश ठाकुर, प्रस्तुति असीम सक्सेना की है।
1: प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद से रिटायर हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं नरोत्तम जी को। एक वर्ष पूर्व हुए पत्नी के देहावसान से उन्हें गहरा आघात पहुंचा, जिस कारण वे आंशिक पक्षाघात का शिकार भी हो गए। वे अपने बड़े बेटे मुकेश के साथ रहते हैं, जो देहात के ही एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक है। मुकेश का बेटा गोलू नगर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 6 का छात्र है। मुकेश की पत्नी मीता एक हाउसवाइफ हैं। मुकेश का छोटा भाई मनीष दूर एक महानगर पालिका में जूनियर इंजीनियर है। 70 वर्ष की अवस्था और पक्षाघात, दोनों ने मिलकर नरोत्तम जी की दैनिक व्यक्तिगत कार्यों के प्रति आत्मनिर्भरता तक को काफी कुछ छीन लिया है और वे मुकेश और उसकी पत्नी मीता पर निर्भर हो गए हैं। धीरे धीरे मुकेश और विशेषकर मीता को नरोत्तम जी की सेवा बोझ लगने लगती है। अब आगे
2: मम्मी जी देखो नानी जी का फोन आ रहा है। हेलो नानी जी, कैसी हो आप?
3: अच्छा गोलू, अरे मेरा तो बुढ़ापा है, तू बता कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई?
2: ठीक चल रही है। आप आने वाली थी, आई नहीं।
3: अरे कहाँ बेटा, तबीयत ही ठीक नहीं रहती, लेकिन जल्दी आऊंगी मैं।
2: नानी जी मेरी साइकिल लाना मत भूलना आप, बर्थडे पर प्रॉमिस किया था ना आपने।
3: अरे नहीं भूलूंगी, जरूर दिलाऊंगी तुझे।
4: किसका फोन है? मम्मी का?
2: हाँ लो, नानी जी का फोन है।
4: नमस्ते मम्मी।
3: खुश रहो, कई दिनों से फोन नहीं आया तुम्हारा, मैंने सोचा हाल चाल ले लूं।
4: क्या करें मम्मी, टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन पापा के चक्कर में ही निकल जाता है। और फिर आप तो जानती ही हो, जब से उन्हें पैरालिसिस हुआ है उनका लैट्रिन पेशाब भी बिस्तर पर ही हो रहा है।
3: हाँ बेटा, बड़े नसीब वाले हैं तेरे ससुर जिन्हें तेरी सेवा मिल रही है। यहाँ तो हमारी बहू रानी एक गिलास पानी भी नहीं देना चाहती हमें।

0: बेटा ठीक है, देख ले।
1: ओफो, एक घड़ी को चैन नहीं है मुझको। अब क्या हुआ आपको, ये इधर क्यों लड़क गए आप? अभी तो ठीक से लेटाल के गई हूँ मैं।
2: पेशाब के लिए उठने की कोशिश कर रहा था मैं।
1: अभी एक घंटे पहले तो पेशाब करा के गए हैं गोलू के पापा। कितनी बार जाओगे पेशाब? मना करती हूँ, कम पानी पिया करो। आप मानो तब ना। चलो सीधे होकर लेटो।
2: अरे
1: ऐसे नहीं, ऐसे
2: धीरे बेटा, दुख रहा है।
1: हाँ हाँ, मेरे तो छूने भर से दुखता है आपको। अरे ये क्या किया आपने, तो बिस्तर पे ही कर दी पेशाब। हे भगवान, मैं क्या करूं आपका? आप पड़े रहो ऐसे ही, मेरे बस का नहीं कुछ भी।
3: मैं चेंज कर दूं मम्मी?
1: पागल हो गया क्या? कितनी बार कहा है कि इस कमरे में मत आया कर, खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं बीमार आदमी के कमरे में। चल निकल यहाँ से, तेरे पापा आके चेंज कर देंगे शाम को। चल, और भी कितने काम पड़े हैं मुझको।
3: दादाजी दादाजी, ये टॉवल लगा लीजिए नीचे, गीला नहीं लगेगा।
2: अरे अरे पगले, कितना ख्याल रखता है तू मेरा। चल लगा दे लगा दे।
3: थोड़ा उधर करवट लो आप। लग गया,
2: अब ठीक है।
3: दादाजी चॉकलेट खाओगे आप?
2: चॉकलेट? अब नहीं बेटा, तुम खाओ।
3: नहीं, थोड़ी सी ले लो आप, मुंह खोलो। और दो?
2: नहीं नहीं, बहुत है। अच्छा अब तू अपने कमरे में जा, तेरी माँ देखेगी तो गुस्सा करेगी, जा।
3: मम्मी जी सो रही हैं दादाजी।
1: मम्मी सो नहीं रही हैं, जाग रही हैं। तुझे एक बार की कही हुई बात समझ नहीं आती है? चल यहाँ से। और आप, गोलू तो ना समझ है, लेकिन आप तो समझदार है ना पापा जी, आप मना नहीं कर सकते क्या?
2: तुम ठीक कहती हो बहू, मना कर दूंगा मैं।
1: ये मुंह में क्या है आपके?
2: कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं।
1: कुछ नहीं है, खिला गया होगा कुछ उल्टा सीधा। अब अगर कोई चीज नुकसान करे तो मुझसे मत कहना, बस।
3: पापा जी आ गए।
4: मम्मी कहाँ है?
3: मम्मी जी रसोई में।
1: आती हूँ मैं। हाँ बोलो।
4: ये पापा की दवाइयाँ।
1: इस बार तो ढेर सारी दवाइयाँ लेके आए हैं आप।
4: तनख्वाह मिली तो मैंने सोचा पूरे महीने की ही ले लेते हैं, कौन बार बार जाएगा।
1: बहुत पैसों की आई होगी ना?
4: हाँ, लेकिन लानी तो थी ना। ये कार्ड कैसा है?
1: अरे हाँ, रविंद्र देकर गया था, मुखिया जी का लड़का। मंजली की शादी है, गाजियाबाद जाकर कर रहे हैं, कह रहा था सबको चलना है।
3: मैं भी जाऊंगा पापा जी।
4: लेकिन पापा?
1: पापा का तो सारा रोना ही है, हिल नहीं सकते हम इस घर से।
4: गोलू और तुम चली जाना, मैं रह जाऊंगा।
1: अरे अपने भाई मनीष से बोलो ना, कुछ दिन वो भी रखे पापा को अपने पास, उनके भी तो बाप है आखिर, सारा ठेका हमारा ही तो नहीं है।
4: अरे वो दोनों मियां बीबी नौकरी करते हैं, अपना बच्चा तक तो प्ले स्कूल में छोड़ के जाते हैं, कैसे रख लेंगे वो?
1: तुम कहना क्या चाहते हो, इनके जीते जी हमें इस कैद से छुटकारा मिलने वाला नहीं?
4: तो क्या करूं मैं, जीते जी मार दूं उनको?
1: मार देने की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ सोचना तो पड़ेगा ना, ऐसे कब तक चलेगा।

0: जिंदा रहना है तो खाना तो पड़ेगा ही।
1: देखो गुस्सा ना करो, हालात को समझो। तुम और गोरू चले जाना शादी में, मैं ही रह जाऊंगा। 2 दिन की बात ही तो है।
0: मेरे गले की चेन

0: पता है किस हाल में है ये? ऐसी पहन के थोड़ी ही जाऊंगी वहां सबके बीच अपनी बेइज्जती कराने। कितनी बार कहा है आपसे, लेकिन आप तो
1: नई खरीदनी होगी।
0: और नहीं तो क्या?
1: गोलू बता रहा था नानी का फोन आया था।
0: हाँ आया था। तो
1: नहीं नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा था।
0: अब बात को घुमाओ फिराओ मत, सीधी तरह बताओ चेन दिलानी है या नहीं।
1: हाँ कितने की आएगी?
0: बटेसर लाला के दुकान पर बात की थी, कह रहे थे कि हल्की से हल्की भी 10,000 की आ जाएगी।
1: 10,000? भाई देखो ये तो बहुत ज्यादा हो गया मीता।
0: मैं क्या कह रही थी, वो पापा के खाते में अभी तो काफी पैसा होगा, उनसे ही ले लो ना।
1: कितनी बार तो ले चुके हैं उनसे, संकोच होता है बार बार मांगने में।
0: अच्छा, और ये 2 साल से जो हम बिस्तर पर ही उनकी सारी सेवा कर रहे हैं, वो उसकी भी कोई कीमत लगेगी कि नहीं? देवरानी जी 2-4 दिन को भी आती हैं तो बस मेहमान बनकर, लेकिन पापा फिर भी मनीष के लिए ही मरे जाते हैं। शहर में प्लॉट खरीदने के लिए पूरे 2 लाख दिए थे उन्हें, हमें क्या दिया उसके बदले? ये मोटरसाइकिल जरूर दिला दी थी आपको।
1: पापा जी कहते हैं अपनी सारी पेंशन भी तो तुम ही सब पर खर्च करता हूँ मैं।
0: करते थे तब करते थे, अब तो साल 2 साल से मैं देख रही हूँ कि उनकी पेंशन कम बढ़ती उन्हीं के इलाज पर ही खर्च हो रही है।
1: इस बार इस पुरानी चेन से ही काम चला लो मीता, अगली साल नई बनवा दूंगा।
0: क्या करें, जज है ही नहीं हमारे हाथ में, कितना भी कर दो भलाई फिर भी नहीं मिलती।
1: चलो चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो रही है। लो पापा जी ये दबा लो।
2: आज तो बहुत गोलियां रख दी तूने।
1: 2 गोलियां बढ़ाई हैं डॉक्टर साहब ने, बाकी सब पुरानी हैं। लो मुंह में रखो। हाँ ये रहा पानी। अरे इस पे तो थोड़ा सा है, चलो अभी का काम चल जाएगा।
2: ठीक है, हो गया। आप थोड़ा सा भी पानी नहीं रहता मेरे पास, पूरा दिन प्यासा रहता हूँ, गला खुश्क हो जाता है।
1: मैं पानी की एक बोतल लाकर रख दूंगा आपके पास।
2: ठीक है रख देना।
1: वो पापा जी कुछ पैसे चाहिए थे पापा जी।
2: पैसे? अभी 4 रोज पहले तो निकाले थे तूने।
1: हाँ हाँ लेकिन वो
2: आमदनी के हिसाब से खर्चा ठीक होता है बेटा, अभी तो मेरी पेंशन का सहारा है थोड़ा बहुत, कल को मैं नहीं रहूंगा तो।
1: आपकी पेंशन का कोई सहारा नहीं है पापा, आपके इलाज भर पूरा पड़ता है बस। अगर आपकी बीमारी का झाड़ नहीं होता तो शहर में नौकरी कर रहा होता मैं, दुगनी पगार मिलती यहाँ के मुकाबले मुझे।
2: अरे अरे तुम नाराज क्यों होता है, ये ले जा किताब ले ले और निकालना। अरे 20-30 हजार पड़े होंगे उसमें, इसलिए रख छोड़े हैं कि कल को मेरे क्रियाक्रम के टाइम किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े तुम लोगों को।
0: हाँ हाँ पहले आपके इलाज की पूर्ति तो पड़ जाए पापा जी, क्रियाक्रम तो बाद की बात है, और फिर कौन सी बहुत बड़ी जीएनआर करनी है आपके क्रियाक्रम की जो लाखों खर्च हो जाएगा, हमारी सेवा की तो कोई गिनती ही नहीं होती कहीं।
1: सुनो पानी की एक बोतल भी रख देना पापा के पास।
0: हाँ ताकि ये दिन भर पानी पीते रहें और बिस्तर गीला करते रहें।
1: अरे डॉक्टर ने बोला है ना खूब पानी पिलाने को। देखो मीता तुम्हें तो पता है ना,
0: गीले कपड़े डॉक्टर को नहीं धोने पड़ते, मुझे धोने पड़ते हैं, समझे? गोलू गोलू चलो नाश्ता करो, और हाँ सुनो पापा को भी बुलाओ अपने।
3: मम्मी पापा नहीं पापा जी।
0: हाँ हाँ सुन लिया, पापा जी अंग्रेज का बच्चा।
3: पापा जी पापा जी।
1: हाँ हाँ आ गया मैं, आ गया आ गया आ गया। हाँ चल जल्दी कर नाश्ता नहीं तो देर हो जाएगी।
3: पापा जी आप हमें शहर पढ़ने क्यों भेजते हैं, अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? आपके साथ चला जाऊं, आपके साथ आ जाऊं।
1: हमारा स्कूल देहात का है बेटा, उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं है।
3: लेकिन आप तो अच्छा पढ़ाते हैं पापा।
1: अरे हम भी अच्छा नहीं पढ़ाते बेटा, बस कोर्स पूरा कराते हैं।
3: क्यों पापा जी?
1: क्योंकि हमें पैसा कम मिलता है।
3: पैसा कम क्यों मिलता है?
1: तुम अभी नहीं समझोगे छोटे।

0: हो, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फीस का मोटा पैसा मैनेजमेंट अपनी जेब में रख लेता है और हम टीचर्स को बस वही 5-7 हज़ार पकड़ा देता है।
1: इसमें बच्चों की क्या गलती है पापा जी?
0: बच्चों की कोई गलती नहीं है, वो तो पूरी फीस देते हैं।
1: फिर तो आपको अच्छा पढ़ाना चाहिए ना पापा जी।
0: तू तो कभी कभी दिमाग की हिला देता है यार गोलू। सुना तुमने अमिता?
2: हाँ हाँ सुन रही हूँ, एकदम बड़ों जैसी बातें करता है कभी कभी।
0: तू सच कह रहा है गोलू, मुझे पूरे मन से पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या करें बेटा, मैनेजमेंट का गुस्सा बच्चों पर उतर जाता है। ओवर टाइम काम लेना, फालतू काम लेना, छुट्टी नहीं देना, टाइम पे सैलरी नहीं देना, देना भी तो बहुत कम। ये सब बातें हैं जिसकी वजह से सारे टीचर फ्रस्ट्रेट रहते हैं और इसका गुस्सा निकलता है बेचारे निर्दोष बच्चों पर। तू ठीक कहता है पुत्र, तू ठीक कहता है।
2: हाँ हाँ अब तुम दोनों बाप बेटे निकलो भी, नहीं तो देर हो जाएगी।
0: अरे बातों बातों में टाइम का ख्याल ही नहीं रहा। अबे गोलू चल उठ, जल्दी चल, नहीं तो बस निकल जाएगी तेरी।
1: ओके पापा जी, आई एम रेडी।
0: चल चल।
2: ये चाय लो पापा, लो पकड़ो, और ये बिस्किट भी।
3: अरे बहुत गर्म है ये तो।
2: नहीं गर्म है, फूक मार मार के पी लो धीरे धीरे।
3: बहू टाइम क्या हो रहा है?
2: टाइम का क्या करना है आपको? 6 बज रहे हैं।
3: मुकेश नहीं आया अभी?
2: हाँ नहीं आए अभी तक, लेट ही हो जाते हैं वो, पर आज कुछ ज्यादा ही हो गया। आप चाय पी लो ठीक से, और हाँ बिस्तर पे मत गिरा लेना, बड़ी मुश्किल से जाता है चाय का दाग। लो आ गए गोलू के पापा, मैं चलती हूँ। गोलू गोलू।
1: हाँ मम्मी जी।
2: बाहर देख जरा, पापा आ गए।
1: पापा नहीं, पापा जी बोला करो आप।
2: हाँ हाँ सुन लिया, पापा जी। ये अभी से कान काटता है मेरे, बड़ा होकर राम जाने क्या करेगा।
0: अरे क्या हो गया, किस बात पे नाराज हो रही हो?
2: अरे ये गोलू बहुत काइया हो गया है। जरा सा मुंह से आपके लिए पापा क्या निकल गया, तुरंत टोकेगा। अच्छा मेरठ वाली दीदी का फोन आया था आज।
0: अच्छा क्या कह रही थी?
2: कह रही थी इस बार गर्मियों की छुट्टियों में घूम जाना गोलू को लेकर यहाँ।
1: आहा जरूर चलेंगे, बड़ा मजा आएगा आशु भैया के साथ।
0: कहीं भी जाने की बात चले, ये सबसे पहले तैयार रहता है जाने के लिए।
2: 2 साल से कहाँ जा पाए हैं, वहाँ पापा के चक्कर में आना जाना एकदम बंद है।
0: कोई हल भी सुझाई नहीं देता इसका, रिश्तेदारी में भी तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, जो रह ले यहाँ आकर 10-20 दिन।
2: जब मनीष भैया और देवरानी का ही सहारा नहीं है तो और किसी बाहर वाले का क्या होगा, ये तो खास है घर के। सुनिए एक हल है गोलू के पापा।
0: वो क्या?
2: अगर तुम्हारी समझ में आए तो।
0: वो कैसा?
2: दीदी बता रही थी कि एक आश्रम है वृद्धों का।
0: तुम्हारा मतलब वृद्ध आश्रम?
2: हाँ सारी सुविधाएं हैं वहाँ, खूब सेवा टहल होती है बूढ़ों की, और बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर भी हैं।
0: लेकिन क्या कहेंगे सब लोग, सोचा है तुमने?
2: लोग क्या कहेंगे, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, अपना भी तो सोचना है ना हमें।
1: दादाजी को वृद्धाश्रम नहीं भेजो मम्मी।
2: तू चुप बैठ, हर बात के बीच में बोलता है। तो मैं ये कह रही थी कि कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ पापा को।
0: मुफ्त में थोड़ी ही होगा ये सब।
2: बस आधी पेंशन लिखानी पड़ेगी पापा की वहाँ, मैंने सब मालूम कर लिया है।
0: मनीष से भी बात करनी होगी। हाँ
2: कर लो, लेकिन अगर वो मना करे तो बोल देना कि पापा को बुला लो अपने पास, महीने 20 दिन तुम भी तो रख कर देखो।
0: हाँ अब देखता हूँ बात करके, देखो क्या जवाब देता है।
2: अब 2 ही तो कमरे हैं हमारे पास ठीक ठाक, एक पापा ने घेर रखा है और दूसरे में हम तीनों पड़े रहते हैं। ऐसे में अगर कोई मेहमान आ जाता है तो कितनी परेशानी होती है, गोलू की पढ़ाई तक नहीं हो पा रही है इस चक्कर में।
1: मम्मी जी मैं तो दादाजी के कमरे में पढ़ सकता हूँ बैठकर।
2: तू जरूर पढ़ सकता है वहाँ, बीमार होने के लिए।
0: पापा को कोई छूत की बीमारी थोड़ी है जो लग जाएगी इसे।
2: तुम चुप रहो जी, देखते नहीं दिन भर थूक खकार मचाए रहते हैं, पेशाब की बदबू तो जैसे बस गई है उनके कपड़ों में, कितना भी साफ कर लो जाती ही नहीं।
0: तुमने पक्की जानकारी कर ली है वृद्धाश्रम की?
2: हाँ कर ली है, और फिर तुम्हारी सीधी बात करा दूंगी दीदी और जीजा जी से।
0: ठीक है मैं बात करता हूँ मनीष से।
2: पापा।

0: वह कमरा खाली हो जाएगा तो दलान वाला सोफा लगा देंगे उसमें। पापा वाला तख्त खिड़की के पास पड़ जाएगा और दरवाजे के बराबर वाली मेज पर टीवी। ओए होए होए, एकदम चकाचक हो जाएगा हमारा ड्राइंग रूम। गोलू गोलू, संडे का मतलब ये नहीं कि तुम दोपहर तक सोते रहोगे। चलो उठो और आप लो चाय लो।
1: लाओ, पापा को दे दी चाय।
0: हाँ, और बिस्किट भी। अच्छा सुनो, वो बात हुई मनीष भैया से?
1: हाँ हाँ, उसी का फोन आया था। हेलो
2: हेलो भाई साहब, मनीष बोल रहा हूँ।
1: हाँ मनीष,
2: नमस्कार भाई साहब।
1: नमस्कार नमस्कार, कैसे हो?
2: मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप बताइए पापा जी कैसे हैं?
1: अरे क्या बताएं मनीष, आए दिन वही परेशानी। अब तो और ज्यादा उनकी तबीयत खराब रहने लगी है।
2: क्यों, अब क्या हुआ?
1: अरे बस पूछो मत, हम तो परेशान हो गए हैं। अरे बिल्कुल फंस गए हम तो। मनीष मनीष, सोच रहे हैं कि पापा को थोड़े दिन वृद्धाश्रम में रख देते हैं, या फिर ऐसा करो थोड़े दिन के लिए पापा को तुम रख लो अपने पास।
2: अरे भाई साहब, आप तो जानते ही हो, मैं और काजल दोनों काम पे जाते हैं। हफ्ते में एक दिन मिलता है छुट्टी का, उसमें भी सैकड़ों काम करने पड़ते हैं।
1: हम तो जैसे ऐश कर रहे हैं यार मनीष। हाँ, तुम्हारा मतलब यही है ना?
2: नहीं भाई साहब, ये मतलब नहीं है मेरा।
1: ऐसा है, मैंने मेरठ वाले जो भाई साहब है ना
2: जी,
1: उनसे मेरी बात हुई है। वो बता रहे थे कि सब कुछ बढ़िया है वहाँ, उनके पड़ोस के एक बुजुर्ग भी रह रहे हैं वहाँ पर। अरे भाई मनीष, कोई परेशानी नहीं है किसी बात की, और फिर हम लोग भी तो मिलकर आते रहेंगे ना महीना 15 दिन में।
2: लेकिन भाई साहब, खर्चे वर्चे का कैसे होगा?
1: आधी पेंशन लिखानी पड़ेगी पापा की वहाँ पर।
2: ठीक है भाई साहब, जैसा आप ठीक समझो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।
0: ऐतराज? ऐतराज तो तब कर सकता है मनीष, जब कुछ कर डर रहा हो पापा का। ऐतराज से क्या मतलब है? अब तुम एक दिन की छुट्टी लेके बात करके आओ वहाँ। अरे तू कब जाग गया गोलू, चल उठ जा, बहुत धूप हो गई है।
3: मम्मी, दादाजी को कहीं मत भेजो। मम्मी मत भेजो दादाजी को कहीं।
0: अरे अरे पागल हो गया है क्या? रोते नहीं बेटा, तुझे पता नहीं वहाँ कितने आराम से रहेंगे दादाजी। हर काम के लिए अलग अलग नौकर होते हैं, अच्छा अच्छा खाना मिलता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं जो इलाज करते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। और फिर संडे में हम लोग भी तो चला करेंगे वहाँ, पापा की मनपसंद खीर पूरी बनाकर, है ना? चल चल अब उठ जा जल्दी से, कुंजला मंजन से फारिग हो जा, तेरे पसंद का नाश्ता बनाया मैंने। चल चल जल्दी से उठ जा, चलो रोते नहीं बेटा, जल्दी से उठो चलो।
4: ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? वृद्धाश्रम? अरे क्या मैं इतना बोझ हो गया तुम लोगों पे?
1: बोझ की बात नहीं है पापा, हम तो आपके आराम की वजह से कह रहे थे।
0: और नहीं तो क्या, ये तो देखकर आए हैं वहाँ, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, अपने सगे माँ बाप की तरह रखते हैं वहाँ बुजुर्गों को।
4: सगे माँ बाप की तरह? सगे माँ बाप की तरह? अरे जब सगी औलाद ही नहीं रख पाती तो वो क्या रखेंगे पराए होकर।
0: लेकिन वो रखते हैं ना पापा, जीजा जी बता रहे थे, टाइम पे खाना, टाइम पे दवाई।
1: और फिर मैं तो वहाँ सब कुछ अपनी आंखों से देखकर आया हूँ ना।
4: वाह बेटा वाह, मुझसे पूछे बगैर ही मेरी जिंदगी का फैसला कर डाला तुमने।
0: अब आपके बुरे के लिए तो किया नहीं पापा, जो भी सोचा अच्छे के लिए सोचा।
4: मुकेश?
1: हाँ पापा।
4: मुकेश?
1: हाँ पापा।
4: मैं अपनी जिंदगी के बचे कुछ साल इसी घर में गुजारना चाहता हूँ बेटे, टूटी फूटी कपड़े से लेकर पक्का मकान बनवाने तक। तुम्हारी तुम्हारी माँ की बहुत सी यादें जुड़ी हैं मेरे साथ, उन सबको छोड़कर अब कहाँ जाऊंगा मैं? मैं चाहता हूँ मुकेश, मेरी आखिरी सांस इसी घर में निकले।
1: पापा?
0: मैं तो चली, मेरे बस का नहीं है कुछ, अब तुम ही समझाओ इन्हें। गोलू तू क्या सुन रही है खड़े खड़े, चल अंदर चल।
1: मीता सुनो, देखो मन खराब करने से बात नहीं बनेगी।
0: सचमुच बहुत ढीठ है पापा,
1: जबरदस्ती करना भी तो ठीक नहीं है।
0: जबरदस्ती किसने की, समझाने की कोशिश ही तो कर रहे थे हम।
1: हाँ हाँ ठीक है फिर से समझाएंगे हम।
0: अच्छा खासे प्लान पे 2 मिनट में पानी फेर।

0: दिया। ऐसी कौन सी मम्मी की यादें बस रही हैं यहाँ जो तुम जाना नहीं चाहते हो? अरे उन यादों को भी अपने साथ ले जाओ।
1: मीता, आखिर आखिर वो पापा है हमारे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए तुम्हें।
0: मैं भी किसी की बेटी हूं, ये भी सोचना चाहिए तुम्हें।
1: मैं समझता हूं, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा धैर्य से काम लो भाई, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।
0: गोलू के पापा, चाय।
1: हाँ लाओ, पापा को दे दी चाय।
0: हाँ, लेकिन बिस्किट नहीं लिए उन्होंने,
1: क्यों?
0: दोपहर खाना भी आधा छोड़ दिया था।
1: अरे तबीयत तो ठीक है ना उनकी?
0: हाँ, मैंने पूछा, कहने लगे तबीयत ठीक है लेकिन भूख नहीं है।
1: देखता हूं जाकर चाय पी लूं।
2: पापा जी, ये डायरी देखो, कमिंग संडे को हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन है, पेरेंट्स को भी आना होगा।
1: तूने भी भाग लिया होगा किसी में? अच्छा
2: हाँ, ऐसे लिखना है मुझे पेरेंट्स पे, फंक्शन में पढ़कर सुनाना होगा।
1: वेरी गुड।
0: अच्छा से लिखना, पापा से पूछ लेना, वो अच्छा लिखवा देंगे। अच्छा सा।
2: नहीं मम्मी, सर ने कहा है कि अपने आप लिखना है, चीट नहीं करना है कहीं से।
0: अरे बाबा ठीक है, तू अपने आप ही लिख।
1: पापा कैसी तबीयत है आपकी? मीता बता रही थी कि आज आपने खाना भी नहीं खाया ठीक से।
3: हाँ, कुछ मन नहीं किया मेरा।
0: लो पानी।
1: लो दवाई खा लो शाम की पापा।
3: मुकेश, मैं तुम दोनों से पूछता हूं, क्या मेरे चले जाने से सचमुच आसानी होगी तुम्हें?
1: पापा पापा, वो क्या है कि
0: क्या है कि हम अपनी आसानी नहीं, आपकी आसानी के लिए सोच रहे हैं पापा। वहां पर आपको
3: समझ गया तो ठीक है, मैं वहां जाने को तैयार हूं। जब तुम चाहो, मेरी पत्नी गंगा की बड़ी वाली फोटो और उसकी संदूकची जरूर रख देना मेरे साथ। बस बहुत शर्मिंदा हूं मैं अपनी जिंदगी से भी और तुम दोनों से भी। बहुत बहुत बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें, लेकिन क्या करूं, धोखेबाज है मौत, रोज वादा करके जाती है लेकिन लेकिन आती नहीं है।
1: मीता देखो फोन बज रहा है तुम्हारा।
0: हाँ देखती हूँ अभी। हेलो।
4: अरे कब से घंटी जा रही है, कहाँ थी तू?
0: मम्मी मैं तैयार हो रही थी, गोलू के स्कूल जा रहे हैं हम, एनुअल फंक्शन है।
4: अच्छा,
0: गोलू ने भी भाग लिया है। ऐसे वो क्या बोलते हैं, निबंध बोलना है उसे, माता पिता के ऊपर लिखा है उसने।
4: अच्छा बढ़िया बात है, होकर आओ स्कूल उसके, मैं बाद में बात करती हूँ।
0: ठीक है, लेकिन एक खुशी की बात बताती हूँ आपको, पापा वृद्ध आश्रम जाने के लिए राजी हो गए हैं।
4: चलो अच्छा हुआ, कुछ तो चैन मिलेगा तेरी जान को।
0: हाँ मम्मी, बाकी बात बाद में करती हूँ, नमस्ते।
4: खुश रहो।
0: गोलू के पापा कहाँ हो?
1: अरे मैं यहाँ हूँ कमरे में।
0: सुनो देखो, ठीक तो लग रही हूँ ना मैं?
1: एकदम परफेक्ट।
0: अच्छा सुनो, देखो पापा के कमरे को अंदर से बंद करके ताला लगा देंगे मेन गेट पे, 2-3 घंटे की तो बात है।
1: हाँ ये ठीक है, लेकिन अब देखो यार जल्दी चलो।
0: चलो चलो मैं तो तैयार हूँ।
1: हाँ चलो।
5: विद्यालय के इस वार्षिक आयोजन में उपस्थित सभी मेहमानों का मैं पुनः स्वागत करती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अब आपके बीच आ रहे हैं हमारे विद्यालय के होनहार छात्र गौरव कुमार।
0: देखो जी हमारा गोलू आ गया।
5: गौरव कुमार आपके समक्ष एक निबंध पढ़ने वाले हैं जो उन्होंने पेरेंट्स अर्थात माता पिता के ऊपर लिखा है। तो आइए सुनते हैं गौरव कुमार से उनका निबंध।
6: जब हम पैदा होते हैं तब हमें एक पेरेंट्स मिलते हैं

0: जिन्हें हम मम्मी पापा कहते हैं। मम्मी पापा हमें बहुत अच्छे से पालते हैं, अच्छा अच्छा खाने को देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाते हैं।
1: देखो कितना अच्छा बोल रहा है हमारा गोलू।
0: मम्मी पापा हमारी सब बातों का ध्यान रखते हैं, इसलिए तो वो भगवान जी जैसे होते हैं। हम उनके पाँव छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं।
1: बहुत अच्छे बेटा, जीते रहो।
0: लेकिन यही मम्मी पापा जब बूढ़े हो जाते हैं तो खराब हो जाते हैं। ये बीमार हो जाते हैं और इनके इलाज पर बहुत पैसा खर्च होने लगता है। ये लैट्रिन बाथरूम भी बिस्तर पर ही करने लगते हैं। एक पूरा कमरा घेर लेते हैं जिसमें छोटे बच्चे नहीं आ जा सकते, क्योंकि वो भी बीमार हो सकते हैं। ये कपड़ों पे चाय गिरा देते हैं जिसका दाग बड़ी मुश्किल से छूटता है।
1: गोलू के पापा?
2: हाँ।
1: ये क्या कह रहा है?
2: वही वही जो उसने देखा है।
0: ये वृद्ध आश्रम भी जाना नहीं चाहते, बस परेशान करते रहते हैं घर वालों को। हम लोग कई बार घूमने भी नहीं जा पाते, इसलिए या तो इन्हें टाइम से मर जाना चाहिए, नहीं तो इन्हें वृद्ध आश्रम में डाल देना चाहिए। इससे हमारा एक कमरा खाली हो जाएगा। हाँ हाँ, हम उसमें सोफे डाल सकते हैं, उसे अच्छे से सजा सकते हैं, फिर उसमें छोटे बच्चे भी जा सकते हैं। बीमार होने का खतरा भी नहीं होगा, बीमार होने का खतरा भी नहीं होगा।
2: मीता?
1: हम्म।
2: नींद नहीं आ रही?
1: मैं सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रहा था गोलू?
2: वही जो वो अपनी आंखों से देखता रहा।
1: क्या हमको सचमुच घर से निकाल देगा ये?
2: वो कल को वही करेगा जो वो आज देख रहा है।
1: सुनो,
2: हम
1: पापा को कहीं नहीं भेजेंगे, वो घर में ही रहेंगे, हम दोनों मिलके सेवा करेंगे उनकी।
2: ये तुम दिल से कह रही हो मीता?
1: हाँ गोलू के पापा, गोलू ने सचमुच आंखें खोल दी हमारी।
2: तो अब आराम से सो जाओ, सुबह उठकर पापा की सेवा में जो लगना है हमें।
1: हाँ ठीक है, कल सुबह उठ के मैं उनकी पसंद का नाश्ता बनाऊंगी।
2: हाँ, मुझे भी लग रहा है वास्तव में ये ठीक है।

आपने सुना नाटक यथार्थ, लेखक थे सुरेश ठाकुर और प्रस्तुति असीम सक्सेना की थी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:31 हुए हैं। प्रस्तुत है अनुरोध पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

कार्यक्रम गीतांजलि सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र रोहित कुमार कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम गीतांजलि का पहला नगमा सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वरों में फिल्म ओम शांति ओम से, और इसको सुना चाहा है आप सभी ने अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर यूपी से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमन लाल मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, बबीता और अंशु गौतम। अनूपपुर से जय मंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर, बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक। सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशील नीलम, पीकेपुरी, कैलाश रमा और आरएसपुरी। नाज मंजिल महसौल सीतामणि बिहार से अक्रम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, मारिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम, अमन अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख, चीना शेख।

बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, नूर महल महसूल से हुमैरनाज सुमैरनाज अभिहनाज अरहान बाबू हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू, जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और इंशा खान, करूला मुरादाबाद के हमारे अनुरोध करता है अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नावेद खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशन पारसी, विडोल तालुका उमरखेड़ से गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक पोपलवाड़, प्रियंका, लक्ष्मी भाई और भारत दुल्हे, अम्बेडकर नगर चौक वाकुडी से उत्तम जमधाड़े, ग्राम घाटमपुर से राम भजन सैनी, हरप्यारी सैनी, राजीव संजय मुकेश आशा अंशिका पूजा और राम प्रकाश सैनी। तो लीजिए आप सभी के अनुरोध पे फिल्म ओम शांति ओम से सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वरों में ये गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में अगला गीत शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल के स्वरों में, फिल्म का नाम है चांदनी चौक टू चाइना। इस गीत को सुना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहणकर, रही सरिता गोहणकर, सिद्धांत और प्रिंस एकांश गोहणकर, बहादुरा नागपुर से शैलेश गोहणकर, वैशाली श्वेता सुमित, कुमारी धोनी बदलापुर मुंबई से प्रणीता गोहणकर, अलीगढ़ डब्बाली से बसंत सिंह चन, राजकुमार सुनीता, कुलदीप गांधी दरियापुर वाबली महाराष्ट्र से, गजानन गेले नवदीप पीएले, शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर छत्रपति, संभाजीनगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साधु, बीमा वैभवी विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु शाहू साहू, शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बेरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित, सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही शिखा और अंजलि श्वेता वर्मा। जसपुर उत्तराखंड से हमारे फरमाइश करता है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ। जतूका किशनपुर से आलम दिल का शबाना नाज, रिजवान रही, इमरान रजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से कैसर आलम, हिना कैसर, मोहम्मद वकील, राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। बीरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल, अर्जुन कवनेकर और धीरज सवासेरे। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफार खान, रजिया खान, सिमरन खान, रूमा बॉबी, शमा, मिक्की खान, बुशरा और आसिम खान। जिला अस्पताल के पास से गजन खान, शमा परवीन, शमशद अली अजम, गुलाफशाह, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफार और हबीब अहमद इदरीसी। तो लीजिए, आप सबके अनुरोध पे फिल्म चांदनी चौक टू चाइना से शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल के स्वरों में ये गीत।

आकाशवाणी रामपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म चमेली से, गायक कलाकार हैं सुनिधि चौहान, और इस गीत को सुना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम, रेशमा और अदीबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू, जेल रोड मथुरा से वसीम, आसमा बेलदार, अखरम आसमा, उल्लाह आसमा, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, संजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सपना शिवी, सलोनी, राजू चराटे और पिंटर बाबू, श्री तुलजा भवानी माता वार्ड खंडवा से अनिल विंचुरकर, मंगला शोभित विंचुरकर, उदय नगर से मोहित रत्न पारखी, स्वाति मिष्टी और मनस्वी रत्न पारखी, जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय सैनी, आंचल आकांक्षा, आकाश, विक्की, मानवी, आयुषी, आराध्य, रुद्र, नैना, हीरावती देवी और सभी सैनी परिवार के सदस्य। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा, महाराष्ट्र हिंगोली से शाजी बोटके, नंदा बोटके और हनुमान बोटके, मीरगंज से कल्लू मिस्त्री मिलक, भूजपुर आशा, जिला मुरादाबाद बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, आसमा बी और शहजाद हुसैन।

मंजूस राय संभल से छोटे अंसारी, अलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार और हैप्पी रॉय, दुबीहद निवादापुर निवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय, मोहल्ला चामुंडा कस्बा नरौली से इंतजार राही, शादाब राही, मेहताब निशा सिकंदर और साहिल अंसारी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, कीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ और शाइना, साथ में निवान शर्मा। तो लीजिए आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पे सुनते हैं फिल्म चमेली से सुनिधि चौहान के स्वरों में ये खूबसूरत नगमा।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि का अगला नगमा फिल्म बॉम्बे से, स्वर है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति के, और इस गीत को

सुनने की आकांक्षा रखते हैं आप सभी। इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहां डब्लू, सईद वसीम और वलीउल्लाह नूरजहां, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आदिबा तिवारी, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक और समस्त परिवारगण, राजद्वारा रोड मीठे कुएं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभय, रिया, आरुष और फिरासत, सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक भोपका, भाटापारा से देवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू, मोवा रायपुर से गोपेंद्र कुमार साहू और मंजू साहू, शहबाजपुर कला कस्बा पागबाड़ा से मजाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रईस अनाज, बेटा मुजक्कर बाबू मजहर, आसिम और बेटी सुमैया महर, मलहूट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण सिंह, ग्रोवर, रमेश मिगलानी, लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निपी सहनी और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम खौसर, डॉक्टर इशिता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर सोनम वली और मोहम्मद अफजाल मलिक, जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद मीर हमजा, महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप, केशव पटेल और रामनिवास, डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन और मरियम और बुशरा। तो लीजिए आप सभी के अनुरोध पे फिल्म बॉम्बे से हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति के सुरों में ये गीत।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत

0: Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर अपनी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।